0: इतना पछतावा, वो धीरे धीरे ऐसे मतलब खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आता है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
0: जी
1: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल दर साल, बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद? इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
0: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
1: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
0: सेविंग अकाउंट में
1: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
2: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
1: बिल्कुल
2: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी,
1: इमरजेंसी, आप उसको
2: इमरजेंसी के
1: इमरजेंसी
2: लिए।
1: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते?
2: ऑल द लेडीज मैम,
1: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या
2: बैंक
1: बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा, यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बजट के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो या करते हो या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
0: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ
1: जी सर,
0: मैं, तो खुद तो मेरी बस बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर्स स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
1: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
0: स्वीपर से लगा,
1: दैट इज
0: स्वीपर
1: अनदर।
0: भी स्वीपर करता है, उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। 20 बार है महिला है, उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ, सेंटर पे सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेव बचत आदत पड़ेगी, सबकी बचत होने की।
1: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
2: मैम
1: यू
2: कैन
1: चंद्रिका
2: आई से
1: काउंसलिंग
2: समथिंग मैम?
1: जी। जी मैम बिल्कुल।
2: मैम आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर सम समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट। अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए, उस स्टेज में पहुंच गए आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
2: हेलो,
1: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी
2: नमस्ते मैम, कैसे
1: नमस्ते जी,
2: हो मैम? ठीक
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: है मैम, हम भी, और आपको देख के और ज्यादा ठीक
1: अरे हम भी आपको देख के खुश हो गए, और
2: गए।
1: आप
2: अच्छा
1: बोल रहे हैं ये
2: मैम,
1: सबसे अच्छी बात है। जी
2: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
1: जी जी जी
2: मैम
1: बताइए
2: हमने जो
1: शोभा
2: हमारी
1: जी,
2: सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
1: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
2: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
1: अच्छा ठीक है,
2: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
1: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
2: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
1: वेरी
2: वो
1: गुड,
2: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है,
1: वेरी गुड,
2: 1% का ब्याज है मैम इसमें।
1: 1% का ब्याज। तो
2: हाँ जी
1: आपने ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट।
2: हाँ जी
1: तो ये जो है ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं, राइट।
2: हाँ जी
1: बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर, कि अच्छा मुझे किस तरीके से यू नो अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिन जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्रप्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा, उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे, उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्रप्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर हमें हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरिली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है। बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाली जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो, उनका रुझान अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं. तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है. द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स. पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे. अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते. छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें. 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि शारजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को. सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए. कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए. तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई. सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो. तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का. मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है. लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें. जितनी मेरी सेविंग्स है, करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी. तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए. 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है. वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल. 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे. आपको ये पता है कि 30th day ही मैं उसके बारे में सोचूंगा. तो 30-day rule ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए. अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज. इम्पल्सिव मतलब मुझे मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी. इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू. बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30-day savings rule के बारे में. आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ. जब आप ये सेशन करेंगे, यू कैन शेयर दो स्टोरीज. एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया. तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है. ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं. किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई. अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है, तो वी कैन ट्राई दिस एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें. सो दिस इज वन टेक्निक. दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है, हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं. ये ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है, हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों की अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए, 10 रुपए, जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं। 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए, हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को, या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इम्पल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इम्पल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हो इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं, जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे, अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जो 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा, जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला, वो उन्होंने आदत डलवाई है, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश ना कि खुद को, बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम

0: से सक्षम होकर चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
1: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
0: यस यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का। कोई इमरजेंसी हो तो हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
1: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से तीन बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया. तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए. और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है. तो मैम मेरी सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे जो पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे.
0: बिल्कुल
1: फिर जो हमारा जनरेशन है उन्होंने देखा क्या, अरे वो तो सारे कुछ ही नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से. नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे.
0: बिल्कुल
1: तो हम हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक. मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी. अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है. तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू. इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
1: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे. वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो वो तो यही समझेंगी ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है, तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है. जब हम अपने
0: बिल्कुल
1: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा. तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने, मेरी सिंगल चार्ज है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा. तो ये हुई, तो मैम सबके अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर. सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब. हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा, वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से आपसे

0: मैं गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस पे शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन, जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
1: अरे वाह,
0: हाँ, मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से, जो सेंटर का ये दिया हुआ है, तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था। उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे। और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो, सब कुछ तो है,
1: अरे
0: हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है, 500 या 1000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा, तो उसमें से एक बेनिफिशरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी, मतलब जरूर नहीं, थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
1: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे.
0: हाँ जी,
1: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं, इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
1: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
0: वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू.

0: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आपको अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी ही मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवर्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेपअप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में, या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं, फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं। ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसी आती है, तो ये एक स्किल होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे। जो सी टेट होता है इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 8 तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, तो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो 9 से लेकर 12 तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो 9 से 12 तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, 6 to 8 में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल COVID-19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सीटेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सीटेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और पेपर ऑलमोस्ट मैंने अनम्यूट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सीटेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो इसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है, जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सीटेट आपने क्वालिफाई करना है। और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर एट्थ क्लास तक का एनसीईआरटी, आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का, आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं। या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है, तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए, उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इनते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो द्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता द्रोवर है, ये एक एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए। एक बुक को जब आप देखते हैं, उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं, क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में 2 बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए। अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूँ बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूँ। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए, या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि 12th के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये 12th के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप 12th के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसे ही एनटीटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एनटीटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आज से चार पांच साल पहले व्हाट हैपेंड, आज से चार पांच साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ, तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है, चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशन आप। अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है। जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि थ्री स्टेजेस में वैकेंसीज आती हैं, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए हैं, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास सिक्स से लेकर एट तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं एट से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है। जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी ट्वेल्थ होनी चाहिए, और ट्वेल्थ के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एनटीटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं, इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एचटेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है। ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशंस पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टर 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है, चाहे पेपर टू है, चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती। आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एसएस, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने, जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है, तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसीज ही नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है भी इसको 7 साल के लिए कर दें, तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज आल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है, जैसे आपकी वैकेंसीज अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में री 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना, देखिए क्या, जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और व्हेन यू गो इनटू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है, हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप 2-3 चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो 12th के बाद आप कुछ ना कुछ अपना JBT करिए, चाहे आप बेटे NTT का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप DLD करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल 3 की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल 2 में तो वो साइंस और SST में चॉइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, SST का भी कॉम्बिनेशन एड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT लेवल के लिए, तो TGT लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और SST तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली 8th क्लास तक का मैथ्स करना है, 8th क्लास तक की आपको साइंस करनी है, 8th क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो 12th करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी 2 years की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको 2 साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल 12th के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको 12th के बाद कम से कम 5 years लगाने पड़ेंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 year का बीएड। और वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम 7 years 12th के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है, बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है, और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे। महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए या आपका जो आरटीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, अब टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये एक सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेट मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया अब कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेट तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती हैं, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए, अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है। क्योंकि अभी पिछले, जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसीज आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एस्टेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था। फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, या पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसी है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसी निकालनी पड़ती है। चाहे स्टेट, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में रीट 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए, आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएस की वैकेंसी आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसी आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है, चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा एसच वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई। आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल, वहीं फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है, जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया, अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है, तो आपको बीएड करना मस्त है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के, तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। उसमें भी 2 तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 इयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है, जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है। वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए, कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं। मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशंस पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने बीएडी नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है। मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर, तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरी अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के, प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है, ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं है।
1: नहीं है
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
3: गुड आफ्टरनून सर, परा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सीटेट का एग्जाम है ना, वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सीटेट करेगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करने हैं आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सीटेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी 3 नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी, हाँ जी।
3: मैं पूछ रही हूँ कि सीटेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसी निकालते हैं ना तो उसमें वो सीटेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, बट ये है कि अगर आप जो सीटेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये, यूपी का ही
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है, पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब जब आपकी वैकेंसी आती है

उसने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाइंग है। फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है। जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है। पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है? क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, तो वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन 2 सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो 2 टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है तो वहां पर आपका चल जाता है, मतलब। तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एस्टेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें। जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए ना, वो नहीं। देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं।

0: स्टेज जब भी वैकेंसी आती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है, वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज, और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही होती थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कमस्टांसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ और टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा. क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एफ ए करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करने से ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा. बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th हुआ, 12th मीटेड हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने एम ए किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद एम ए जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरे एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में मैम गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के विमेंस रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब कुछ आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, एनजीओ ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी। आप न्यूज़ देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वाज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का जो सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए आगे सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है मैम का सेंटर कहता है। एक बार ने को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक कि यार लाइब्रेरीज है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
2: यस यस तो गुसाई बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश को यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिसपे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20-20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है। तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गुसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवॉल्व वर सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, तो मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही।
3: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है, करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
2: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहते हैं तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीखो जाके उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
3: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो कैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं. एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जांपल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू द ऑडियंसेस. स्पेशल मेंशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस इनिशिएटिव जो आपने लाइफ चेंजिंग अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए लिया है, कि एक एक सेकंड नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना जॉब रिजाइन कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. सो वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस एफर्ट एंड वी वांट टू नो मोर अबाउट योर सेंटर नाउ. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
2: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन फार्मर्स. हम मेन फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है, तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपने सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया. हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती है, मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर. बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे थे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा. बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस है, और वो हर मोमेंट एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना, अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. तो ये मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है. आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशंस पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी नहीं कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहाँ पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहाँ पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें। एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
3: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेशली फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
2: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशन हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया है कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज़्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
3: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
2: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी हेडेक है, पूरे इंडिया लिखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे फिल आउट करता है। आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि ये आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैल्सियम के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
3: वेरी नाइस, ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: श्योर मैम, चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज शी सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी, एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो मैम शी वाज लाइक ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे पहले कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो मैम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, ड्यूरिंग कोविड थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके, वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो, तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी, मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ मशीन खरीद लो। फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम। ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है।
3: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
2: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार के मैम कॉन्टिन्यूस 15 दिन बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
3: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
2: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज़ अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पर जाएँ वो ज़रूर वहाँ से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है रीड का जो नेटवर्क है उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज़ पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
4: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Badagaon. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसन टीम इन यूएस। and then we thought that we have to start the work there. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट. And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
2: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages and they have maximum population of mint farmers there. So ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there, his name was Ram, I think. So he was from mint farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th, now what should I do? So I asked him to learn computers, because you're a boy, you can learn computer and do something and you can search for a job also. But not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. And when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hain yahan par, ma'am, aap ye bhi kitabe hain, ma'am, ye bhi book hai. Ma'am, agar main kuch mangaun to mil jayega. I was like, yes, please, आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारी डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है. आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए. तो मैम ही डिमांडेड और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. एंड मैम ही वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली. एंड after that, I won't believe, he was in second year only and he got the job in Lucknow in Fern Mall and he's earning 15 to 18,000 per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, ma'am, this is all your fault. I said, this is not what I said, this is not what I said, please say thanks to him. So, ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
4: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe, to aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chal kar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
2: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. Ma'am, आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी. But ma'am, इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आई एम टेलिंग यू, कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 टू 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं. और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें. तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में इंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
4: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती हैं इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली. सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड. तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते?
2: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that अभी वो आए हैं तो I have to give my at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों के साथ बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट रेड इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, सो दे डोंट नो व्हाट रेड इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रेड, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Read India. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak sirf do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying we are sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tum bhi aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody koi aage samne se khada ho jata. I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai ye. So it happens sometimes with me.
4: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, inspire them to come to the center regularly, right? So these two things go parallel, right?
2: Exactly, ma'am. I remember one story.
4: Yeah, please continue.
2: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there who was continuously usko pareshan karne cha raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prerek tha hamara jo hamare liye committee mein jaake session leta tha. I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar bike se, aur aap dekho ki ma'am ko kaun pareshan kar raha hai. Phir ma'am unhone wo jaake ghar pe chhod ke aaya, phir usne mujhe aakar bataya ki ma'am ye hai. Phir maine apne husband ko bola ek baar ko कि आप जाइए, आप घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान करें. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू स्पेंड देयर, और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आसपास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
4: Sana, major of the population in Barabanki and Badagaon are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the READ Center and establish themselves, then they'll get married?
2: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो बट मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी मुझे नहीं जाना वहाँ तो मैम शी वाज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 months शी लर्न कंप्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10 12 की लड़कियाँ आ जाती है पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑल्सो कम हियर बड़ागांव आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिड यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स थे जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए देन लेट हर गेट मैरिड एजुकेशन तो बाद में आती है आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड सो दिस हैपेंस एवरी टाइम दैट वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट वी हैव टू काउंसिल द गर्ल्स एंड दे कम एंड दे यू नो दे डिस्कस विद मी एवरीथिंग स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटीज
4: Very nice. It's very satisfying to know all these things because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married. Only then she should get married. Aur chautha component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also because COVID has taught us many things to do. Independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family so wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko karne karti rehti hain sana abhi hum jo future planning ki baat kar rahe hain hum baat kar rahe hain ki hum satellites bhi bana denge right aur jab hum satellites banayenge kyunki hame nahi pata third wave aayegi ya nahi aayegi और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना
2: यस मैम आई वुड लाइक टू से दैट मैम इफ यू आर गोइंग फॉर द सब सेंटर द सैटेलाइट्स We should make that satellite for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragaon is the center, then it has, it in its stages there are many villages. So we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center because it will be moving. Like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them. Because that will make an image of Read India more powerful and more accessible to people because they will know what Read India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
4: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching and we can do much more, whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders that I'm sure under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform
2: sure.
4: So that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
1: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. Anything that you want to share with your children? कैसे आपके बच्चे, I know you have 4 beautiful children, so इतनी strong mother को, इतनी strong family को देख के, how they are feeling, especially both of your girl, the twins, the beautiful twins that you have. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, you know, REAP initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
2: Yes, ma'am. During last year, if you talk about COVID only, and they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge? So, maine bola, kuch nahi. Jab center khul raha, aap center mein aake baitho. Ab bachche aate hain, aap unko padhao. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा. बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि वो क्या है. एंड दैट वर्ल्ड, सारे छोटे बच्चों को अभी तक नवाल दे वर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक, ओके जाओ पढ़ा दो आप. यस मैम, आई एम, it helps, ma'am. Every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, you know, the learning is never ends. I believe that.
1: And आपके parents को कैसा लगता है आज वो सना है जो शायद कहीं पे अपनी education भी complete नहीं कर पा रही थी और आज वो लोगों तक education को पहुंचा रही है?
2: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath such a connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of her because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, my sister who's living in Hong Kong also, she's also working for an NGO only. And very she's nice. Working from past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
1: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
2: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, aapko ye chahiye ki aap give up mat karo. Kisi bhi lifestyle, kisi bhi, you know, life stage par, just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much, ma'am.
1: On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज ए लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर

0: अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है। राइट, होता है ना ऐसे हमारे साथ। और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे, 3 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज। राइट, दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम समहाउ वी आर एबल टू रियलाइज आर ड्रीम्स, समहाउ वी आर एबल टू यू नो एम्बिशियसली डू द थिंग्स व्हाट वी वांट टू डू। डू यू ऑल एग्री विद मी व्हाट आई हैव सेड, चेजिंग योर गोल्स? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू। सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत। एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे, और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है, एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं। राइट, तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में, थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे, कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा, मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। तो 3 4 ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर, ऊपर टॉप में पहुंच गए, एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड, और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए। जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो 2 3 जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे, और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था, वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है, बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर, तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर, तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है। तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा। पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं। पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेस करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटीज को चेस हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है? तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन। ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन, दे कैन सी इन टू द फ्यूचर, दे हैव अ क्लियर एक्साइटिंग आइडिया ऑफ वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश एंड आर एक्सिलेंट एट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया, ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी। दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ। दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है। एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो। तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं। दूसरा क्या है, करेज। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टावर पे क्लाइंब कर गया। Having the quality of courage means that you are willing to take risks in the achievement of your goals with no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई project launch करती हूँ, मैं proposal लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं project, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका end result क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं define कर पाती हूँ। क्या मुझे पता था COVID आ जाएगा जब हम proposal लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं। तो करेज था कि हम कैसे करें। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क। व्हाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माय ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया। दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल, उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा, वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की, मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है, ट्रस्ट है, क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने, जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, इम्यूनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमिजिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला। तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो। दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता। आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2000 कमाए, चाहे 4000 कमाए, चाहे 6000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2000 से 6000 तक लेके जाए, 6000 से 12000 तक लेके जाए। ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, that doesn't mean कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनैलिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे, पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टॉवर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टॉवर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर, एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनैलिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर. यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रहे हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है. और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और एक महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड, बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी, बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन. गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग अ कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे. रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 6 6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इम्पोर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट. लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. These sentence mein maine summarize kiya jo last 7 points maine bataye hain ek leader ki qualities ke bare mein. ab leader ki qualities to bata di ki leader ko karna kya hai. pehle to humne goals bhi chase kare, fir humne apne wo points bhi yahan pe highlight kare best qualities ke. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मींस है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है. तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं, तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम। हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन 3 पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टुवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट। हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने की जरूरत है, राइट। बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है। आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको, ठीक है। 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास।
1: मैम।
0: हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज्ड फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ,
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल।
1: हमेशा कोई
0: पर्सनल
1: चीज
0: लाइफ
1: हो जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना सुनने
1: जी मैम।
0: कि अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें, यही आप बता रहे थे। दिस वाज वेरी नाइस मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया।
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस, वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से, मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा, वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल। और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम तो
2: जी
0: डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज
2: थैंक यू,
0: लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനേ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं, पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता।
1: आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए, वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की।
2: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया, माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया। व्हाइल आई एम इन टोक्यो आई डिजायर टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स टू यू एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल गिव देम ड्यू कंसीडरेशन।
0: बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है।
1: माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है।
2: आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया शैल बी फ्री।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिएं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज़्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो ज़रूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हों तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ है वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच गीता जी।
0: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं, और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
1: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
0: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में 3 बातें आ गई हैं, और 3 बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें?
1: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर जॉइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता। बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो जो आजकल की जेनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती। सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए। बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी। माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है। तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही है। वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही हैं, पर हमें देने का तरीका बदलना है।
1: जी।
0: देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है। हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हम आज हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं। और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का।
1: थैंक यू सो मच।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव न चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिये, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: रीड इंडिया रेडियो में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनुजा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेकर के आए हैं अपनी सभी महिला साथियों और बेटियों और बहनों के लिए और बाकी और श्रोताओं के लिए भी। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसको हम ज्यादातर होटल इंडस्ट्री में सुनते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से, और घर में तो रोज ही हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी घर अपने रोजमर्रा के कामों में किस तरीके से आपको और आपके परिवार के मन, चित्त और स्वास्थ्य को सुंदर रख सकती है, और कैसे आपके आपका जो असर है दूसरों के ऊपर वो एक बेहतर कर सकती है, और कैसे आप इससे अपने लिए कोई काम काज भी खोज सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, इस पर ही बात हम करेंगे आज। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास है दीक्षा। तो दीक्षा, आपका रीड इंडिया रेडियो में स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: दीक्षा, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं।
1: मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैंने अपना बैचलर्स करा है होटल मैनेजमेंट में, उसके बाद मैंने एक साल का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करा था कुकिंग में, जो कि एफिलिएटेड था ले कोडो ब्लू पेरिस से, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। तो अब मैं रीड इंडिया में आई हूँ और रीड इंडिया में लोगों को हॉस्पिटैलिटी के बारे में सिखाऊंगी।
0: क्या चीज आपको खींच के होटल मैनेजमेंट की ओर ले गई, जबकि आज भी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग बहुत ही ग्लैमरस व्यवसाय समझे जाते हैं, तो क्या चीज थी जो होटल मैनेजमेंट की ओर आपको खींच ले गई?
1: जैसे कि आपने बोला कि ग्लैमरस, एक्चुअल ग्लैमर आपका होटल इंडस्ट्री से आता है। मैंने होटल इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं अलग अलग देश के अलग अलग लोगों से मिलूंगी, उनको सर्व कर सकती हूँ या उनके साथ बैठ के मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे इंटरैक्ट कर पाऊंगी, तो मैं उनको और उनके कल्चर को जान पाऊंगी। उनसे अगर मेरे को मतलब मौका मिलेगा किसी से बात करने का, तो मेरे को एक तरीके का जैसे कि किसी नए इंसान से मिलने में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, मेरे को वो उत्साह था, तो मैंने इसलिए होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करा था।
0: तो देखिए, दीक्षा हर बार कुछ नए लोगों से मिलना चाहती थी, कुछ नया जानना चाहती थी, और इसीलिए दीक्षा ने चुना होटल इंडस्ट्री को, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए वो फिर अब आपके बीच में भी हैं। तो दीक्षा के होने का हमें फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ रीड इंडिया की बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को जो गांव में हैं, जो बाहर अभी निकली भी नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजों में आनंद लेती हैं, मजा लेती हैं, वो अच्छी बात है, बट उसको और कैसे सुंदर बनाया जाता है, इस पर बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। तो दीक्षा, हमें आप बताइए कि होटल मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है हॉस्पिटैलिटी, क्या है ये हॉस्पिटैलिटी?
1: हॉस्पिटैलिटी लोग अक्सर जब सुनते हैं हॉस्पिटैलिटी, तो कुछ लोग उसको हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं, वो नहीं है। हॉस्पिटैलिटी होता है जैसे अब मैं आपके यहाँ पे आई हूँ रेडियो पे, तो मेरे को आप अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, मतलब आप होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ,
0: मतलब कि हम कैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसे आपकी आवभगत कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटैलिटी में वो हमारे साथ क्या करने वाली हैं दीक्षा, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं हॉस्पिटैलिटी में जो मेरे पास लेडीज होंगी उन सबको मैं अच्छे से ट्रेन करूंगी। किस में? सबसे पहले मैं उनको किसी से अगर कोई आता है उससे कैसे उसकी आवभगत करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए, क्या जैसे हम कभी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं अंदर घुसते ही हमें टाइम के हिसाब से लोग ग्रीट कर रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ऐसे मैं उन लोग को पहले सिखाऊंगी कि हम लोग को अपना पोस्चर, मतलब कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी के सामने आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये वो बात है। हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब जब आपको इंसान पहली नजर में देखेगा जो इम्प्रेशन तब पड़ेगा वो पहला और आखिरी इम्प्रेशन है, उसके बाद आप इम्प्रेशन कुछ भी करते रहो वो इम्प्रेशन कभी नहीं बदलेगा आपका। तो मैं हमारी सारी लेडीज को ऐसे ट्रेन करूंगी कि लोग अगर कहीं वो बाहर जॉब अप्लाई करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लोग देखे ये ना बोले कि ये लोग गाँव के है, ये बोले यार ये गांव के होके भी ऐसे हैं, इनको तो हमने लेना ही लेना है।
0: थोड़ा सा दीक्षा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये गांव की औरतों के साथ या गांव की बेटियों के साथ या गांव के लड़कों के साथ हम इस कोर्स को करेंगे अगर, तो उससे उनके लिए क्या अवसर खुलते हैं, क्या मौके खुलते हैं?
1: ये एक सिर्फ टर्म है कि हम गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी अगर आप देख लो कि जो हमारे शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, अगर मैं अभी कंपैरिजन करूं तो मेरे गांव के लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं शहर के लोगों से ज्यादा। शहर के लोगों के सर पे हवा चढ़ी हुई है, गांव के लोग उतने ही हैं कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो उनके लिए काफी अवसर है। अब जैसे आप मुझसे बात करें कि मैं उनको अगर पोस्टर्स भी सिखाऊंगी, जेस्टर्स सिखाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किसी को ग्रीट करना है वो सिखाया जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को पेश करना है लोगों के सामने, एक बार ये चीज सिखाई जाएगी तो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के अब आप पूछेंगे इसका होटल में क्या काम है। अगर ये लोग किसी क्वालिफिकेशन की वजह से आगे फ्रंट होटल के फ्रंट में नहीं जा सकते तो ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। होटल में एक होता है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर हर होटल का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो सर्विस सेंटर में गेस्ट, जितने भी गेस्ट होते हैं, हमें लगता है हम गेस्ट हैं, हम फोन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट रिसेप्शन पे जा रहे हैं, वो कॉल जाती है सर्विस सेंटर में। ये लोग उठाते हैं, ये लोग ग्रीट करते हैं, ये लोग बात करते हैं, ये लोग होटल को रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट के सामने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्व नहीं कर पाते तब फ्रंट ऑफिस पे जाती है वो बात, रिसेप्शन पे तब जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो ये ही लोग संभालेंगे, तो इनके लिए ये अवसर है।
0: एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि बैक ऑफिस के लोग जो होते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने फ्रंट ऑफिस वाले, और सच में वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं कई बार। एक होटल इंडस्ट्री के अलावा एक नई तरीके की सीरीज, एक नए तरीके का फूडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में सब तरफ, खासकर अगर आप हाईवे पर देखेंगे जो ढाबे खुल रहे हैं वो ढाबे ज्यादातर लोकल लोग ही खोलते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों। ये जो हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट हम पाते हैं अपने होटल्स में, जो हाई ग्रेड होटल्स हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वहां से अगर हम इन ढाबों का कंपैरिजन करें, देखिए ढाबों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, पहले गुमटी होती थी, फिर थोड़ा कहीं कोई खाना बना लेता था, वो अपने अपने इनकम और अपने कैपिटल के हिसाब से करते हैं। फिर अभी मैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, रोड ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो मैं कई अलग अलग तरीके की जगहों पर जा रही हूँ जहां पर लोग ढाबों को एक अलग शक्ल में पेश कर रहे हैं, जहां पर वो लोकल टेक्सचर देते हुए ढाबों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हट शेप में केबिन्स बना रखे हैं, कुर्सियां रख रखी हैं। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर इन ढाबों को और बेहतर, कम खर्च में और बेहतर करने, और यहाँ के जो बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर या जो पकाते हैं, हालांकि ढाबे के खाने का एक अलग टेस्ट होता है लेकिन वो वहां पर उतनी वैरायटी में नहीं आपको मिलता है कि अगर मैं एक दिल्ली के होटल में चली जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे वेज दलिया दे दीजिए तो वो दे देते हैं। तो क्या हम ढाबे को की नजरिए से भी हॉस्पिटैलिटी को देखेंगे कि वो खुद कैसे रहें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे सफाई रखें, कैसे फूडिंग करें, कैसे सॉल्व करें चीजों को, वो सारी चीजें भी क्या आप इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होटल मैनेजमेंट में जाएंगे वो एक ग्रुप हो सकता है मगर कुछ लोग अपना खुद का शुरू कर सकते हैं जी, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं?
1: जरूर उसकी पूरी संभावना है, मैं आपको बताती हूँ। एक ढाबा, अगर आप ढाबे के नजरिए से देखें ढाबा, आप भी वही ढाबा चूज करेंगे जो साफ सुथरा आपको लगेगा, गंदे ढाबे में तो आप भी पैर नहीं रखेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी वहां भी आपकी काम करती है। एक ढाबा किस तरीके से ढाबा आपको लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है एक ढाबा आप शुरू करें तो उसमें आप 100 चीजें एक साथ रखें, आप 10 चीजें रखें लेकिन उन 10 चीजों का पूरा टेस्ट रखें और पूरी सफाई से अपने ढाबे को साफ रखें। आप साथ ही में बात कर रहे थे कि ढाबे को कैसे डेकोरेटिव वे में आजकल रखा जाता है, तो जैसे कि एक नाम इंसान की अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जो दिखता है वो बिकता है, तो वही आजकल केस है हमारे ढाबों के साथ। जो आप देखेंगे, जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, जो गांव के ही लोगों का ढाबा देख लीजिए, वो अपने गांव की जो भी कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से वो ढाबा बना के सुंदर तरीके से हाथ से डेकोरेट करके वैसा ढाबा रखते हैं। और अगर हम जैसे लोग वहां जाएंगे, वो देखेंगे और सफाई है उस ढाबे में, तो कौन नहीं रुकेगा उस ढाबे पे।
0: मतलब हमारा ऐसा विश्वास है हमारे सोसाइटी में कि जो जिस खाने में बहुत तेल और मसाला होता है वो खाना स्वादिष्ट होता है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
1: ऐसा नहीं है, ये गांव के लोगों की सोच है कि उनको बचपन से जो सिखाया गया है कि बेटा ज्यादा तेल वाला खाना ही सबसे स्वाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मैं जो करूंगी इन लोग के साथ, मैं इन लोग को सिखाऊंगी इन्हीं का रोजमर्रा का खाना, लेकिन कम तेल में
0: और न्यूट्रिशन को बचाते हुए।
1: जी, पूरा हेल्दी उसका क्या मतलब, जो वो खाते हैं वो कितना हेल्दी है, उनको मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी कि क्या कितना हेल्दी है। अगर इतना तेल यूज करोगे तो इतना हेल्दी है, इससे ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए खराब है, तो वो समझाया जाएगा।
0: तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे गांव आज भी बहुत ही साफ सुथरा और ताजा सामान के साथ खाना बनाते, क्योंकि सब्जियां वहां मिल रही हैं, अनाज वहां मिल रहा है, तेल वहां मिल रहा है, तो शुद्धता तो उनके पास है,
1: लेकिन सफाई और खाना बनाने के बाद की सफाई, उससे पहले की सफाई, खाना बनाते समय सफाई रखना, और कितना न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं। ज्यादा घी ज्यादा तेल न्यूट्रिशन नहीं होता,
0: ना न्यूट्रिशन होता है ना स्वाद होता है,
1: वो सिर्फ आपको आंखों में दिखता है जिनको तेल देखने की आदत है कि हाँ भाई बहुत तेल पड़ा है अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद होता है, कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से जहर होता है।
0: क्योंकि समय बदल गया है तो अब खान पान के तौर तरीके भी
1: बदलने की जरूरत है।
0: तो दीक्षा बहुत जल्दी आपके बीच में आ रही है अपनी चटपटी मजेदार और अलग तरीके की चीजें आपको बता सकती हैं, और बहुत सारा कुछ वो आप उनसे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें बाहर काम करने के लिए ही सीखी जाएं, बहुत कुछ हम अपने को आनंद देने के लिए, मजा देने के लिए भी सीखते हैं, और दीक्षा हमारे साथ यही करने वाली हैं। तो तैयार रहिए अपना परचम उठा करके कि दीक्षा का स्वागत करने के लिए एक नई हॉस्पिटैलिटी के साथ। नमस्कार, और हम लेते हैं कार्यक्रम से विदा। धन्यवाद, नमस्कार।

नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी स्वामी। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।

0: तकदीरी के साथ बदलते भारत की शान।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, पर ये दिल हमारा हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है।

0: Hello and welcome to our show, Chris is Startup Dushyant. तो दुष्यंत भाटी जी अब मेरे साथ हैं यहाँ पर और मैं चाहूंगी दुष्यंत जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें.
1: देखिए मैं मेरा नाम दुष्यंत भाटी है. मैंने अपना जो एजुकेशन करी है वो लंदन से करी है MBA, और वहां से आकर के हम लोगों ने 2018 में अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करी थी, और उसके साथ ही जो उसके साथ के और जो ब्रांचेस हैं उनको भी स्टार्ट किया है.
0: स्टार्टअप में आपने डेयरी फार्मिंग को चुना है, क्या रीजन रहा इसके पीछे?
1: वर्ल्ड में जैसे हम 2 साल लंदन में रहे तो हमने देखा कि वहां पर बड़े फार्म्स का सारा ही जितना भी मिल्क इंडस्ट्री वहां पे है वो बड़े फार्म्स के ऊपर है. तो एक ये था कि भी फार्म्स की एक शुरुआत करी जाए और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ला सकते हैं विद इन आवर्स, उसकी एक सोच थी, और उसकी वजह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को चुना. और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हमको लेके जाने थे मार्केट के अंदर, ताकि जो आज मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना था कि भाई अच्छा काम भी हो सकता है. तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग और फिर इंडियन रूट से जुड़ने का भी एक मन था, तो इसलिए इसको आके चुना कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करनी है और इसी को आगे बढ़ाना है.
0: तो कभी मन में नहीं आया ऐसा कि नहीं व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है? भाई 2 साल लंदन वाला लड़का हो जाता है तो मन में यही रहता है ना कि अगर वापस भी आना है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफिसर टाइप्स.
1: देखिए वो भी तरीके थे, बट जब करके आए वहां से मालूम चला तो ये रहा कि भाई किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है और अपने को भी बढ़ाना है थ्रू एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडियन एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसी के तहत सारी चीजें गवर्न होती हैं. और जो इंडस्ट्रीज भी होंगी या प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, तो जब तक मेन रॉ मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास तो हम प्रोसेस किस चीज को करेंगे. इसलिए ये था कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करेंगे, और बाहर से एक एक्सपीरियंस था कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए उसके साथ. तो जो हमारे यहाँ अभी स्कैर्सिटी थी कि भाई साइंटिफिकली डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम डेयरी फार्मिंग करेंगे विद अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेयरी फार्म.
0: सच बताइएगा कि जब आप लंदन गए थे तो मन में यही था कि मैं जब लंदन से वापस आऊंगा तो डेयरी का स्टार्टअप ही खोलूंगा?
1: नहीं, एक्चुअली में मन ये नहीं था. फादर ने तो ऑप्शन दिया था कि वे लंदन में ही सेटल होने के लिए, बट मेरा थोड़ा इंडियन फूड से लगाव ज्यादा है, तो फूड की बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है. तो मुझे ये था कि भाई इंडिया ही वापस चलना है, और मैं थोड़ा सा फैमिली बेस्ड भी ज्यादा रखता हूँ मन अपना, तो मैं बिना फैमिली के भी वहां पे मुझे सेटलमेंट में टाइम लगा. तो फिर ये था कि भाई कम से यहाँ आकर के कुछ करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे.
0: तो बिल्कुल यही होता है एक हिंदुस्तानी मन के, कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन जो यहाँ का जो फूड है जो यहाँ की रूट्स है उनसे हम जुड़े रहते हैं. तो आपने बताया पापा ने कहा था लंदन में सेट हो जाइए, तो जब आपने ये डेयरी वाला प्रपोजल उनके सामने रखा तो क्या रिएक्शन थी उनकी, क्या कैसा लगा
1: उनको? उनको ये था, मतलब ही वॉज बिट डाइसी के भाई एजुकेशन डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, तो कैसे उसको परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप एफिशिएंटली डेयरी फार्म की परफॉर्मेंस, बिजनेस की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको प्रॉपरली प्रॉफिट्स में लाना. तो वो मैंने कहा कि भाई अब जब करना है तो फिर करना ही है, तो तब उसको प्लान किया और आज काफी अच्छी सिचुएशन में है.
0: रिलेटिव स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं अरे भाई लंदन से तो लड़का पढ़ के आ गया लेकिन देखो कर डेयरी रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस मिली आपको लोगों से?
1: बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स मिले लोगों के कि भाई लंदन जाना था तो यही सब क्यों करना था, भाई यही कर लेते, इसके लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं. बट मुझे ये था कि भाई कम से कम बाहर की टेक्नोलॉजी को जोड़ना और उसको प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं, और इट इज वी कैन रन लाइक अ इंडस्ट्री ऑल्सो. तो बहुत लोगों ने डिप्राइव किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर लिया, एजुकेशन नहीं है, वेटनेरियन आप नहीं हो, साइंटिस्ट आप नहीं हो, बाकी कोई भी आपके पास प्रॉपर डिग्रीज की नहीं है, तो मेरे पास MBA इन मार्केटिंग है. तो तब भी मैंने कहा कि भाई जब मुझे करना है तो करना है, तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान रखते हुए कि काम को आगे बढ़ाया.
0: डेयरी हम मानते हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी चला सकता है, और आप फिर जब लंदन से MBA करके आए तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहा होगा कि अरे भाई जब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको डेयरी ही चलानी है तो कोई नहीं पूछता उसमें क्या

0: डिग्री है या नहीं है।
1: डिग्री की बात आती है कि भाई जो हमारे पुराने किसान जितने भी आजकल इंडिया में पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, पर एनिमल मिल्क एवरेज देखोगे, तो जब वर्ल्ड वर्ल्ड से उसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास डेयरी फार्म को लेकर के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचते हो कि भाई हमने गाय को एक चारा डाल दिया और हमारा काम हो गया।
0: तो बिल्कुल ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाई की जरूरत होती है, उसमें भी जो टेक्निक है उसको जानने की जरूरत होती है। तो आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है क्या चीज कैसे करनी है। और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जब हम वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दूध को लेके, तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देश में। तो ये आपने बेहद अच्छा काम किया है कि आपने इस जो डेयरी फार्मिंग है उसको छोटा नहीं समझा, लंदन से डिग्री लेने के बावजूद आपने इस स्टार्टअप को चुना है, बेहद अच्छा आपने काम किया है। तो जब आपने ये शुरू कर दिया तो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस क्या थे?
1: हम लोगों ने इसको एज ए इंडस्ट्री पहले दिन से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी। तो इंडस्ट्री में और डेयरी फार्मिंग में क्या है कि वहां पे आप मशीन से डील कर रहे हो, वो लिविंग बींग नहीं है। और ये आपके पास अगर 100 काउज हैं तो वो सारे लिविंग बींग्स हैं। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ह्यूमन वर्किंग में आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि हर काउ का बिहेवियर अलग है, उसका वेदर को फील करने का तरीका अलग है, ईटिंग हैबिट अलग है। तो पहले तो उसको जज करना और एग्जामिन करना वो बड़ी चीज थी। और जब आप मशीन में, आपको पता है कि भाई आपने मशीन का ऑन किया बटन, वो आपको परफॉर्मेंस उसी तरीके से देगी, बट इनका हर मंथ हर डे डिफरेंट है तो डिफरेंटली आपको प्रोडक्शन देगी। तो उस हिसाब को आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मशीन में क्या है, आपने एक कोडिंग कर दी या एक तरीके से डिजाइंड है, वो आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देगी। इसमें क्या है कि आपको काउस के साथ एडजस्ट होना है, उनके हैबिट्स को देख के आपको अपने डेयरी फार्म को चलाना है जिसको आप एक इंडस्ट्री का रूप देना चाह रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी और धीरे धीरे उसको एड्रेस किया, सीखा, समझा। मुझे 3 साल लगे पूरे उसको एड्रेस करने में, बट आज की डेट में हम वेल सेटिस्फाइड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ही अच्छी हेल्थ है हमारी काउस की।
0: तो दुष्यंत जी, आपकी बातों से लग रहा है कि काफी अच्छी रिसर्च अब आपने इस पे कर ली है। आपने बताया कि काऊ का बिहेवियर भी अब आप समझने लगे हैं। और व्यूअर्स, सारी कहानी हमने जान ली है कि व्हाट मेक्स हिम चूज डेयरी फार्मिंग। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे इनकी हाईटेक डेयरी पर और जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचे, आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो ये है आपकी हाईटेक डेयरी। तो दुष्यंत जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी गाय को बांध के नहीं रखा है।
1: ये एक लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें गाय के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का बांध के इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी उसको मिले खाने के भी, और एन नंबर ऑफ टाइम में उठ के वो खा सकती है, और प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बांध के रखेंगे तो वो हमारे मन से खाएगी, हमारे मन से पिएगी, और इसमें क्या है कि उसके पास अपना टाइम है कि भाई कभी भी खाना है, कभी उठना है। हमारे यहाँ दो टाइम मिलके फीडिंग होती है, तो दो टाइम में सुबह और शाम, तो सुबह के टाइम में भी वो पूरे दिन खा सकती है और शाम को भी पूरे दिन खा सकती है। और अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे तो पानी हमें पिलाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम खाना डालेंगे उसी टाइम पे वो खाना खाएगी, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी डाउन जाती है और उतना बेटरमेंट भी फील नहीं होता उसको। तो आप अगर समझिए कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हमें किसी आदमी से भी चाहिए, तो उसको जितनी व्यवस्था देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करके देगा, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर भी
0: जी। ये लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में है या ये आपने कहीं और से अडॉप्ट किया है?
1: जी, मतलब ये है तो इंडिया में भी, और खासकर इन ब्रीड्स में ज्यादा इसको अडॉप्शन लिया गया है। इंडिया के अंदर भी काफी स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है, और वेस्टर्न कल्चर तो इसका है ही मेन।
0: और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर हैं?
1: यहाँ पे होलिस्टीन है और जर्सीज हैं, और कुछ मिक्स ब्रीड्स हैं जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ब्लड दोनों।
0: तो इन तीनों ही अगर मैं बात करूं जो आपने ब्रीड्स बताई हैं, इनके मिल्क में क्या कुछ डिफरेंस होता है, किसका ज्यादा आपके हिसाब से बेटर होता है?
1: मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज सारी चीजें इनके ईटिंग हैबिट्स में है कि आप उनको कितनी साइंटिफिक और बैलेंस डाइट दे रहे हो। अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं तो उसमें दूध का कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आसपास के फार्म के डेयरी फार्म है उनसे भी मैंने दूध को प्रिक्योर करके अपने टेस्टिंग कराई है, हमारे अपने दूध की भी टेस्टिंग करी है, और जो A1 A2 कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने देखा है कि हर काउ के अंदर अवेलेबल है, और जो हम सीमन लगाते हैं इन काउस के अंदर तो हम वही लेते हैं जिसमें A2 हो, तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट इतना लागू नहीं होता है। बट लेकिन एक मार्केटिंग आजकल के ट्रेंड चल रहा है जिसको A1 A2 का बड़ा लोग मानते हैं, बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, और अगर है भी तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। A2 काउस भी हमारे पास हैं जिसका सीमन हम A2 ही लगाते हैं
0: जी।
1: तो वो चीज भी है, और टोटली ऑटोमेटिक हमारा डेयरी फार्म है, तो इंडियन ब्रीड्स थोड़ा सा जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये इजीली उसमें अडैप्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं ब्रीड्स को कॉमर्शियली अपने डेयरी फार्म में रखा है।
0: आपने बात की कि आप जैसा फोडर चारा इनको खिलाते हैं उसी तरह का आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है इनसे मिल जाता है, तो फोडर पे आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए जो किसान आपको आज सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में करना है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलाना है, बिकॉज हर गाय का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही उसका बॉडी वेट है, अलग ही उसकी मैकेनिज्म है, तो उस हिसाब से एक बैलेंस डाइट बनती है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेट कितना है, ग्रीन फॉडर कितना है, साइलेज कितना है, विटामिन मिनरल्स कितने हैं, और अपना हे कितना है। जिस तरीके से हम लोग इनको जो भी चारा हम डालते हैं उसमें मिक्स राशन और बैलेंस डाइट, जो टोटल मिक्स राशन मशीन है हमारे पास, उसी से हम ऑटोमेटिकली इसको डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पर ग्रुप वाइज जितने भी हमारे पास बॉडी वेट्स हैं, जितना भी मिल्क यील्ड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं किस गाय को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर, साइलेज और हे, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग अपनी खलचूरी चोकर बोलते हैं, तो उसकी एक हम लोग फीड लेते हैं किसी एक कंपनी की, तो वही हम बिल्कुल इसको संतुलित करके इनको डालते हैं ताकि अच्छा दूध मिल सके, नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं वो कम हो, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और कहीं पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई टाइम एंड टेम्परेचर मिल्क में बहुत मैटर करता है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि जितनी देर में मिल्किंग हो उतने ही देर में वो अपने चिलिंग सेंटर में पहुंच जाए, तो इसीलिए फॉडर का बहुत बड़ा रोल है डेयरी फार्मिंग में, कॉमर्शियली वायबल भी करने के लिए और इनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए।
0: तो जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, हमारे इन कैटल्स को भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। आपने जान लिया इनको क्या कुछ जरूरी है। अगर बात करूं दुष्यंत जी ट्रेनिंग की, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है डेयरी की?
1: देखिए, ट्रेनिंग एसएस तो मैंने एक्सपीरियंस लेके ही ली है, कोई कोर्स वगैरह इसका नहीं किया है, बट लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और नंबर ऑफ जितने भी किसान हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उन सबसे मेरा टेलीफोनिकली भी बातचीत होती रहती है, मिलते जुलते भी रहते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम उन्हें बताते रहते हैं, तो ऐसे ही करके हम लोग सीखे। एनडीआरआई में भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे साथ कनेक्शंस हैं, उन्होंने काफी चीजें सिखाया है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि गाय को कैसे पालते हैं, कैसे खाना खाती है गाय, किस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं, तो वो सारी चीजें ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सीखने को मिला है।
0: और वैसे भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही आपको सक्षम बनाती है।
1: जी, उसको भी मैं मानूंगा कि भाई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें सारा ही डेटा, सारी ही चीजें वहीं से मिली हैं। जैसे एफी मिल्क से हम कनेक्टेड हैं इसराइल से, तो वहां के कुछ फार्म मैनेजर्स वगैरह हैं, उनकी विजिट्स हमारे यहाँ हुई हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया है, बिकॉज वेदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, समर्स में कैसे मेंटेन करना है, विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है। तो इस तरीके से उनसे भी डेटा मिला है, नंबर ऑफ एंड यूजर्स से डेटा मिला है, कुछ डेयरी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो सबकी समस्या सुन के, अपनी समस्या बता करके, इस तरीके से इसमें सुधार आता जा रहा है दिन पर दिन।
0: इसीलिए शायद आपने जो शावर्स हैं इनको लगाया हुआ है।
1: जी, ये समर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो शावर्स, फैंस, इसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये इसराइल में बहुत इसका यूज किया जाता है, अपने पंजाब में बहुत यूज किया जाता है, तो वहीं से, ताकि गायों को क्या है कि इनके स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इनको हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फैंस और फॉगर्स का यूज करते हैं, और इनको हर 3 घंटों में शावर भी देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से कूल डाउन रहे और अपनी चारे को पूरा खत्म करें शाम तक।
0: हाँ, दुष्यंत जी, आपने एमबीए किया है, आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो उस डिग्री को आप इस अपने स्टार्टअप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: ठीक है, उस चीज को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से लेके चले हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो हमने अपने यहाँ बना रखे हैं। उसके साथ साथ हमने जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं और उसको सबको मार्केटाइज कर रहे हैं हम। तो आज हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 डिलीवरीज हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट फार्म टू होम कर रहे हैं, और ये लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो एंड यूजर तक हमने प्रोडक्ट को पहुंचाया है ताकि कोई भी बीच में मिडिलमैन ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो सीधा कस्टमर तक पहुंचे, तो उस चीज को हमने वहां एप्लीकेबल किया है।
0: बिल्कुल, जो लंदन से डिग्री लेके आए हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है इस डेयरी फार्म में।
1: जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप देख सकती हैं कि इसका जो इंफ्रा बनाया हम लोगों ने, इनकी हैबिट्स हैं, ये टोटली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं, इनके गले में नॉब पड़ी हुई है जिससे हमें इनका डेटा मिलता है कंप्यूटर के ऊपर कि इन्होंने मास्टिकेशन, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो कितनी करी है, तो इस गांव में आप देख भी सकते हैं ये गले में डला हुआ है। इस तरीके से हमें सारा कंप्यूटर पे डेटा भी मिलता है इनका कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने घंटे इन्होंने खाया है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करा है, तो इनका हीट पे आने का सिस्टम कब है, तो वो भी इंडिकेशन हमें पहले मिलती है 12 घंटे। तो उससे हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमारे फार्म में क्या होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं।
0: तो दुष्यंत जी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ, और यहाँ पर मिल्क किस तरह से आप निकालते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं आप?
1: जी, तो
0: मैन्युअली होता है या
1: नहीं? मैन्युअली नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच है, मशीन्स लगती हैं, एक पैडॉक जोन बना हुआ है मिल्क पार्लर का, तो वहां पे गाय आती है, पहले वो उनका बेथिंग लगा हुआ है, स्प्रेज लगे हुए हैं ऊपर, तो बेथिंग करके फिर उनको उसमें जाती है मिल्किंग पार्लर में, वहां से दूध निकलता है और वो डायरेक्टली सीधा चिलिंग सेंटर में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए, विदाउट हैंड टच पाइप्स के माध्यम से ही वो पहुंचता है, और LSA भी वहां रहता है हमारे, और जो मिल्कर्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो प्रत्येक छन को चेक करते हैं, दूध की गुणवत्ता को देखते हैं, उस तरीके से फिर हमारे पास अपनी लैब भी है, उस लैब में हम लोग दूध की टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग से पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद डिलीवरीज में जाता है कस्टमर्स को।
0: तो हम जानेंगे कि किस तरह से जो दूध निकालने का प्रोसेस है मशीनों द्वारा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर। इसका जो माइंडसेट था काम के प्रति वो ये था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए उसने इस फील्ड को चुना। लोगों ने इसको बहुत कुछ बोला कि भाई ये कैसे काम है, पढ़ा लिखा के ये करा वो करा, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने आप को सीधे रास्ते पे काम करते हुए, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ होता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको आगे ले गए हैं और आज उसको इतनी कामयाबी उसमें मिली है, उस
2: उसके काम से, उसके काम से, उसके नाम से आज हम बहुत खुश हैं। और ये बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई इस तरह के माइंड को सेट करें और इन जमीनी चीजों से, ये हमारी इंडिया का एक कल्चर है और हम लोगों को इसे आगे ले जाना चाहिए। बच्चों को काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चों को ईमानदारी से और सहलगन से काम करना चाहिए।
0: ये एक नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे वो लंदन से पढ़ के आया है, उसने MBA किया है और अपने रूट से आके वो जुड़ा है और सारी जो चीजें उसने की हैं ये बहुत हाईटेक लेवल पे की हैं। तो इसे देख के हमको और हम पूरे घर वालों को एक बहुत मतलब खुशी मिलती है।
3: ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसमें जहाँ से मिल्किंग होती है डायरेक्टली वो ऊपर आता है और उसमें चिलर में आता है फर्स्ट, वो सेकेंड पैश्चराइजेशन में आता है। पैश्चराइजेशन होने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनने होते हैं, जैसे मिल्क जाना है अगर मार्केट में तो काव मिल्क का बैच बनेगा, बफलो मिल्क का बैच बनेगा, FCM है जो फुल क्रीम मिल्क के नाम से आता है, वो 6 लीटर की पैकिंग है हमारी, वो उसके हिसाब से बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन है जिसमें पैश्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेटर, जब घी बनाना होता है तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर है, बाकी उसकी बॉइलिंग केटल्स हैं, तो और डिफरेंट जैसे स्वीट्स के लिए जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट मिल्क का कैटेगरीज बैच बन करके वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना इन्हीं मशीनों के द्वारा चला जाता है। CIP स्टेशन है, बाकी नीचे एक पैडॉक जोन है जिससे कि जो हमारा हापुड़ वाला कलेक्शन सेंटर है वहां से भी दूध आता है तो डायरेक्टली वो यहाँ आ जाता है, उसका भी नीचे पैडॉक जोन है।
0: तो काफी सारी मशीन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो क्या आपने इस सेटअप को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट से कोई एड लिया है?
3: जी, अभी हम लोग एप्लीकेबल है उसमें और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो उसमें यह है कि पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रोजेक्ट DPR सबमिट करेंगे, आफ्टर दैट वो लोग उस पर टेक ऑफ करेंगे कि भाई कैसे लेना है, कितना आपको मिलेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 20,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है पर डे।
0: जी, और काफी बड़ा सेटअप यहाँ पर मैं आपका देख पा रही हूँ, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर?
3: अभी करीबन 105 लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 20 गांव अलग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली मिल्क को हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
0: तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो स्टार्टअप की अच्छी बात यही होती है कि आप दूसरों को भी रोजगार दे पाते हैं, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एक रोजगार डेवलप करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर पाते हैं।
1: जी,
0: और जैसे कि आपने बताया था कि आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ,
1: जी,
0: तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पर तैयार?
3: देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपना काउ मिल्क, बफलो मिल्क, FCM, और फिर छाछ है 2 टाइप की, तड़का और प्लेन, घी है 4 टाइप के, काओ, बफेलो, देसी गाय, मिक्स मिल्क का जो घी है जैसे देसी घी हम लोग मार्केट में जानते हैं वो है, खोया है, और वर्मी कंपोस्ट है, हम लोग जो गाय का गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं विद अ मोबाइल ऐप, तो ऑनलाइन हमारी ऐप के थ्रू सभी लोग उसको परचेज कर पाएंगे विद इन 5 or 10 days।
0: और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी या कुछ?
3: नहीं, वो अभी 2 districts है, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, बिकॉज हमारे पास उतनी ही प्रोडक्शन है जो हम 2 जिलों को केटर कर सकते हैं अभी, और प्राइमरी फोकस हमारा क्वालिटी पे है तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी।
0: जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े और आप और लोगों को रोजगार दें। और अगर मैं दुष्यंत जी आपसे आपके फ्यूचर विजन की बात करूँ तो क्या है वो आपका?
3: तो फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि पहले तो 20,000 लीटर को प्रोसेसिंग करके ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आए प्लांट को, उसके बाद हमारा 1,00,000 लीटर का प्लांट लगाने का भी है और FMCG प्रोडक्ट्स में भी हमारा आने का प्लानिंग है, कि जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल है, दाल है, मसाले हैं, चावल हैं, सीरियल्स हैं, तो नॉन पॉलिश्ड जितने भी ऑर्गेनिकली हम लोग उसको प्रिक्योर करके पैक करके कस्टमर्स को देना चाहते हैं विद सेम नेम ऑफ धनश्री, तो इसी के तहत हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के चल रहे हैं।
0: तो बहुत अच्छा विजन आप लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन आप लेके चल रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: डेयरी फार्मिंग में आए और उससे क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का करें, जैसे गाय का मूत्र है तो उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर है तो गोबर को आप वर्मी कंपोस्ट में कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट तक जा रही है, बाकी जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उनमें उसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो उसकी भी आपको कॉस्ट मिलेगी, अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी भी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट की हर जगह सेल्स आपको मिल जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बेचने में, जहाँ आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप कैसे भी करके उसको बेच लेंगे, और एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहेगा, वो किसी भी फील्ड में करना चाहेगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। तो मेरा सभी युवा साथियों के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करके और एक विजन को लेकर के और प्लानिंग के साथ चलें, जरूर कामयाब होंगे।
0: एक बेहद अच्छा जो मैसेज है वो यहाँ दुष्यंत जी ने आपको दिया है, और दुष्यंत जी की जो स्टार्टअप जर्नी आज हमने जानी है उसको पूरा सुनकर और जानकर दो लाइनें मुझे यहाँ याद आती हैं, जो यू है कि साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो आपकी जर्नी काफी आसान थी, चाहते तो आप भी एक कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते थे, बट आपने डेयरी जैसे स्टार्टअप को चुना जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और मेहनत वाला काम है
3: जी।
0: तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके जल्दी से सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप अपने जल्दी से टारगेट्स को पूरा करें। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम डीडी किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू इन माय शो।
3: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आपका फीडबैक हमें मिलता है आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।

0: यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूं भी किस टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ उसके अलावा भी किस पॉइंट पे फोकस करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो प्राइमली करियर्स इन एग्रीकल्चर के ऊपर है, ठीक है। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारा सेशन है। और एग्रीकल्चर में आपकी कुछ डोमेन्स हैं, मतलब एक तो वो बच्चे हैं जो एक तरह से एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, वो बच्चे हैं जो एक तरह से उन्होंने अपना 10th 12th के बाद वो अपनी खेती करना चाहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या और भी ऐसी ऐसी डोमेन्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब वो आपकी डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें आप कुछ प्रोफेशनली एग्रीकल्चर जैसे हॉर्टिकल्चर है या और भी कई तरह की खेती है जो आप कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम थोड़ा ये भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज ऑफ सेशंस हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली आज हमारा मतलब अब ऑलमोस्ट ज्यादातर जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, अब एक दो सेशंस हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन की बात करते हैं बार बार, तो सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि जैसे आप जनरल स्टडीज की बात करते हैं जीएस की, तो कैसे जीएस के लिए प्रिपेयर किया जाए, वो भी एक हमारा टारगेट है आज की सेशन के अंदर, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करूंगा बेटे एग्रीकल्चर के ऊपर कि अगर आप एक एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर उसका स्कोप क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को स्कोप के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो उस फील्ड में नहीं जाते। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जिन बच्चों के पास में 12th में मेडिकल साइड होती है, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्रीकल्चर भी एक तरह की साइंस है, इसमें भी आपको 12th में आपके लिए मेडिकल साइड होना चाहिए, आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या रहता है कि इंडिया में काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीएससी ऑफर करती हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक तरह से 4 ईयर का प्रोग्राम होता है 12th के बाद में, जिसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस या उससे जो रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उनके बारे में टीच किया जाता है, ठीक है। ये मतलब हम नाम में कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं, बट ये डोमेन काफी वाइड है। इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सोयल साइंस, मतलब ये जो खेती की बात करें, देखिए आप जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में सोयल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसमें आप सीड डाल रहे हैं दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डाल रहे हैं कैसे आप उसे डील करते हैं, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको सभी डोमेन्स के बारे में टीच किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ मेथड्स हमारे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आपके मेथड्स हैं या नए नए चीजें ऐड हो रही हैं, आप देखें आज के टाइम में एग्रीकल्चर एक तरह से प्रोफेशन के तौर पर सामने आया है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें टीच की जाती है, ठीक है। डोमेन बहुत अच्छा है, स्कोप भी काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर सबसे अगर हम जीडीपी की बात करें तो आज भी एग्रीकल्चर का रोल काफी ज्यादा है और बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, ठीक है। आप मतलब चाहे आपकी क्लोथ इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे आपकी बेवरेज इंडस्ट्रीज है, मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, तो स्कोप इज वेरी वाइड। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, 4 ईयर प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बीएससी एग्रीकल्चर का जो एडमिशन प्रोसेस है बेसिकली एंट्रेंस बेस पर है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टीच किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये प्राइमरी कोर्स रहता है, तो जनरली इसमें एंट्रेंस एग्जाम बेस है, ठीक है। इसमें 12th की जो मिनिमम कंडीशन है 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पास हो, मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेडिकल साइड होना चाहिए आपके पास में। फीस जो आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है वहां फीस काफी कम है, ज्यादा फीस नहीं है, मतलब कम मतलब जितना आप बीए बीएससी करते हैं उतना ही फीस आपको पे करना रहता है, ठीक है। बट सैलरीज आपको मिलती है, मतलब आप अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और वहां पर कंपनीज भी आती हैं आपको अलग अलग तरह की जॉब ऑफर करती हैं, जैसे मैं आपको कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स बताऊं। सबसे पहला स्कोप जो एग्रीकल्चर का आता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का आता है, जो एक तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। प्लांटेशन मैनेजर की वैकेंसी होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है। मैं इन सब के बारे में इन डिटेल आपको भी बताऊंगा किसका क्या क्या स्कोप है। और काफी प्राइवेट कंपनीज भी है, मतलब बहुत प्राइवेट कंपनीज है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, सीड्स में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, फिर उसकी प्रोसेसिंग में, तो काफी इंडस्ट्रीज है, काफी प्राइवेट कंपनीज है जो उसमें डील करती है, तो वो आपको हायर करती है, वहां आपको इजिली जॉब मिल जाता है। तो स्कोप इज वेरी वाइड, ठीक है। अब इसमें आप इसके अलावा देखिए, तो मैंने एक जनरल बात करी भी, आप ऐसे जॉब्स कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप अपना एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर किया है, अगर आपके पास में लैंड है अपनी, या बहुत लोग तो क्या करते हैं कि दे टेक द लैंड और उसके बाद उस पर अपनी खेती करते हैं प्रोफेशनल टाइप से, आजकल जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि उनको काफी अर्निंग हो सके। आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश द नर्सरी। देखो आप देखेंगे अगर जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली है, गुड़गांव है, तो यहाँ पे लोगों ने नर्सरी बना रखी है, छोटी छोटी प्लेसेस के ऊपर, मतलब जो छोटे छोटे आपके पौधे होते हैं जिससे आप अपने घरों में पौधे उगाते हैं, तो दे हैव मेड द नर्सरी। आप मानेंगे नहीं, गुड़गांव के अंदर एक आपको तुलसी का पौधा चाहिए छोटा सा, तो मेरे हिसाब से 200 से 250 रुपए का छोटा सा आपको गमला मिलेगा जिसको आप पोर्ट में डाल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपको, मतलब स्कोप है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। देखिए अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपकी टू टाइप्स की जॉब्स होती हैं। एक आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, आपने सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया, ठीक है। सेकंड होता है जहां आपको थोड़ी मेहनत करनी रहती है, मेहनत मतलब कि आपको अपने हाथ से काम करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करना रहता है यहाँ पर आपको। बाकी आप यू कैन ऑल्सो मेक द कंसल्टेंसी, जो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये काफी वाइड स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर का, और आप इसमें हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। जैसे देखिए आप कोई भी जो डिग्री करते हैं, देखिए आप ऐसे बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपना करियर बिल्डअप करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब एज ए एकेडमिक, ठीक है। तो पर आपको नहीं करना, तो कम से कम आपके परिवार में और बच्चे हैं उनको भी अगर प्रोफेशन के बारे में पता चले तो वो भी अपना स्कोप बना सकते हैं। देखिए क्या रहता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, ऐसा नहीं इसके बाद आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्टडीज कंटिन्यू में क्या आप एमएससी कर सकते हैं। अब जब आप एमएससी करते हैं तो एमएससी में क्या होता है कि आपको अब थोड़ी सी डोमेन स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर तो वाइड कोर्स है, ठीक है। अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब सोयल साइंस में एमएससी होती है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी होती है, इकोनॉमिक्स में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, प्लांट साइंस में है, फिजियोलॉजी में है। तो मतलब आपकी अलग अलग आप स्ट्रीम्स में, डोमेन्स में एमएससी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो एमएससी करने के बाद फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जैसे आप बीए करने के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एसटेट सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है तो आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है। तो सेम यहाँ पर है, एग्रीकल्चर में भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने बीएससी के बाद में एमएससी किया हुआ है तो एमएससी के बाद में फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एज ए लेक्चरर जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस है वहां पर आप एज ए लेक्चरर अपने बन सकते हैं। काफी प्राइवेट कॉलेजेस है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर, तो वो उन सब में आप अपना स्कोप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बीएससी एग्रीकल्चर को ऐसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ही स्कोप है एग्रीकल्चर का, आपका गवर्नमेंट में भी काफी स्कोप है, काफी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही माना जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो मतलब एक साल में कोई बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर करते हैं, और जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके हिसाब से ही निकलती है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है एडीओ, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, हर स्टेट में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हर एक ब्लॉक के अंदर, जिसका काम अपने एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपना हॉर्टिकल्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके केन ऑफिसर हैं, कंजर्वेटर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, मतलब काफी गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट फील्ड में भी एग्रीकल्चर का काफी स्कोप है। मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताता हूं जहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू, मतलब बहुत टॉप पे नाम आता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर के अंदर, जैसे आपका पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, ठीक है, ऐसी पालमपुर में है हिमाचल प्रदेश के अंदर। श्रीनगर में भी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। आपका मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो मतलब पूरे इंडिया में हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, मतलब एक एक तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। ये मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की है, बट एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है, ठीक है। और उसका आपका ट्वेल्थ में, जैसे आप ट्वेल्थ पास करते हैं, जिस साल आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, और उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन भी हो जाता है। तो ये एक आपके लिए टारगेटेड कॉलेजेस रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना एग्जाम लेती है, दे टेक द एग्जाम इन द ग्रुप, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस एक से ज्यादा होते हैं। जैसे आपका बीएचयू है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। आंध्र प्रदेश में एपी ईएमसीटी का एग्जाम होता है, जो एग्रीकल्चरल फार्मेसी, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और जो बच्चे भी उसमें जाना चाहें उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके बाद उनका एडमिशन होता है। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और भी आप देखिए आपका ओडिशा है, हरियाणा में भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, पंजाब में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो मतलब हर स्टेट में इनके अपने अलग अलग एग्जाम होते हैं जो एक तरह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मैं बात कर रहा था बेटे जॉब्स कहाँ कहाँ है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आपकी एक टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है और काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है इसके अंदर। और इसका मेन काम क्या रहता है कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टिंग है उस एरिया के फार्मर्स को एडवाइस करना भी कैसे है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे आज के टाइम में गवर्नमेंट का काफी फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इंडिया अगर सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर के अंदर तभी वो पूरे वर्ल्ड के साथ, हम देखें भी हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमें रेवेन्यू भी मिलता है एग्रीकल्चर से, तो जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही लोगों को भी फायदा है। आज जैसे आप लोगों में से काफी लोग, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मिंग बैकग्राउंड से डील करते होंगे, मतलब उनके परिवार में एग्रीकल्चर से डील करते हैं, तो आप जैसे देखते हैं कि कॉस्ट बढ़ रही है पहले के मुकाबले, बट प्रोड्यूस उतना नहीं, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, या प्रोडक्शन है तो उतना प्राइस नहीं मिल पाता। तो जो फार्मर है उसे आज के हिसाब से, क्योंकि अभी जो फार्मर है, हम देखेंगे अगर हम गांवों की बात करें तो फार्मर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो आज भी जो फार्मर है वो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कुछ हद तक है बट उसे टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। आप देखिए आप कितने ऐसे किसानों को जानते हैं जिनको एग्रीकल्चर की टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, आप जॉब करते हैं, कोडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले आप 3 से 4 साल का आपने पहले इंजीनियरिंग किया होता है, आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड काम करते हैं। बट आप कभी सोच के देखिए कि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, जिन्होंने उसमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग किया हुआ है। तो आप पाएंगे कि मतलब कोई भी नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर उन्होंने खेती करा। हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं क्योंकि हमारे को परिवार से लैंड मिली है और हम उसी पे अपना खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, सेम प्रोसेस पे जिस पे हमारे पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर किया, उसी पैटर्न के ऊपर ही। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है उसके अंदर। तो थोड़ा सा अगर आप ये जो बच्चे जिनकी खेती है ऑलरेडी फैमिली के अंदर, तो अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, अगर वो बीटेक एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको काफी फायदा हो सकता है, उसको अच्छा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बाकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो है ही, मतलब अगर आपको फार्मिंग नहीं भी करनी है तो फिर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे ये सारी जॉब्स जो है, ये एक तरह की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब होता है, टेक्नीशियन का जॉब होता है। तो ये मतलब हर स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, और उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका एग्रीकल्चर इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, और जिसके बेस पे फिर आप वहां पर अप्लाई करते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, प्लांट ब्रीडर है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट है, मतलब वो अलग अलग आपकी डोमेन्स है, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आपने काम किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे वैकेंसी आती है और उसमें आप फर्दर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब स्कोप अच्छा है एग्रीकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर का भी। अगर आपने ट्वेल्थ में नॉन ट्वेल्थ के अंदर अगर आपके पास में साइंस साइड है और आप एमबीबीएस पीएमटी या फार्मेसिस्ट में नहीं जाना चाहते, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकते हैं, ये एक अच्छा लाइन है, करियर आपका बन सकता है। आप देखेंगे बेटे आजकल कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बीटेक भी कराती हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जैसे एक तो बीएससी एग्रीकल्चर है, कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक भी कराती हैं। उसमें क्या है कि ट्वेल्थ में आपके पास में मैथ्स भी होना चाहिए, मैथ्स कम बायोलॉजी, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीटेक एग्रीकल्चर में थोड़ा आपको एडवांटेज क्या हो जाता है, अगर आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया है तो उसमें क्या है, जैसे कुछ आपके जो इक्विपमेंट्स इंजीनियरिंग है, जैसे एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और भी बहुत चीजें, जब आप खेती करते हैं तो काफी तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड काम हो जाता है, फील्ड एप्लीकेशन है आपका, इंजीनियरिंग इरिगेशन है, तो ये काफी स्कोप हो जाता है बीटेक एग्रीकल्चर का। बस मेन थिंग है कि वो स्कोप सारा आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में भी, आज का हमारा जो सेशन है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई ऐसा बहुत बड़ा, हम ये कहें कि बहुत बड़ा डोमेन नहीं है। अगर हम बात करें एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन की, मतलब प्रोफेशनली, तो अगर आपको एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन इंक्रीज करना है तो आपको पहले बीएससी करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग स्कोप आपके बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करूं, नहीं देखिए आजकल क्या है कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा, सब बच्चों ने, कोई बताएगा मुझे आप में से एनीवन आउट ऑफ यू कोई भी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है, मतलब क्या, क्योंकि आप लोग काफी बच्चे ऐसे हैं आप में से जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये टर्म हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है और क्या स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आज हम कहीं सामान खरीदने चले जाए, किसी मॉल में चले जाए, हमें वीट राइस कुछ भी खरीदना है, तो ऑर्गेनिक वीट मिलता है, ऑर्गेनिक राइस मिलते हैं, जिनकी जो प्राइस है जनरल वीट और राइस से काफी ज्यादा होता है। तो आप में से कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्या पता है?
1: हाँ जी सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे शायद ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा मालूम है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हम कोई भी सिंथेटिक यूज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, हम उनका यूज नहीं करते फार्मिंग करने में, और नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: और
0: जी सर
1: नेचुरल सीड्स और हाइब्रिड नहीं यूज करते हम कुछ भी, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी बहुत कम आती है, इसमें क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहता है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जैसे आप देखिए जो इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आप सबको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि सीड्स आए नए, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजर यूज करने लगे हम, यूरिया यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हुई उससे, ठीक है। पर स्टार्टिंग में तो हमें बहुत फायदा हुआ, पर धीरे धीरे फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। तो आज समय ऐसा आ चुका है कि जो हम एक तरह से खाना खाते हैं जिसको जहरीला खाना बोला जाता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है। आप देखिए आज से कुछ साल पहले किसी को कैंसर नहीं हुआ करता था, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो कैंसर नाम की जो बीमारी थी वो ओनली एक टाइप से मूवीज में आती थी, अपने आसपास में हमें कैंसर का कोई विरला ही मरीज मिलता था। बट आज हम देखें कि आज कैंसर के जो मरीज हैं डे बाय डे काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारी जो हम खाने में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो खेती में फर्टिलाइजर्स को कम करना, यूरिया का कम यूज करना, मतलब एक तरह से ना के बराबर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है कि जब आप खेती करते हैं तो उसमें आप जो भी यूज करें ट्रेडिशनल चीजें यूज करेंगे, ठीक है, उसमें यूरिया ये कोई भी चीज यूज नहीं की जाती। उससे प्रॉब्लम क्या रहती है कि स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस है वो कम होती है कंपैरेटिवली, बट उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है। अगर आपकी लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ठीक है, मतलब आपके ये अगर आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि आपके यहाँ से जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल टॉक्सिक फ्री है, उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, तो आप देखेंगे उसका प्राइस जो है वो मार्केट में कंपैरेटिवली ज्यादा आपको मिलेगा। तो काफी लोग ऐसा है जो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। और जो बहुत फार्मर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम लगा रहे हैं, इसके साथ साथ अभी देखिए जो फार्मिंग हमारे यहाँ होती है उसमें एक तरह से जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनकी की जाती है, बट आज का टाइम ऐसा है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ भी आप अलग अलग क्रॉप्स की, मतलब उन क्रॉप्स की जिनकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा आप देखें कि जो फार्मर है, मतलब आप लोगों में से जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं वो भी थोड़ा इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए जो पैसा वही कमाता है जो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अभी हमारे एग्रीकल्चर में क्या है कि फार्मर ने खेती करी, फार्मर ने प्रोड्यूस आया और प्रोड्यूस को उसने मिडल मैन को बेच दिया, ठीक है। अब जो मिडल मैन है वो आगे छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है और दुकानदार फिर आगे चीजों को सेल करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो जो शॉपकीपर अर्न कर रहा है क्योंकि जो फाइनल कंज्यूमर से पैसा निकलवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा फार्मर जो है वो एक तरह से मंडियों पर डिपेंडेंट है ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर आपकी फैमिली में मतलब खेती होती है। फिर आपको प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सब जानते ही हैं कि जैसे आप कपास की खेती अगर करते हैं तो कपास की वैल्यू बहुत कम है, बट वही अगर उसी कपास से आपने ऊन बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम हमारे एग्रीकल्चर के साथ में है कि हम किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम उसी प्रोडक्शन को ही आगे बेचते हैं तो अगर उसकी वैल्यू कम है, बट अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके बेचें, उसको कन्वर्ट करके बेचें किसी एक्चुअल ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसको यूज किया जा सके, तो वहां से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो इस तरह से ये काफी मीन्स है, बट अगर प्रोफेशनली तरीके से किया जाए एग्रीकल्चर को तो आप ये मानेंगे भी एग्रीकल्चर भी एक ऐसा प्रोफेशन, मतलब इसको एज ए प्रोफेशन यूज किया जा सकता है। और आप देखें आज तो मैं अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में थे, अपनी जॉब छोड़ के अब वो खेती की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे कामों की तरफ मूव कर रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। आप देखें अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आजकल काफी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती होंगी कि गाय का घी, गाय का दूध, वो जो इस तरह के प्रोडक्ट है वो आपको मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द कंपनीज, कई सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी एक फ्यूचर का फील्ड है और उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. मतलब आपका एक तरह से जो लो इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि वो एक टाइप से डेयरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. उन्होंने 4 से 5 मतलब ऐसे लोगों से बात किया जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया भी जैसे जो प्योर मिल्क आपको मिले, फिर वो उनसे इकट्ठा करके शहरों में आके बेच देते हैं. तो देखिए लोग आजकल क्वालिटी कॉन्शियस काफी ज्यादा है, तो आप भी अगर इस तरह के फील्ड में काम करना चाहें बट आपको क्वालिटी मेंटेन करना रहता है तो अच्छा स्कोप है और बहुत इजीली आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत वाला काम है एग्रीकल्चर का.
2: हाँ दिनेश जी, मैं इसमें है ना 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ.
0: जी सर.
2: पूसा एग्रीकल्चर जैसे बिहार में है, आपको समस्तीपुर में, वहाँ भी लोग जैसे कि बीटेक के लिए मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज इलाहाबाद में, वहाँ भी एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा है स्कोप है. जैसे बीटेक करने के बाद जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि आपने ड्यूपॉन्ट के लिए बोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो लोग महिंद्रा ये भी मैं बता दूं, आप बीटेक ना करें, आप एमएससी यदि आप बायोलॉजी में करते हैं, आप यदि आप बॉटनी वगैरह में करते हैं आप, तो वहां से भी आपको काफी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो आपको इन हाउस मतलब यू नो सो इन कैंपस में आती है, बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाती है. अपार्ट फ्रॉम जैसे कि गवर्नमेंट का भी एक, जैसे आपने बताया ही है कि स्टेट गवर्नमेंट हो ऑलरेडी आपको एक वैकेंसी भी निकालती है बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब जी बीएससी पास आउट हो, ऑनर्स हो उनका ऑन बॉटनी में प्लस वो बीटेक हो, तो उनको भी बहुत अच्छे स्कोप ऑफर मिलता है. ये मेरा था.
0: हाँ जी यस. तो मतलब स्कोप काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर का, और उसमें जैसे सर ने भी बताया मतलब काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया, मतलब ये तो हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जो आपकी एक तरह से जिसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो मतलब अगर आपके पास में 12th के बाद में जो मेडिकल साइड थी तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं और एक अच्छा करियर आप सकते हैं बना. क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि जो बच्चे हैं वो ऐसी जॉब चाहते हैं, इस तरह की जॉब चाहते हैं कि जहां पर मतलब ठीक ठाक इनकम हो और उन पे ज्यादा प्रेशर ना हो. आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपको एक तो इसमें जॉब का प्रेशर कम है, ठीक है, और सेकंड इनकम भी ठीक ठाक है और आप अपना काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये सारी स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर. तो जैसे आज के इस सेशन में तो आपको पहले पार्ट में तो आपको मैंने एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताया. ठीक है. तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में जमीन है अपना भी काम कर सकते हैं, तो सारी चीजें हैं इसके अंदर. कुछ टाइम यहाँ मैं आज स्पेंड करना चाहूंगा. मेरी आज जैसे आजकल काफी फॉर्म्स निकले हुए हैं आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी निकल रहे हैं, और अभी जैसे जैसे ये आपका COVID-19 का प्रेशर कम होता जाएगा और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी पहले वाली, तो आप देखेंगे कि हर फील्ड में काफी गवर्नमेंट जॉब फिर से आएंगी. ठीक है. मतलब 6 महीने बाद और 6 महीने मान लीजिए, तो उसकी तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट करने वाली बात होती है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि कब फॉर्म निकलेगा, और जब फॉर्म निकलेगा जब मेरा रोल नंबर आ जाएगा तो ही मैं तैयारी की स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं. हमें उसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही स्टार्ट करनी रहती है. जैसा आपको मैंने पहले ही बताया, अभी देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, 4 सेक्शन आपके किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब है आपका, अप टू सी लेवल है, बी ग्रेड है, तो सभी जॉब्स में ये 4 ही सेक्शन आपके आते हैं. ठीक है. तो आज के जो सेशन में कुछ टाइम मैं स्पेंड करूंगा कि कैसे आप इन 4ों में से जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है, कैसे आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपेरेशन करें. ठीक है. जीएस एक ऐसा सेक्शन होता है जनरल स्टडीज का, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में 25% वेटेज है इसका, मतलब 25% वेटेज रहता है. 4 में से 1 क्वेश्चन आपका जीएस का होता है. अगर हम एसएससी की बात करें तो 100 में से 25 क्वेश्चन होते हैं. पुलिस का एग्जाम है, आर्मी का एग्जाम है, वहां पर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होते हैं. जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें पेपर के अंदर आप ये मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे. तो जीएस का एक काफी बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर. अब हमारी समस्या ये है कि ये समझना कि जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वाइड होता है। क्योंकि अगर आप और मैथ्स की बात करिए, रीजनिंग की बात करिए, तो चैप्टर फिक्स है, 10 से 12 चैप्टर आपने पढ़ने रहते हैं, उन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि आप पहले अपनी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, मतलब 6th टू 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, ये आपका पहला काम है, ठीक है। देखिए आप सोच के देखो, जब आप 8th क्लास में थे, उस क्लास में आप तो अगर अपनी छोटी क्लास की किताब उठा के देखें तो आपको बड़ा फील होता है कि बहुत आसान था, और आज की एज में जब आप 12th में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो आज अगर आप 6th-7th की क्लास की बुक उठा के देखेंगे तो यू विल फील कि बहुत आसान सा है वो, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ मार्केट से किताबें खरीद लेते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, लूसेंट की बुक आती है आपकी जीएस की, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा इकट्ठा करके आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत ही कंसाइज वे में होता है। जब आप किसी चीज को बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो ज्यादा याद नहीं हो पाता, तो याद तभी हो सकता है जब आपने उस चीज को एक्सटेंसिवली पढ़ा हो। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अगर आप एक्चुअल में जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जहां स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की। और आप देखेंगे एक बुक आपकी एसएस की आती है, एक आपकी साइंस की बुक आती है, अगर आप 6th-7th-8th में जाके देखें, तो वो एक एक बुक आप लेके उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं काम काम की चीजें, ठीक है। तो उससे आपको क्या लगेगा कि जब भी आपको दोबारा से रिवाइज करना है, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए रिवाइज करना। जीएस के अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको आपका एग्जाम 2 साल बाद है, तो जो आज पढ़ रहे हैं आप, वो 2 ईयर्स के बाद उस टाइम आपको काम नहीं आएगा। जो करंट अफेयर जनरली किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले 1 साल तक का मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर, तो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका टारगेटेड एग्जाम है, उससे कम से कम साल पहले से आप अपना करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर तैयार करने के 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक तो आप न्यूज़पेपर रीड करो डेली, और न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट सा नाम उसमें देखा, कोई प्लेस का नाम आपने देखा जो किसी पॉइंट के लिए फेमस है, या कोई ऐसी घटना हुई, या आप ये कह सकते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, तो आप उस न्यूज़पेपर उस अपने कॉपी के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या रहता है कि वीक के बाद में जब आप दोबारा से उसे रिवाइज करते हैं तो आप उसको पढ़ के एकदम आपको चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, एक रेगुलर मंथली मैगजीन आपको जरूर खरीदनी चाहिए, जो मंथली मैगजीन होती है जिसमें 1 महीने का सारा करंट अफेयर आपको मिल जाता है। उसमें प्रतियोगिता दर्पण है हिंदी मीडियम में, या हिंदी मीडियम में प्रतियोगिता किरण है, और भी काफी आजकल मैगजीन्स मिल जाती हैं। आपकी रीड इंडिया की जो लाइब्रेरीज हैं वहां भी आपको मैगजीन्स मिल जाती हैं।

महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में

0: उनके हौसले परस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया।
1: और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में इन्हें काफी गोलियां लगी थी, खून काफी बह चुका था, इनका जीवित बचना इनके जीवट और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है।
2: Honored with Paramvir Chakra. Kulad Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak Datu.

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टॉप डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: गुड आफ्टरनून मैम।
4: गुड आफ्टरनून।
3: सेशन के लिए सब तैयार हैं?
4: यस मैम।
3: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है, थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन।

0: मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे, सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है, और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है, और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना? जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है, आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
1: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे, 2 मिनट की बस, अब नहीं
0: नहीं,
1: करेंगे
0: वो मेरी
1: बिल्कुल
0: मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जो
1: जी
0: मैं
1: मैम।
0: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ वो फिर हट जाता है दिमाग से, ठीक
1: नहीं मैम
0: है?
1: सॉरी
0: हाँ,
1: जी।
0: तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं, जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं। सो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो डिफरेंटली करते हैं। चीजें सेम होती हैं लाइफ की, सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए, एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली. तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स. वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं. हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है. अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
1: यस मैम,
0: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं. नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी. तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. द क्वेश्चन इज नॉट वॉट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी वॉट यू कैन डू. मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी-कभी डेविएट हो जाता है. तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं. हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उस कि वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं. उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी, हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं. हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं. बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं. और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज. अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती. यहाँ तक सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है. हम जीवन तो जीते हैं पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं. हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज, ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास अपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70% जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए। और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हो। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते। और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात कर। एक वर्ड है आपने सुना होगा, हेल्प। हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, बट हाँ ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीड। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है। जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है, वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा, वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है। ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है, इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत। कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है, और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस, जरूरी नहीं है कि हम 1 महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे। और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है विद प्योर प्योर, मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें, इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 5-6 मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते, मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में, इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर देते। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने सिक्स डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के, और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी, और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपके लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी कि बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज?
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: है? मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है, और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ के एक्सपीरियंस ही होंगे।
2: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
3: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। आपकी मीटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट्स बताए थे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए, और मतलब जो एनवायरनमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
2: जैसे पढ़ाई वाला
3: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो बस करते ही रहे, उस पर यह नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं, ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं, और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी? पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी मैम। हाँ
0: जी,
1: जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको देखो शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाते हैं, सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से होगी, और अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज, एक छोटी सी कोशिश है मैम।
0: वो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो मैं नहीं चला रही हूँ, पर हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी।
4: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
4: रहे हैं।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं हम उनको कभी अचीव,
4: अचीव नहीं कर सकते मैम हम लोग।
0: बल्कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
4: जी
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी।
4: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम, आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है। हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बार ही अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100%।
0: हाँ,
1: थैंक
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सबको,
1: यू मैम।
0: और आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको और मराठी में बताएं, ठीक है।
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ
1: थैंक यू मैम। हेलो मैम।
0: जी, हेलो, नमस्ते,
4: मैम नमस्ते, कैसे
0: मैं
4: हो आप
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
4: मैम? आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्रॉब्लम्स
4: ओके थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी
1: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे।
0: मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम जी
0: वो
1: मैम
0: जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए।
1: जी मैम
0: प्लीज
1: जी
0: बना
1: मैम
0: रहे,
1: जी
0: थैंक
1: मैम जी मैम थैंक यू सो मच मैम।
0: यू।
5: नमस्ते मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाला है इसलिए हम आपका आभारी है, और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गया। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए, लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित हो रहता है।

0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
2: थैंक यू मैम इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है, जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल, गुरु जी ने चाहा तो बहुत जल्दी। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सुमन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
3: नमस्ते मैम, आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
1: ठीक है जरूर सर।
2: गुड
1: गुड
2: आफ्टरनून।
1: आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है,
4: आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
1: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है
4: जी
1: ना?
4: मैम, मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
1: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेगी। ठीक है, नमस्ते
4: थैंक यू मैम।
1: मैम।
3: गुड
1: हाँ जी, क्या हाल है मीना?
4: मैम। ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
1: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो, आप मुझे पक्का विश्वास
4: जी
1: है
4: मैम,
1: ना? हाँ, और गुंजन भी आगे बढ़ेगी बहुत।
4: जी मैम, अभी
1: अरे
4: बैंक निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की। जी,
1: बहुत अच्छी बात, बहुत
4: और
1: अच्छी।
4: मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
1: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते, बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ,
4: जी मैम,
1: तभी इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे, वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।

आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिमा यादव बाराबंकी सेंटर से यहाँ आज दिल्ली ट्रेनिंग अटेंड करने आई हूँ और मुझे आकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की उससे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली और सिर्फ यही नहीं, रीड इंडिया में आने के बाद इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं, शायद पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे वो चीजें सीखने को नहीं मिल पाई। तो थैंक्स टू गीता मैम, थैंक्स टू रीड इंडिया सेंटर फॉर दैट। और मैं बाराबंकी में एज अ लाइब्रेरियन काम करती हूँ और वहाँ पे एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज भी सिखाती हूँ। और यहाँ पर आने का मकसद था कि कैसे रीड इंडिया सेंटर जो पहले से चल रहे हैं उनमें कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको देखना, उनको समझना और अपने साथियों से मिलना जो रीड इंडिया सेंटर में बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बाराबंकी में मोबाइल लाइब्रेरी का भी प्रचार कर रहे हैं और उस पर काम करना शुरू कर दिया है और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सेंटर का। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
2: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
2: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
2: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
1: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज सुनिए हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अमर गाथा।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कृतज्ञता और प्रेम से जन्मा, ऐसा ही संबोधन है भारत माता। वो भूमि जिसकी माटी में हम जन्मे, खेले, बड़े हुए, वो भूमि जिससे उत्पन्न फल फूल अनाज और नदियों के पानी ने अपने आंचल में जीवन की संभावनाओं को बनाए रखा, पीढ़ियों को सदियों से पाला पोसा है, उसे मां कहकर पुकार उठना कितना स्वाभाविक था। विश्व मानचित्र पर भारत एक भौगोलिक इकाई, एक भूखंड की तरह दिखाई देता है, लेकिन हमारे भाव पटल पर हमारी आस्था ने जो चित्र उकेरा वो एक मां का ही चित्र था। इसीलिए सहज रूप से हमने अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहा। अपनी जन्मभूमि को माता सा मान देना हमारी संस्कृति रही है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। रामायण में भी कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इसी भाव भूमि पर खड़े होकर अपनी जन्मभूमि, अपने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत लोग हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत माता की छवि बनी। सन 1873 में सबसे पहले किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक भारत माता खेला गया। इसी प्रवाह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस अमर गीत की रचना की जिसे मंत्र की तरह जपते हुए अनगिनत क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। उस काल में वंदे मातरम से अधिक प्रेरक कोई दूसरा शब्द नहीं था और आज वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। कम ही कविताओं के भाग्य में ऐसी ख्याति और ऐसा यश होता है जैसा वंदे मातरम के हिस्से रहा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्रगीत उस देश के संघर्ष काल में ही जन्मे। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्पेन, इन सबके राष्ट्रगीत विद्रोह के समय की देन हैं। कहीं ये देश के ध्वज के संदर्भ में हैं, तो कहीं इनमें शस्त्र उठाने का आह्वान है। इसी कड़ी में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्रभाव की काव्य अभिव्यक्ति है, जिसे गाते हुए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम के नैसर्गिक बिंब हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं और अपनी जीवनदायिनी मातृभूमि के समक्ष हम नतमस्तक होने लगते हैं। अपनी रचना के इतने बरस बाद भी वंदे मातरम जन मन को उसी तरह से छूता है। यही कारण है कि सन 2002 में बीबीसी के एक सर्वेक्षण में वंदे मातरम को 195 देशों के 7000 गानों के बीच विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत माना गया। वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्र प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में भारत भूमि के गौरव को गाने की उत्कंठा यूं ही नहीं जागी, बल्कि एक पराधीन राष्ट्र की छटपटाहट ने वंदे मातरम के भाव को उनके भीतर जागृत किया। हुआ यूं कि सन 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश ने बंकिम बाबू को भीतर तक आंदोलित कर दिया और मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम वंदे मातरम के रूप में अभिव्यक्त हुआ। माना जाता है कि गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर ही उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। 7 नवंबर सन 1876 रविवार का वो दिन था, कार्तिक मास की 9वीं तिथि, जब बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से इस अमर गीत ने जन्म लिया। इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। उन दिनों बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, कुछ साहित्य कम पड़ गया। पत्रिका के सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर आए तो उनकी निगाह वंदे मातरम गीत पर पड़ी। कागज उठाकर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसी से काम चला लेता हूं। उस समय इस गीत के 2 ही पद रचे गए थे जो संस्कृत में थे। इस कारण रामचंद्र के मन में ये आशंका थी कि ये गीत लोगों की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ सकेगा, लेकिन बंकिम बाबू उस समय इस गीत को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रामचंद्र बंदोपाध्याय से कहा, आज इस गीत का मतलब लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा और सदियों तक ये गीत गाया जाता रहेगा। और आने वाले समय ने देखा कि बंकिम बाबू का कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1773 के सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित उपन्यास आनंद मठ की रचना की और इस उपन्यास में 2 और बांग्ला पदों के साथ वंदे मातरम गीत को शामिल किया। फिर क्या था, वंदे मातरम के 2 शब्दों ने इतिहास रच दिया। इन 2 शब्दों ने भारतवासियों के भीतर देशभक्ति के प्राण फूंक दिए। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करके गाया।

सन 1901 में कोलकाता में ही हुए एक अन्य अधिवेशन में चरणदास सेन ने इसे दोबारा गाया। फिर सन 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने इसे अपना स्वर दिया। 7 अगस्त सन 1905 को बंग भंग का विरोध करने जुटी भीड़ के बीच किसी ने अचानक ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष किया और फिर जैसे चमत्कार घट गया, सहस्रों कंठों ने समवेत स्वर में दोहराया वंदे मातरम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसका प्रयाण गीत मिल गया। बंग भंग आंदोलन में जमीन से लेकर आसमान तक वंदे मातरम का ही जयघोष था। अरविंद घोष ने लिखा है कि सन 1906 में किसी भी अधिवेशन, जुलूस या सार्वजनिक स्थल पर वंदे मातरम को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इन आदेशों की अवज्ञा करते हुए पूरा जुलूस वंदे मातरम का बैच लगाकर इकट्ठा हुआ। 6 अगस्त सन 1906 को अरविंद घोष कलकत्ता आए और वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी दैनिक ही निकालना शुरू कर दिया। भगिनी निवेदिता ने प्रतिबंधों के बावजूद गर्ल्स स्कूलों में वंदे मातरम को दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल किया, तो उधर तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल में गाया। इस तरह देश भर में वंदे मातरम गूंज उठा एक अमर क्रांति गीत बनकर।

वंदे मातरम देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का युद्ध घोष बन गया था। ये देश को राष्ट्र धर्म सिखाने वाला गीत साबित हुआ। सन 1905 में गांधी जी ने लिखा, आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदे मातरम गाते हैं। मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है। अपने देश की मां के रूप में स्तुति अनेक देशों ने की है। मॉरिशस का राष्ट्रगीत है ग्लोरी टू द मदरलैंड। इजिप्ट के राष्ट्रगीतों में तो इजिप्ट ओ मदर ऑफ ऑल लैंड्स कहा गया है, तो उधर अजरबैजान का गीत है ओ माय डियर मदर अजरबैजान। लेकिन वंदे मातरम किसी चमत्कार की तरह भारत की आत्मा में समाहित हो गया। इसकी जड़ें भारत के जनमन में कहीं गहरे बैठ गईं। हम जानते ही हैं कि सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। इस झंडे के मध्य में देवनागरी में अंकित था वंदे मातरम। पूरे स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम गीत भारतीयों की एकीकृत आवाज बन गया था। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्य सेन जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शहीद भगत सिंह जब अपने पिता को पत्र लिखते तो अभिवादन में वंदे मातरम लिखते। सन 1909 में प्रकाशित विजया नामक तमिल पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाला लाजपत राय ने भी लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया था उसका नाम वंदे मातरम ही रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी इस गीत को अंगीकृत किया और सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण किया जाता था। आनंद मठ और वंदे मातरम गीत दोनों ही प्रतिबंधित हुए, लेकिन वंदे मातरम की प्रतिकंपनकारी ऊर्जा को अंग्रेज रोक नहीं सके। वंदे मातरम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का केंद्रीय स्वर बनकर उभरा, जिसकी हुंकार ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला कर रख दी। और जब देश आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ ही हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। वंदे मातरम एक ऐतिहासिक अमर क्रांति गीत, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, वीडी पलुस्कर, दक्षिणा रंजन सेन, दिलीप कुमार राय, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसे लोगों ने काफी, खंबावती, बिलावल, बागेश्वरी और झिंझोटी जैसे रागों में गाया। बड़ी भीड़ भी इस गीत को एक साथ गा सकती है, ये मास्टर कृष्ण राव ने पुणे में 50,000 लोगों से इसे गवाकर सिद्ध कर दिया। आज भी देश में आकाशवाणी की सभा प्रतिदिन वंदे मातरम के अभिवादन और इसके गायन से आरंभ होती है। सुविख्यात कलाकार हों या आम जन, वंदे मातरम को सभी उसी आदर, प्रेम और गौरव के साथ गाते गुनगुनाते हैं। सच तो ये है कि जिन ज्योतिर्कणों से इस गीत का भाषिक रसायन तैयार हुआ है, वो अनंत काल तक हमारी राष्ट्र चेतना को जगाए रखेगा। आइए गर्व के साथ हम भी दोहराएं वंदे मातरम।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ।

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो,

0: इस सहजी, क्या पता बेटी शादी से सहजी, क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।
1: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपरेल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपरेल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और
1: बिल्कुल
0: ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूं घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहां फर्स्ट आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई, घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया। उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँ। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे। मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़कियों से अच्छे से बोल नहीं पाती थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है। और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते, लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे साथ में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने लेने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही हैं, कमा भी रही हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीड से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीड से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अबिदा की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
2: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ, बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे, मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है, तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं, तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी। और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी है कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाएं, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियां बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आए, और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी, और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर, एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है, और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम, और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी
2: थैंक
0: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: यू मैम। मैम ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने को हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक है कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना अर्थ अपने बच्चों का खुद खुद उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर करे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
2: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंगवुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। और उन्होंने टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप किसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग तब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती हैं। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूं। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां
0: वेरी गुड, बहुत
1: कर रही
0: अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूँगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं
1: हैं।
0: बोलूँगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
1: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आविदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे।

0: उनको मैनेज करती है, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया, तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो, या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस ये कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा, और शादियों के गरारे, और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशंस कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता, और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
0: टेक्नोलॉजी
1: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं, और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अभिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीड के जरिए हूँ और मैं रीड के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीड इंडिया जैसे मेरा परिवार है मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीड इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीड इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आएं, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: सुना दोस्तों आपने ये नाटक?
1: हाँ पुरुषोत्तम, नाटक में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब हमारे श्रोताओं को ये तो बताइए कि ग्वारपाठा और किस किस उपयोग में आता है।
0: दोस्तों ये जानकारी के लिए हमने आज आमंत्रित किया है राम अवतार जी को। राम अवतार जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी जानकारी मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वो सब हमारे पुरखों बूढ़े बुजुर्गों का ज्ञान है जो मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों से सीखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गंवार पाठा किसी भी तरह की जमीन में और कम पानी से भी उगाया जा सकता है। दुनिया भर में इसकी 300 से ज्यादा किस्में हैं और लगभग सभी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है।
1: आपने अब तक ग्वारपाठे का उपयोग किन किन बीमारियों में किया है?
2: रूही जी, मैं अब तक ग्वारपाठे के कई प्रयोग कर चुका हूँ। चर्म रोग, पेट के रोग, दमा और गठिया के रोगों में ग्वारपाठा बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। मैंने ग्वारपाठे के गूदे का इस्तेमाल बालों के तेल, शेविंग क्रीम, साबुन आदि में भी किया है। ग्वारपाठे का रस तो पेट के लिए अमृत के समान माना जाता है। चमड़ी के जल जाने पर या कट जाने पर अगर आप ग्वारपाठे का रस लगाएं तो तुरंत जलन मिट जाती है और बहुत जल्दी घाव भी भर जाता है।
1: राम अवतार जी, ग्वारपाठे को चमड़ी पर लगाना तो ठीक है, लेकिन इसे खा कैसे सकते हैं? इसका रस तो बहुत कड़वा होता है।
2: रूही जी, हमारे क्षेत्र में ग्वारपाठे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक बहुत कड़वा होता है लेकिन दूसरे में हल्के कड़वेपन के साथ थोड़ी मिठास होती है। तो मीठे ग्वारपाठे की आप कई सारी खाने की चीजें बना सकते हैं, जैसे इसका हलवा, लड्डू, सब्जी, चटनी और अचार पहले गांव में खूब बनाए जाते थे। इनके अलावा ग्वारपाठे के पापड़, मुठिया, नमकीन सेव, कढ़ी आदि भी बनाए जा सकते हैं।
1: राम अवतार जी, आजकल तो बाजार में भी ग्वारपाठे से बनने वाली बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। हमारे युवा साथी ग्वारपाठे का सीधा उपयोग करने के बजाय बाजारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे युवा दोस्तों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: साथियों, आजकल विदेशी कंपनियां हमारी स्थानीय चीजों और लोक ज्ञान को चुराकर उनसे बेशुमार पैसा कमा रही हैं। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को जानें और समझें ताकि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बाजार पर निर्भर ना होना पड़े।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी, आपने श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी।
0: चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि गांव के लोग ग्वारपाठा के बारे में क्या जानते हैं।
3: मेरा नाम ग्यारसी थे और गांव बावरगढ़ थे, और ये ग्वारपाठो थे ना उका बारा में जानकारी है। तो एक तो जो मुंडा पे फुनसिया सीखो जाओ, मुंडा पे भी चेहरा पे लगा सके छी ने। दूसरा के जिसे ये घुटना दुखबा करे छे तो उमे भी इन्हे खा सके छे ग्वारपाठा ने। और दूसरी बात के ये जानकारी भी है के इको हलवो बना के भी खा सके छे, के इन बारीक करके और इमें घी में थोड़ा थोड़ा घी में सेक और शक्कर डाल के और अलवो बना के खा लेचे तो बाई बादी रहे तो उको दर्द भी इसे हट जाओ। काम में लिया के जिसे ये घुटना में दर्द हो रहा था तो गंवार पाठो और हल्दी मिला के और वे थोड़ी थोड़ी गर्म करके ये घुटना के बांध देते गंवार पाठो तो उसे दर्द कम हो गयो। इसे कहते थे के गंवार पाठो थोड़ी मार सीखी में तो मार भी निकल गई गंवार पाठा से और ये दर्द बंद हो। गंवार पाठा को पहले तो चक्कू से छील के और वो भीतर को वो छे ने वो गुर्दो सोक उन्हें निकाल के और बारीक करके बारीक बारीक काट के और कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सेक ले, सेक और उमे घी डाल दो। घी तो कितनो भी डाल दो, 100 ग्राम के बराबर भी डाल सके, 50 ग्राम भी डाल सके, और शक्कर आधो किलो में अध पाव भी डाल सके। तो अध पाव शक्कर में कहिए के वो ज्यादा नो होगी शक्कर तो शक्कर फिर वो गुआर पाटो काम करेगो। तो इको हलवो भी बन जाओ चे और हलवो बना लिया ना तो इन खा के एक दो बार हलवो बना के खा कर देखो तो अपने बाई बादी चे ने वो अपने शरीर में से निकल जाओगी, अच्छो शरीर हो जाओगे। तो ये बाई बादी में भी काम दे चे ग्वारपाठो।
4: मेरा नाम बेनी बाई है और गांव हमारा पीजनी है।
3: हमारा भाई था, जैसे पहले जंगलों में ज्यादा काम करती थी, तो वो बैल के पीछे पड़ा नहीं वो, तो एक पेड़ की फटकार लगी उसकी आंख में, जी वो आंख लाल पड़ गई। फिर शाम के घर आए, तो घर आके मेरे पापा ने वो गोड़ फटाया उसके लिए चीर के और टुकड़ा कर करके बीच में से अच्छे बढ़िया निकाल के उसमें से और उस पर थोड़ी सी हर्द पटक दी, उसमें थोड़ा थोड़ा घी और मामूली मामूली आंच लगा के और फिर उसकी आंख में बांध दी, तो उसका दर्द भी कम हो गया और वो लाल लाल थी वो भी साफ हो गई, उससे ज्यादा परेशानी नहीं आती। ये हमारे पापा की देखा हमने, हमारा पापा ने किया था मेरे भाई से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ग्यारसी भाई, बेनी भाई। आज हमने यह जाना कि छोटा सा पौधा ग्वारपाटा हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे,
1: तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।

श्रोताओ, बज्जू में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बज्जू और उसके आसपास रहने वाले गांव से बहुत सारे बालक और बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। अपने समुदाय की परेशानियों को रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी इस कार्यशाला में सिखाया गया। तो प्रस्तुत है इन्हीं बालक और बालिकाओं द्वारा बनाया गया ये कार्यक्रम। सबसे पहले प्रस्तुत है बालिका शिविर की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत ये गीत, जिसमें अपने अधिकारों की बात की गई है।

0: और अब सुनिए चित्रंजन और भंवर द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रंजन
2: और भंवर का प्यार भरा नमस्कार।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
2: हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपने ही गांव की कहानियाँ और गीत।
1: हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिससे आपको शिक्षा मिले।
2: हम एक दूसरे की कहानियाँ पढ़कर उससे सीख लेंगे और अपने ही गांव को खुशहाली की ओर ले जाएंगे।
1: चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नाटक से जिसमें शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है।
3: थक गयो यार, आज तो काम करतो करतो खेत में दारू ले रहा हूँ आज जाऊँ। अरे कृष्ण राम
4: सा
3: घरे हो गए?
4: वही हाँ।
3: दारू है गए?
4: हाँ है।
3: देवो ने किस है थर्डी है इंग्लिश?
4: इंग्लिश थर्डी दुनी है।
3: तो ते थर्डी लाओ एकर।
4: लो
3: कितने रुपया है बोलता था?
4: 60 रुपया है।
3: 60 रुपया दे हूँ थाने, काम मत जाऊँ ऐसा भोजन दे हूँ। दारू तो यार तो हखरो ही कोने गए है, हखरो कोने तो कृष्णा राम
4: सा।
3: अरे इंग्लिश दे तो हकरो ही कौन कहा गिरजा पीनो मैं हकरो ही कौन दर नसो ही कौन आते इंग्लिश दे कैडी के बताओ।
4: इंग्लिश महंगो घड़ो है।
3: कितने रुपया है?
4: 280 रुपया बोतल है।
3: अरे रुपया हूँ थान दे हूँ 280 रुपया थे बोतल तो दे आने।
4: पक्की बात दे दो रुपया।
3: हाँ रुपया दे दे
4: लो
3: भावे रुपया इंग्लिश बोतल रुपया कठे रुपया होता थारे खाने कौन आता थारे घेरे आया। इंग्लिश तो बहुत अच्छे है यार दारू इंग्लिश तो बहुत अच्छो है।
5: भिखू ओ भिखू बोलना रुपया दे ही गए।
3: अरे कौन है तू?
5: मैं छोटू।
3: केड़ो छोटू है? हम कौन जानो जाने
5: जाने का कर कोनी रुपया लेवण वाले टाइम तू जान ले हम जाने ही कोनी।
3: ए भगवान यहां से भगवान नगर जाने ने
5: जानो का कर कोनी भी कृष्णा राम जी के नाल दारू लियो।
3: अरे केड़ो किसी ने सर बाप ने बुला ला भी ना जा
5: बुला कर ले हाल जो
3: हूं कौन सर बाप नटे बुला ला भी ना जा
5: ताला
3: कृष्णा
5: राम गने
3: सर बाप गने बे हल बे
5: बे
3: कृष्णिया
4: आशा
3: ए थर बाप कहेंगे बाल बोल दे कहेंगे रिपेयर कर देना मने
4: काले दिया नहीं
3: केड़ा मां गुड़ो बोले
4: 75 रुपया दिया ना रे
3: मन को रिपेयर कर देना ने झूठ बोला तो
5: दिना नहीं
4: या
3: घर रिपेयर
4: 500 रुपया दिया काले दारू कर
3: दे दिना है तने कहे रे
4: काल गो मार छोटू
3: केड़ से जियो
5: एक बियर एक थर्टी दो बोतल ले गया कई भुजिया दुजिया बिस्कुट आगे ले जाओ तार बड़े के दिया को निजन कर दे
3: सर बाप रुपया लग गए मरा बोला मजदूरी मारो कमा लो रुपया
5: बाप रो मजदूरी बात है
4: काल देखो काल आड़ो याद करो।
3: अरे हाँ यार रुपया हाँ दिन है सोची बोई तो हाँ जानू रुपया हाँ देना फिर दे अरे दे फिर कहते थे कृष्ण राम से अरे थोड़ा ही दे अरे मारे सब हो ने खान बात पैसा जन मैं थाने दे रुपया थाने दे दारू वाला और छोटी ने दे
6: ए दारूडे की संग मारी कर दी सगाई रे कर दी सगाई मन जट पर नाई रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे
3: ए सुखा गवे भगे ए सुखा जीत गवे
6: ए सोन्यो बीमार मारो मोन्यो बीमार दापुड़ी निकासी होगी पे मन पुकार इनने कोई तो दरवर दवाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे
3: ए सर बाप ने क्या सोच रहा है मगन कोई लौट को नहीं भावे लौट और दवाई सर बाप ने क्या आवाज ना रे
6: ए दारुड़े की संग मारी कर दिस गाई रे कर दिस गाई मन जट पर नाई रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे
3: ए रेंडे फूटे थरा फूटे थर बाप रा मुँह क्या करूँ मैं तो बेम दारू ऐस कर बोल तो गए करे
6: ए नसबंदी रो क्या सारो गाना समझ जाऊं से नसबंदी रो क्या सारो गाना समझ जाऊं से गाना समझ जाऊं सारो गली गली कैसे इरी बुद्धि ठिकाने लवरे मारे घर में फूट गया पाई रे
3: ए रंडे कर बक बक करे मारी बुद्धि ठिकाना तू धर ठिकाना ला रंडर कहीं गीत गा मन घर में आ गलियां मुबे
6: ए सारो दिन पिए जद मोटी मोटी आगे है मोटी मोटी आगे जद छोरन डरव है कोई पूरी कबड्डी री टीम बनाव रे मारे घर में फूट गया पाई रे
3: कबड्डी कबड्डी कबूज
5: क्या
3: ए भगवान ने कबड़िया माड़ा इतना मरबा था ज्यादा मुझे भगवान हो मैं भीगू हाँ मेरा नाम भीगू है जाना मुझे
5: जानू
3: ए भगवान ने अगर भागे थे
6: दारूडे के संग मार कर दिस गए रे कर दिस गए मन जट पर नाय रे मन बुरो तुम लियो कसाय रे मारे घर में फूट गया पाई रे
3: वे रे सुब्रया ने गगर का बटिन मारो मैं जान रे रहने लगा चल रे दो दे सुब्रया यार घर बगल लग गया बोले मरा अरे यार गाय करो रोंडी लड़े पर की दारू सड़ाने गांव वाला बस लगले अब दारू जोड़ा यार दारू जोड़ो आज बाद में दारू पीऊं को नहीं यार आज हम का ही करूं पैसा ही करने को नहीं यार रांड बड़ोजी ने घेरे गाना कर रहे अब यार रांड ना तो रिपे दे मैं कमा जो दारू भांग दा रांड गाना कर रहे रोजी ने आज बाद में यार दारू छोड़ना और अब का ही करा
2: अभी आपने नाटक सुना भाई मैं तो मान ही गया कि शराब पीने से नुकसान ही नुकसान है फायदो कोई नहीं
1: सही कह रहे हो मोहनलाल जी तो हमारे गांव में रहने वाले लोग भी इस बात को मान गए होंगे
2: अगर आप या आपके आसपास वाले शराब पीते हैं तो आज ही फैसला ले लो कि शराब के हाथ तक नहीं लगाना है देखा भिखाराम को कितना नुकसान उठाना पड़ा और फिर उनके जब अकल आई तो उन्होंने दारू छोड़ दिया
1: अब तो होली भी आने वाली है मोहनलाल जी इस बार होली पर अपन को अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं अच्छे अच्छे गाने गाने हैं शराब को तो इस बार हाथ भी नहीं लगाना है
2: इसी बात पे एक अच्छा सा गाना हो जाए

0: दारू पिए जल्द पड़िया गया मैं ऊपर कुत्ता मुते जी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करे श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार।
3: अभी हम सब ने जो गाना सुना मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा भवनलाल जी।
4: हाँ, इसी गाने पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है,
3: जल्दी सुनाओ भवनलाल जी, श्रोताओं को इंतजार है।
4: राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला तो सोच समझ कर पी।
3: सही कह रहे हो भवनलाल जी, एकदम सही कह रहे हो। आपने पिछले दिनों वो घटना हुई थी उसका सुना था क्या?
4: हाँ, वो जो कोलायत में घटना हुई थी उसके बारे में हमने सुना था। लोगों की नजरें होते हुए भी जानबूझकर अंधे बन रहे हैं।
3: सही कह रहे हो, दारू को किस तरह अमृत बनाकर पिया और फिर किस तरह पछताए।
4: अब हम समय को देखते हुए श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम के लिए इजाजत लेते हैं।
3: अब अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
5: आ खेल तो तगड़ी मिली नहीं रे आज, इनका आठ तो तन सारो घर खर्चो हव निकल जाए। 3 क्विंटल लकड़ी बड़ा निकाली, बीकानेर बेचा।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करे श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार।
5: छोरो रो माथो फूट्यो, काल में पेड़ लगाओ, कौन लगाए पेड़ थे लगा बोगरो पेड़ और हूँ काटी राखू। ओ गियो हमें स्वाम नाम गाड़ो लेर जाने इम चाल चाल पनो टेक गाड़े और बेचा बीकानेर।
1: ओहो मैं आज खेत जाई हूँ, खेत जाए नहीं घना दिन हो गया, जिको मैं आज खेत जा रहा हूँ देखने। ओहो।
6: और श्रोताओं, अब रानू सिंह लेकर आए हैं कार्यक्रम मेहनत करो मंजिल दूर नहीं। इस कार्यक्रम में वो आपको मिलवाएंगे दासोड़ी गांव के बालक जयदेव से। तो आइए जानते हैं जयदेव की कहानी और सुनते हैं कि इस कहानी के द्वारा रानू सिंह हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं।
7: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रानू सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने आपके लिए मेहनत करो मंजिल दूर नहीं कार्यक्रम लेकर आया। अपने इस कार्यक्रम को मैं हर बार लेकर आता हूं। आज हमारे गांव में रहने वाले उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल डाला। इस कार्यक्रम से पता चलेगा कि मेहनत करने वालों को फल भी मीठा मिलता है। जो एक अशिक्षित बालक था वो शिविर के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझा। आइए उसे बात करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं का आपका नाम बताइए।
8: मेरा नाम जयदेव सिंह चारण।
7: आपको पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लगती थी?
8: मुझे इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी कि जब मैं स्कूल जाता था तब मुझे मास्टर मारते डांटते थे, इसलिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था।
7: बाद में पढ़ाई अच्छी क्यों लगी?
8: जब मैं शिविर में आया तब देखा कि शिविर में इतने सारे बालक पढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी पढ़ाई को उचित समझा। मैंने इतने बालक थे कि वो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने भी सोचा कि पढ़ाई से क्या होता है, इसलिए मैंने पढ़ाई को अच्छा मानकर पढ़ने लगा और मुझे मेहनत का फल मिल गया।
7: अपने शिविर के अनुभव हमारे श्रोताओं को बताइए।
8: जब मैं शिविर में आया तो शिविर में कई 80 बालक थे, लगभग 80 बालक थे जो इलमिल कर रहते थे और किसी को गाली गलौज नहीं देना, प्यार से रहना, सभी के साथ खाना खाना, पानी पीना, इसलिए सभी साथ खेलते थे। ये अनुभव हमारे शिविर के।
7: स्कूल व शिविर की पढ़ाई में क्या अंतर है?
8: स्कूल और शिविर की पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। जैसे स्कूल में तो मास्टर आते ही नहीं है टाइम पर, और शिविर में समय समय पर बदलते रहते हैं परेड, जिस परेड का जो परेड होती है हिंदी की, तो हिंदी मैडम आके पढ़ाने लग जाती है।
7: आप आगे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो?
8: मैं पढ़ लिख कर अपने जीवन में देश की रक्षा करना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के पिताजी से। आइए, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम है मांगीदान चरण।
7: जयदेव के बारे में क्या कहना चाहते हो?
9: जयदेव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयदेव को मैं कहता था कि तुम पढ़ो और समय पर स्कूल जाओ, और वो हमें पता नहीं चला कि जयदेव समय पर जाता है या नहीं, और जयदेव तो स्कूल का बहाना बनाकर वो तो दूसरी जगह कहीं पर छुप जाता, और मैं जानता कि जयदेव पढ़ने के लिए जाता है। बाद में एक दिन जयदेव के साथी से मैंने पूछा कि छात्र से पूछा कि जयदेव स्कूल आता है या नहीं। जब उन्होंने बताया कि जयदेव तो स्कूल में आता ही नहीं है, जब मैंने सोचा कि जयदेव तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, और एक दिन मुझे एक उर्मूल कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बजू में शिविर खुल रहा है, उसमें आप इस बच्चे को भेज दो, तो मैंने उसी शिविर के अंदर इसको भेज दिया और वो पढ़ाई करने लगा। और जब उन्होंने उस शिविर के अंदर प्रथम स्थान से पांचवी कक्षा पास की, तो मैंने सोचा कि अब इसकी रुचि लग गई है और अब ये अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के अध्यापक से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
10: मेरा नाम कुमेर दान है।
7: जयदेव पढ़ाई के साथ साथ किस में भाग लेता था?
10: यह कहानियां अच्छी लिखता है और यह खेल कूद में अच्छा है। यह हर फंक्शन में भाग लेता था। 80 लड़कों में से इसने प्रथम स्थान हासिल किया, तो आप भी इसका अंदाज लगा सकते हैं। मुझे ऐसे विद्यार्थी पर गर्व है। लगभग सब बच्चे 8 बजे सो जाते थे, लेकिन यह 10 बजे तक पढ़ता। यह खेल की जगह खेल और पढ़ाई की जगह पढ़ाई करता। ऐसे बच्चों के साथ मेरी मनोकामना है।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बच्चे के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बच्चे का विकास होता है और साथ साथ खेल का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करे जतन। अर्थात शिक्षा एक ऐसा रतन है, हीरा है, जो चाहे गरीब हो बीमार हो, गरीब हो अमीर हो, वो सभी ग्रहण करें। अब श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। अब हम मिलेंगे अगली सप्ताह मेहनत करो मंजिल दूर नई कार्यक्रम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए राम सिंह को इजाजत। नमस्कार।
5: इनका आठ तो तने सारो घर खर्चो हव निकल जाए। 3 क्विंटल लकड़ी बड़ा निकाली बीकानेर बेचा।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार।
1: सूखी धरती करे पुकार, पेड़
6: लगा। श्रोताओ, ये सभी कार्यक्रम जो आपने अभी सुने, उन बालक और बालिकाओं ने बनाए थे जिन्होंने मीडिया कार्यशाला में रेडियो प्रोग्राम बनाने सीखे। आशा है आपको इन बालक और बालिकाओं का ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।

गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. माय नेम इज पूजा राजपूत. मैं आपको बेटी बचाओ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ. कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो. कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे. माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो. माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई वह भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो. लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो. बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो, अब जीवन ज्योत जलाने दो. थैंक यू.

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।
4: पर्यावरण प्रदूषण आज सभी की एक ही पुकार, पर्यावरण में अवश्य करो सुधार। हमारे पर्यावरण को मुख्य रूप से चार तरह के प्रदूषण से खतरा है। भूमि प्रदूषण, बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भूमि बचाओ, नहीं तो बीमारियां पाओ। जल प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा नदियों में मिलकर उसके जल को प्रदूषित कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। जल है तो कल है। वायु प्रदूषण, पेड़ों के काटने से, कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है। मनुष्य को इससे सांस की कई बीमारियां हो रही हैं। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों, वाहनों के शोर, विवाह शादी में ऊंची आवाज में बजते गाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे उच्च रक्तचाप तथा बहरेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। प्रदूषण के कारण ही

उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें। कम से कम अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बाजार जाते समय अपने पास कपड़े या जूट का एक थैला अवश्य रखें। कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। घर में पानी, बिजली, ईंधन आदि की बचत करने का प्रयास करें। घर में सभी एक साथ खाना खाएं ताकि खाना बार बार गर्म ना करना पड़े। आइए आज हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही ना मनाकर हर रोज ही मनाएंगे।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आम तौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बारी बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि वाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस ए टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते, या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए। तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो। आप क्या कर रहे हो, लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है, ठीक है? जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू? ठीक है, तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन, यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी, हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are under water, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए। और जब आप चल रहे हो एंड यू वांट टू विन, यू वांट टू अकॉम्प्लिश, एंड व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स्ड। उसमें गैप क्या था? जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन, यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रैलिश, यू रिलैक्स। अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए। पैसे से हमने खाना खरीद है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है। किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है। पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ। तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप, क्विट कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट. अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन. हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन. वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर गोल. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स. You need discipline to do right things at right time again and again. जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते. उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है. पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक. दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन. वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते. वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ. कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होते है, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए. सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है. बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन. Success is calling. Are you ready? You have to ask this question to yourself. ये तीनों points पे passion, hunger और discipline में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं, किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई suggestion देना चाहते हैं या कोई question पूछना चाहते हैं, हम ऐसा करते हैं 5 मिनट devote करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी. हमें बहुत ज्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए. वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है. लेकिन आपने जैसे बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमें ये चीज नहीं हासिल हुई, तो उसके लिए हम क्या करें फिर?
0: एक तो जो मैंने पॉइंट बोला है ना कि आप लिखो जरूर आप क्या कर रहे हो, दैट इज reference back, reflection on what you have been doing in the past. और जब हम नहीं एनालाइज करते, स्मिता मेरा सेशन अटेंड कर रही है, हम दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं और स्मिता आपको बता सकती है कि कितनी बार मैं ऑफिस में कोई गलती होती है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना. इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, not saying that you correlate with your thing, but this is the practice I do. एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे. और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में, वो कोई इलॉजिकल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं. और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि. तो व्हाट आई एम डूइंग, ए आई एम रियलाइजिंग वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई से दैट वी शुड राइट. सेकेंड पॉइंट, आई एम डिस्कसिंग माई मिस्टेक विद एवरी वन, प्लीज टेल मी वेदर आई वॉज रॉन्ग और नॉट. और क्या मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने साथ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं. नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स बैक. और वो क्या चीज है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, राइट. मैं भी ये गलत करती हूँ, मैं बहुत बार ही सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम. Maybe I'm not able to synchronize all these three things with my brain as well as my mind. और मैंने अभी बोला है brain और mind negative बहुत speed से भागता है, positive की less speed होती है, और इसकी ratio होती है 80:20. 80% तो negative चला जाता है, हमारा mind seconds में negative चला जाता है. पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखें. और ये प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है. तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ, और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये आपके हाथ. Am I able to answer your question?
1: Yes, ma'am. Very right. मतलब बहुत ज़्यादा useful. Thank you.
0: तो ये practice से आएगा अकबर. ये अभी तो 3 हफ्ते हुए हैं आपको ये sessions attend करते हुए, और आपको ये चीजें शायद पहले हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं. तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए हैं. ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ, राइट.
1: यस
0: मैम. और किसी का कोई क्वेश्चन? और जो मैंने अभी बताया है, आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हर एक लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए. तो ये मेरी कोशिश होती है, तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में. अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है. जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी भी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे, और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे. तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है. मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बींग अ मदर आई कैन वेरी वेल को रिलेट माई सेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बींग अ फादर ऑल्सो इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो वेरी वेल को रिलेट विद दिस स्टोरी. तो एक जो बेबी जिराफ होता है गाँव में, सीमा कैन वेरी वेल को रिलेट क्योंकि वो एक फॉरेस्ट के साथ रहती है. तो हम एक बेबी जिराफ की मदर से ये स्टोरी सुनते हैं. और जब बेबी जिराफ पैदा होता है ना, तो जिराफ तो बहुत ऊंचा होता है, तो जब बेबी वूम्ब से निकलता है तो वो पटैक करके जमीन पे गिरता है. चोट तो उसको तब लगती है जब वो पटैक करके जमीन पे गिरता है. उसकी मदर उसको प्यार करती है, उसके फोरहेड पे अपनी गर्दन नीचे करके किस करती है, पर इमीडिएटली वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और वो उसको जोर से नीचे उठा के ऊपर हवा में फेंकती है, न्यूबॉर्न बेबी को. और वो फिर पटाख से गिरता है। और वो कांपता हुआ जब जमीन पे गिरता है, उसकी मदर को अंदर बहुत पीड़ा होती है, पर वो उसको बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, जब तक उसके हाथ और टांगे उसके वो जो गोल बॉडी जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोज कि जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइंब कर ली, अपने बच्चे को पैक करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। सीइंग द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अनदर किक इज गिवन टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग। फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के, यू कैन इमेजिन द जिराफ हाइट, वो इतना ऊपर हवा में फेंक के वो फिर न्यू बॉर्न बेबी को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ, तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सैक्रिफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है, और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए, आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाएं, ठीक है। और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लेपर्ड को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश, एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग आपको पता है फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं, और ये जिराफ जो है मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट। सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट, आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आवर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है, हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज तो वो उसी को ग्रहण करता है। तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है, अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो ककून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती है, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहो तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी को रिलेट करती है इन सब बातों से। आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट। वी लिव सच प्रोटेक्टेड cocooned low risk lives in our early years that we are not quite prepared for the big bad world then we enter it. आप समझ के, हमने एज रखी हुई है लड़कियों के 20 से 45 साल तक। अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडिली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं, और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए। यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर। उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट? आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए। सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, the day you started working with this woman and you transformed their lives. So we need to convert our habits to our strong culture and values. Akbar, this sentence is for you. This is the answer for your question. Hamara jo 80% mind negative chala jata hai, usko hum positive kaise kare, usko values ke sath kaise convert kare, aur within our culture how we can focus on values, keeping in view the passion, hunger and discipline. Is it okay? Aage badhe. Ye meri last slide hai. Lessons learned from the story correlated with leaders. Study the lives of successful people. अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही विद इन वन आवर ऑफ हिज और हर बर्थ उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है। और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं। अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था। बहुत सारे स्टालवर्ड्स, जेआरडी टाटा, एसपी गॉडरेज, सिंघानिया, ये वो सब बहुत लीडर्स, मेन भी वुमेन भी, वी वर जस्ट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत हमें प्यार करते थे, नर्चर करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 30s. शादी में मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी, उषा इंटरनेशनल, नहीं PFI में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट इयर्स नाउ। बट मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी पर हम इकट्ठे करते थे, पर जब मैंने वनवर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था। एंड माई फर्स्ट ट्रैवल वॉज टू नेपाल। फाइन, नेपाल में कंट्री ऑफिस था, बट श्रीलंका हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी पर कोई ऑफिस नहीं था। अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी। फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुँचती है और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव करी, यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माय माइंड। आई वॉज सो स्केर्ड पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में, मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी, ठीक है भाई अब पोजीशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है, ट्रैवल कर रहा। और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। एंड दे बुक मी इन अ हाउस ऑफ ए तमिलियन फैमिली वेयर वन लेडी वॉज स्टेइंग अलोन, दैट लेडी वॉज ओल्ड ओल्ड लेडी। ओके फाइन, आई रीच देयर बाय 3:34 अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग। खोला दरवाजा, सामने इतना बड़ा शेर बब्बर जैसे डॉग, और मैं तो डॉग से इतना डरती हूँ कि ओ गॉड, मैं तो पूरी रात अपनी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है। तो दीज वर एडवर्सिटीज फॉर मी, आई एम शेयरिंग द लाइव एग्जाम्पल विद यू। वो औरत, मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा। देन आई कॉल्ड माई डायरेक्टर देयर कि सी आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, आई एम स्केर्ड ऑफ द डॉग, सो प्लीज कॉल द ओनर ऑफ द हाउस एंड टेल हर टू कीप द डॉग इन द बैक यार्ड सो दैट आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव दिस प्लेस। दैट्स हाउ आई सॉल्व माई एडवर्सिटीज। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ये तो एक एग्जाम्पल, मैंने बहुत लाइट एग्जाम्पल दिया है। टू रीच टू दिस लेवल टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन राइट बुक्स एंड बुक्स ऑन द एडवर्सिटीज आई फेस्ड, मैनी एडवर्सिटीज, मैनी मैनी एडवर्सिटीज इंक्लूडिंग सम पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो इट्स नॉट, द जर्नी इज नॉट ईजी। So, were they always successful in all they did? No, big no, capitals. हमेशा तुम गलतियां करके ही सीखते हो। Did success come to them quick and easy? No, not at all. आज मैं क्यों मैनेज कर पा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, कि मेरे पीछे कोई थ्योरी की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कम्बिनेशन विद कम्बिनेशन ऑफ माई एकेडेमिक नॉलेज, तभी मैं कर पा रही हूँ। तो एक्सपीरियंस, सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें कभी भी हारना नहीं है। सो देर इज अनदर फेदर इन योर कैप दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एनजीओस, फ्यू ऑफ द सेंटर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड बियॉन्ड 5 years एंड रेस्ट ऑफ द सेंटर्स वी विल डिस्कस वन टू वन। तो यू आर गोइंग टू फेस मैनी मैनी चैलेंजेस, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 10 years, यू विल बी द लीडर्स। मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा, पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, आधा आप सीख रहे हो और आपके लिए जर्नी तो बहुत ईजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? वॉट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल। ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स, द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन, देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल, ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो, बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल। किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले। वो सिचुएशन ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ। लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्पेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए। अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है। दैट इज द क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इंटरनलाइज्ड। और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ। अपनी अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो। बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट, मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में, पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन हैं कुछ हद तक, मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बट यस मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को, और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से। आई एम लुकिंग एट द वॉच और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ, और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा।

निडरता और साहस की शौर्य गाथा परमवीर चक्र, नायक जदुनाथ सिंह। एक गोली सिर में लगी, दूसरी सीने में, पर वो लड़ते रहे और देश के लिए जीत ली वो जंग। ऐसे थे परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के समय इन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लड़ते लड़ते इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, पर हौसले बुलंद थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जदुनाथ सिंह ने अकेले ही स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित तो की, पर अपनी शहादत देकर। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।

0: वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी, इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है। मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू।
1: नमस्कार श्रोताओं, चेतना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी शांति तिवारी।
2: और मैं हूं जगबंधु। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके लिए सामाजिक विषयों पर एक नाटक सुनवाएंगे।
1: हमारा आज का नाटक सच्ची घटना पर आधारित है। इस नाटक का विषय है नारी का संघर्ष।
2: आज हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को वो अधिकार नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। आए दिन एक से एक घटनाएं सुनने को मिलती है, कहीं दहेज के कारण लड़कियों की हत्या तो कहीं कम उम्र में शादी कर उनको प्रताड़ित किया जाता है जिससे वो अपना बौद्धिक विकास और मौलिक अधिकार सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती। आज भी लड़कियों की उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी जाती है। ऐसी ही एक घटना भलसवा जे कॉलोनी में एक लड़की के साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है ये नाटक।
3: सीमा की माँ, अरे सीमा की माँ,
4: क्या है, क्यों शोर मचा रखा है?
3: अरे आज मुझे मेरा दोस्त मिला, उसने हमारी सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है।
4: अच्छा?
3: हाँ, लड़का मुंबई का ही रहने वाला है। मुंबई जैसे बड़े शहर में उनका अपना मकान है और तो और लड़का 2 साल दुबई में भी रह गया है। अब मुंबई में खराता काम करता है, अच्छा परिवार है, 2 भाई और 1 बहन है। लड़के के माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और तो और उन्होंने हमारी सीमा का हाथ स्वयं मांगा है। अरे हमारी सीमा राज करेगी राज।
4: अजी, परिवार का तो सब कुछ ठीक है परंतु हमारी सीमा की उम्र भी तो कम है, अभी पढ़ रही है, 10वीं की परीक्षा ही तो पास की है, आगे और भी पढ़ना चाहती है। इतनी जल्दी करके उसका भविष्य खराब करना है क्या?
3: अरे भाग्यवान, उसका भविष्य खराब नहीं, सुधर जाएगा। लोग शादी के बाद भी तो पढ़ते हैं, अगर ना भी पढ़ी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और बाद में घर का काम ही तो करना है।
1: इस तरह सीमा के माता पिता अच्छे लड़के के चाह में जगह जगह से पैसा उधार लेकर उसकी शादी की ताकि बिरादरी में उनकी नाक न कटे और इज्जत बनी रहे। श्रोताओं, सीमा के गरीब माता पिता ने शादी कर उन्हें सीमा को ससुराल विदा कर दिया।
2: सीमा के ससुराल का परिवार तो बहुत सही था लेकिन लड़के की आदत के बारे में किसी को पता नहीं था। शादी के कुछ दिनों के बाद पता चला लड़का रोज घर पर शराब पीकर आता और सीमा को परेशान करता।
3: अरे सीमा, ए सीमा, कहाँ हो सीमा?
5: तुम फिर पी के आ गए हो, तुम बिल्कुल मेरी सुनते नहीं हो, कब सुधरोगे तुम, रोज रोज पीते हो।
3: अरे अपनी कमाई की पीता हूँ, तेरे बाप से मांगने नहीं जाता हूँ, और हाँ पीऊंगा, रोज पीऊंगा, ऐसे ही पीऊंगा, रहना तो रह नहीं तो अपने घर जा।
5: एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे तुम्हारा घर छोड़ के जाना ही होगा।
1: आए दिन झगड़े, संजीव शराब पीकर आने लगा। इसी दरमियान सीमा 2 वर्ष में 2 बच्चों की माँ बन चुकी।
2: सीमा के लाख समझाने पर भी संजीव की आदत में सुधार नहीं आया। शराब की बुरी लत के कारण संजीव की नौकरी भी छूट गई।
5: देख लिया शराब पीने का नतीजा क्या निकला, गई ना आज नौकरी हाथ से, अब बैठे रहिए। मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है नौकरी करने के लिए, या तो घर घर के बर्तन मांजूंगी, कैसे होगा बच्चों का पालन पोषण, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे हम, सारी जिंदगी के तुम्हारी मम्मी पापा ने ठेका लेकर रखा हुआ है हमें पालने का, कहाँ से खर्च करेंगे वो लोग।
3: अरे तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। अरे मैं दूसरा काम ढूंढ तो रहा हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दे और घर में रह, मैं काम ढूंढ लूंगा और तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
5: झूठ है, तुम्हारी हर बात झूठ है, तुम्हारी रोज रोज की झूठी बातों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, अब सारी व्यवस्था तुम ही करो। आज ही मम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों को अलग कर दूंगी, अपना बनाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, जैसे मर्जी करो।
3: अरे तू नहीं जानती मेरे माँ बाप को, एक दिन खर्चा बंद करेंगे, दो दिन बंद करेंगे, तीसरे दिन खुद ही खर्चा हमें देंगे। मैं चिंता कर तो रहा हूँ, देख रहे चिंता चक्कर में मैं दिन रात पीने लगा हूँ। और सुन, मैंने अपने दोस्त से बात की है, रात में ऑटो चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। और सुन, मैं तेरे को पैसे दूंगा और अपने बच्चों को पूरा खर्चा दूंगा।
5: कैसे खर्चा दोगी, देखती हूँ मैं भी कैसे खर्चा देते हो तुम, कहाँ से होगा हमारा गुजारा। तुम्हारी झूठी बातों से तो मैं बिल्कुल ही तंग आ चुकी हूँ। इतनी रात को घर को आ रहे हो, वो भी शराब पीकर। पहले की बात थी कि तुम भारी पीकर आते थे, अब तो तुम घर में भी साथ में लेके आने लगे हो। तुम्हारी आंखों की शर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है।
3: चुप, ये एक बात कान खोल के सुन ले, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, रहना तो रह, नहीं तो जा अपने घर। और मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जाए पगबक्की तो तेरे कान के नीचे।
5: ऐसे कैसे कान में दूंगा, मैं भी मम्मी को बोलती हूँ, हमेशा मेरे पे हाथ भी उठाने लग गए हो आजकल।
3: अच्छा,
5: तू
3: मम्मी को बुलाएगी?
5: मम्मी मम्मी
3: मम्मी को बुलाएगी? ये ले ये ले ये ले। ओ, ओ,
5: क्या हुआ, क्या हुआ संजीव, क्या हुआ,
3: सीमा,
5: क्या हुआ संजीव, सीमा, पेट में
3: सीमा,
5: मेरे कितनी बार कहा है, चलो
3: मेरे पेट में दर्द हो रहा सीमा,
5: सुबह मैंने कितनी बार कहा है संजीव कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे पेट में आजकल दर्द रहता है, तुमने रोटी खाना भी छोड़ दिया। संजीव कैसे होगा, अभी मम्मी को बुलाती हूँ।
1: इस प्रकार सीमा के लाख समझाने के बाद भी संजीव पीना नहीं छोड़ा। अब तो रात दिन शुरू हो गया, दिन व दिन शराब पीने लगा, शरीर की ताकत खत्म होने लगी, नई नई बीमारियों ने उसे घेर लिया। लगातार पीने के कारण अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया और लगातार कमजोर होता गया।
2: संजीव को बाहर वाले, घर वाले सभी समझाते गए, पर किसी की वो नहीं सुना। इस प्रकार उसके फेफड़े खराब हो गए और उसे टीबी हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। सीमा ने अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया।
1: सीमा अपने पति के साथ एक महीने हॉस्पिटल में थी, वह अपने गहने तक बेच दिए पति के इलाज में। श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि टीबी का इलाज की बीमारी ठीक हो जाती है, वो तो ठीक है, संजीव सही ढंग से दवा लेता तो, वो तो दवा के साथ साथ शराब भी पीता रहा।
2: धीरे धीरे टीबी के कीटाणु उसके दिमाग में चले जाने से वह कोमा में चला जाता है, अंत में उसकी मौत हो जाती है। सीमा की शादी 6 वर्ष बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, उसकी कहानी तो खत्म हो जाती है। सीमा को 2 बच्चों के साथ रोता बिलखता जमाने की उठती सवालों से जूझने के लिए छोड़ गया। श्रोताओं, सीमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।
1: तो दोस्तों आइए सुनाती हूँ अब सीमा के साथ क्या हुआ।
2: सीमा पढ़ी लिखी महिला थी, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। एक दिन सीमा अपने सास ससुर से काम करने की इच्छा जाहिर की, मैं नौकरी करूंगी, जो उसके सास ससुर को पसंद नहीं था। अब सीमा के घर छोटी छोटी बातों का क्लेश होता रहता था,
1: जिससे सीमा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सीमा तो वही रहकर जीवन बिताना चाहती थी, वह अपने दोनों बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन उसकी सास ने उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था, क्योंकि सीमा 23 वर्ष की यंग महिला थी। उन्होंने जमाने को देखते हुए ये फैसला किया कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। वह दोनों बच्चों को अपने पास रख लिए, सीमा को अपने घर जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने दोनों बच्चों से जब इच्छा मिल सकती है। इस प्रकार सीमा अपने घर अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली आ गई।
2: श्रोताओं, सीमा अब आपके बीच है, अब उसी से जानिए उनकी जुबानी कि उसके साथ क्या होता है, वो कैसे आगे जीवन यापन करती है और अपनी जिंदगी सुधारती है।
1: सीमा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सीमा जी, आप तो काफी कठिन दौर से गुजरी हैं और आपने काफी स्ट्रगल किया है
5: जी,
1: तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सीमा जी, आप जब मुंबई से अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली लेकर आ गई, तो क्या आपके ससुराल वालों ने आसानी से आने दिया?
5: जी नहीं शांति जी, आसानी से तो नहीं आने दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने बहुत मना किया था मुझे यहाँ आने के लिए कि 2 रोटी ही तो खानी है, अपना घर संभालो, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं समझा ये ऐसे करना। मैंने अपने पिता को बुला लिया था दिल्ली से।
1: अच्छा।
5: कि मैं ऐसे सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती हूँ, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। ऐसे सारी जिंदगी घर के बर्तन झाड़ू पोछे करके तो मैं नहीं गुजार सकती। तो मेरे पिता आए थे मुझे लेने।
6: तो बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है?
5: जी, वहाँ से तो मैं बच्चे ले आई थी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे स्कूल में भी उनको दाखिला करवा दिया था, एक साल उन्होंने यहाँ पढ़ा भी। फिर अचानक में वहाँ से फोन आता है कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया था। बच्चों के बिना दोनों सास ससुर का मन ही नहीं लग रहा था, घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था उन लोगों को। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा मेरे पास, यानी मेरे देवर को। वो आए थे मेरे बच्चे लेके जाने के लिए, जब बच्चों को छुट्टियां पड़ी थी तो वो अपने सात बच्चे ले गए और वहीं पे उन्होंने अच्छे स्कूल में उनको दाखिला दिलवा दिया। अब बच्चे वहीं रह के उन्हीं उस अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं जाती हूँ 6 महीने और साल में 2 बार जाती हूँ उनके पास उनको मिलने के लिए। वो बहुत अच्छी तरह उनका केयर कर रहे हैं, बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हैं वो लोग।
6: सीमा जी, आगे आपने क्या अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्या आप दूसरी शादी करेंगी?
5: जी, दूसरी शादी के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है और मैं चाहती हूँ मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि पहली शादी में जो मैंने कुछ नहीं पाया तो मैं दूसरी शादी करने के भी हक में नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर वाले मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो चाहते हैं भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी चाहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम शादी कर लो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारी जिंदगी अकेले जीना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं दूसरी शादी करने के हक में तो नहीं हूँ बिल्कुल। अब देखेंगे, फिलहाल तो मैं नौकरी कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कमा के अच्छी तरह खा रही हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुनिया है, देखिए माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कर लो, पर मैंने सोचा नहीं है इस बारे में।
6: सुना दोस्तों आपने सीमा की बातें। श्रोताओं, अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्ते।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी सवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: 1857 का विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, लेकिन वीरभूमि बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल सन 1842 के बुंदेला विद्रोह में ही बज उठा था। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का पहला संघर्षपूर्ण प्रयत्न था, जिसके अग्रणी नेता थे हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी। अपने लोगों पर उनका गहरा प्रभाव था, यही कारण है कि उनके आह्वान पर अनेक लोधी राजा, जागीरदार, मालगुजार, तालुकेदार और किसान अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नायक थे हृदय शाह और सागर जिले के मधुकर शाह। दरअसल ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते अत्याचार के कारण लोगों के भीतर अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक आक्रोश उन दिनों व्याप्त था। लोधी राजाओं के भीतर भी इसीलिए विद्रोही भावना बलवती हुई और वे जनता को जागृत करने में जुट गए। बुढ़वा मंगल मेले की तर्ज पर महोबा के सूपा गांव में मेले का आयोजन किया गया, जहां चरखारी राज्य के पूर्व राजा मंडन शाह और विकट राय के वंशज लोधी जागीरदार निवास करते थे। इन्हीं लोधी जागीरदारों ने इस मेले की सारी व्यवस्था की। इस मेले के बहाने बुंदेलखंड के अनेक राजाओं और जागीरदारों से संपर्क कर अंग्रेजी राज के विरुद्ध योजनाएं बनाई गईं। मेले में जैतपुर महोबा के बुंदेला राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर भगत सिंह, सागर जिले के मधुकर शाह बुंदेला जैसे कई जागीरदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। विद्रोह को सफल बनाने तथा प्रजा का राज्य स्थापित करने का संदेश सावधानी पूर्वक सभी जगह पहुंचाया जाने लगा। बुंदेलखंड के दक्षिण में सागर नर्मदा क्षेत्र में क्रांति की आग सुलगाने का काम कर रहे थे राजा हृदय शाह और जागीरदार मधुकर शाह। इस अभियान में नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह भी अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और लोगों को लेकर विद्रोही बन गए। इस तरह बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में विद्रोह की ज्वाला जल उठी।

राजा हृदय शाह के नेतृत्व में कंपनी सरकार के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया गया। पहले आक्रमण में एक चौकी पर अधिकार कर अंग्रेजों को मार भगाया गया। इस आक्रमण से अंग्रेज तिलमिला उठे। पूरी तैयारी के साथ कैप्टन ब्राउन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हीरापुर पर चढ़ाई कर दी। भारी सेना को देखकर नगर खाली कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने हीरापुर को लूटकर तहस नहस कर दिया। राजा हृदय शाह अपनी सेना के साथ हीरापुर से तेजगढ़ आ गए। दरअसल तेजगढ़ में पहले राजा हृदय शाह के पूर्वजों का ही राज था और अब उनके वंश के एक लोधी जागीरदार की जागीरदारी यहाँ थी, इसलिए हृदय शाह को यहाँ से सहायता का विश्वास था। और हुआ भी ऐसा ही। तेजगढ़ में हृदय शाह और उनकी सेना का स्वागत हुआ और भरपूर सहयोग किया गया। राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर घेरा डाल दिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। हृदय शाह ने दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर के बहुत से हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अब उनकी सेना आगे बढ़ी और उसने सागर के मुख्यालय को घेर लिया और अंग्रेजों को परास्त कर सागर को मुक्त करा लिया। जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था, वहां उनकी भारी सेना जमा थी, इसलिए राजा हृदय शाह उससे बचते हुए अपनी सेना को एक तरफ से निकालकर आगे बढ़ गए। उनकी सेना ने नर्मदा नदी को पार किया। स्थानीय किसानों ने हृदय शाह की सेना का साथ दिया। इस तरह राजा हृदय शाह की सेना ने कंपनी सरकार के अधिकारियों को परास्त किया और नगर गांव अंग्रेजों से खाली करवाते चले गए। राजा हृदय शाह अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। उन्हें पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। राजा हृदय शाह ने परिस्थितियों को देखा और भूमिगत हो गए। और अब भूमिगत होकर वो छापामार युद्ध का संचालन करने लगे। एक वर्ष तक वो इसी तरह अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वे लगातार छापामार युद्ध शैली से आक्रमण करते। उन्हें जन समर्थन इतना था कि अंग्रेजों की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें मिल जाया करती थी, किंतु उनकी कोई भी जानकारी कंपनी सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़े बड़े मालगुजार उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते, साथ ही खतरों से सचेत भी कर देते। इस तरह स्वराज हेतु एक सघन संघर्ष जारी रहा।

राजा हृदय शाह की सक्रियता से गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष दोनों ही घबरा उठे। बुंदेलखंड क्षेत्र अंग्रेज सैनिकों के लिए कुछ अपरिचित भी था। अंग्रेजों ने मदन सिंह नामक एक व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन हेतु नियत किया, लेकिन वो स्वयं देशभक्तों के साथ था। उसने अंग्रेजी सेना को जंगल में भटकाकर विद्रोहियों को इसकी सूचना दे दी। इस तरह अंग्रेजी सेना परास्त हुई। अब थक हार कर अंग्रेजों ने दमन और शक्ति के स्थान पर आत्मसमर्पण और क्षमादान की प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया। लॉर्ड एलनबरो की ओर से घोषणा की गई कि जो विद्रोही अपराधी प्रवृत्ति का त्याग कर सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, कंपनी सरकार उन्हें क्षमादान देगी। इसके साथ ही दबाव बढ़ाने के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, झांसी, कानपुर तथा इटावा से फौजें मंगवाई गईं। कुछ स्थानीय जागीरदारों से भी सहायता ली गई, साथ ही भारी इनाम की घोषणा कर फूट डालने का प्रयास भी किया गया। इस तरह विद्रोहियों का उत्साह गिरने लगा। पुरस्कार के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन गया। 21 नवंबर 1842 को राजा हृदय शाह को इनाम के लालच में पकड़वा दिया गया। उन्हें चुनार दुर्ग में कैद कर बहुत यातनाएं दी गईं। उनकी गिरफ्तारी से इस पूरी मुहिम को बहुत क्षति पहुंची। उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। राजा हृदय शाह, राजा परीक्षित तथा मधुकर शाह इस विद्रोह के स्तंभ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वो आग जो राजा हृदय शाह ने प्रज्वलित की थी, भीतर ही भीतर वो सुलगती रही और सन 1857 में भयंकर विस्फोट के रूप में फूट पड़ी। राजा हृदय शाह की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह की इतनी भीषण स्थितियां पैदा हुई कि कंपनी सरकार के लिए इसे दबा पाना संभव नहीं था। इसलिए सन 1843 में उन्हें इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि भविष्य में वे विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी राजा हृदय शाह भला किस शर्त में बन सकते थे? अवसर मिलते ही 1857-58 के स्वातंत्र्य समर में उनका पूरा परिवार समस्त सैन्य बल के साथ पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डट गया। उनके एक भाई सावंत सिंह ने 1857 के समर में अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरे भाई गजराज सिंह भी गिरफ्तार हुए तथा फांसी पर लटका दिए गए। हृदय शाह के पुत्र मेहरबान सिंह ने भी 1857 के समर में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस तरह उनके पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। 28 अप्रैल सन 1858 को राजा हृदय शाह ने अंतिम सांस ली। नमन भारत के ऐसे महान वीर सपूत को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: Dani Caribbean alone, catching honey paddy deal. Little sing sound not toy, ding dong dong.
1: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती कोकिला लेख दीपी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और कोकिला लेख दीपी। घुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी कोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक कोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबीन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज कोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
2: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
1: श्रीमती कोकिला लेख दीपी पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
3: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकॉग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो वक्त अपनी कम्युनिटी को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है जो हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ रितु हमारे साथ हजर से जुड़ी है। वेलकम रितु।
4: मैम मैं सोनीपत से हूँ, मैंने बीए बीएड किया हुआ है और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में, मेरी शादी हुई उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया, यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
3: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन रितु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी, वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो ऋतु आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
4: मैम जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहां पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए, उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है, वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
3: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी कैसे फोकस।
4: मैम यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं, और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग होती है, जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउस वाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है, इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है। तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
3: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते, तो जो हमारा ये कार्यक्रम है ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीड के सेंटर्स हैं वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके।
4: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे, तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है। सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं। उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है। तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता। हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
3: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग ऋतु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
4: मैम CSC और CSV सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से। जैसे मैम ट्रैवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रैवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है। और ऑनलाइन CSC CSP उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं, तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है, फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं, और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं।
3: थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम वेलकम टू द शो।
5: थैंक यू स्मिता। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कठिन ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गाँव में मैं अपनी हवेली लेता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाए। और 2012 में मैंने कनाडा का सेंटर लॉन्च किया था और 2014 में शायद हमने स्टार्ट करना शुरू किया था. So it took me 2 years to finalize the proposal because it was not that very easy to start the youth center. So many formalities and so many documentation are to be done. So what I would like to say here that this partnership and this association has given so much to Youth India from Mr. Kalar. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us, wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues, with a matured guidance and help is highly appreciated. और ये जो झज्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हवेली को. तो 2 साल पहले टांडा गिरी एक ग्राम है जो मैनीपुर के साथ है और वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली होने दी और बोला कि यहाँ पे भी आप ईद का सेंटर बना सकते हैं और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सरला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग इंजन भी चलाती है और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली की ओनर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ी है वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम कर रही है. द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वुमेन कम फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे, दे आर द रोल मॉडल्स, दे आर द मेंटर्स. आई शुड नॉट से दैट आई एम द मेंटर, आई जस्ट प्ले द रोल, बट दीज वुमेन लाइक and many other Kavitaji, many other have taken the position of mentors now, mentoring the rural women who are residing with them in the villages. Or center mein wo khali bhula seekhte nahi aati hai, but center mein wo apne mind ko strong karne aati hai, apne parivar ke liye wo kya kar sakti hai wo seekhne aati hai aur ek cohesiveness banti hai gaon mein ki yes ye हमारा सेंटर है. और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, तो मैं ये कहूँगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंदिर, हमारा चर्च, हमारी कामना खेड़ी. सो वो सिचुएशन आ गई है अब और सच में मैं बोल रही हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हाईली हाईली अप्रिशिएट मिस्टर दलाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन and the team who has really contributed so well and nurtured the center like their own house. So ye bahut badi achievement hai hamare jo I should say hamara jo network hai, hamare jo colleagues hain jo center mein kaam karte hain aur jo transformation mein Ritu aur Kavita mein dekh rahi hu pichle 6-7 saal se, wo transformation मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है गाँव लेवल पे. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ऋतु जी मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने हजारों में औरतों को फील किया है, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गाँव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग दिए, बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियाँ भी आती हैं वहाँ पे. सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके सेंटर में कौन सा चला है और मैक्सिमम औरतों और बच्चों ने उसको एंजॉय किया?
4: मैम सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है. क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है, जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये न्यू फैशन चला हुआ है, हमें ये बताइए। तो मैम हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग, यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं, वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं। प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियाँ जब लेडीज सिलती हैं, तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा, कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है, सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं। तो मैम वो भी आपको बार बार थैंक करती।
6: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के रितु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी ओनली, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग, आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है वो थोड़ा हमें बताइए।
4: मैम जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें। क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि, और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें। क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है, हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाय विलेज में गए हैं वहाँ पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ हर किसी चीज़ से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है, तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं बेनिफिशरी हैं उनको भी प्रॉफिट हो, और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
6: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु। और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूंगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
7: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो। और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रंजीव दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है। जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है। तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
6: थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज रितु, एंड थैंक यू सो मच। स्मिता, यू वुड लाइक टू कंक्लूड द प्रोग्राम?
3: So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, you know, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम recognize नहीं कर पाते। बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके, निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता, इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।

0: हेलो एवरीवन, दिस इज शरीन फ्रॉम लखनऊ लाइब्रेरी एंड मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि दो शब्दों को मिला के बनने वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा शब्द है पुस्तकालय. द लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. इस लाइब्रेरी ने बहुत लोगों की दुनिया को चेंज किया. एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट. और मैं दो लाइन्स में अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि ये बुक्स जो है ना, वो कभी हमें धोखा नहीं देती है, राइट. दूसरी थिंग ये है कि ये जो बुक्स हैं, वो कभी कभी हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें ये हंसा रही हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जुड़े हुए इतने इमोशंस होते हैं जो उन स्टोरीज में निकल के आते हैं. कभी कभी ये बुक्स हमें रुला भी देती हैं, राइट. लेकिन कभी हमें इन बुक्स से, लाइब्रेरी से कभी धोखा नहीं मिला. और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही हूं जहां पे हमारा सेंटर है, वहां पे लाइब्रेरी की मतलब नहीं पता थी. मैंने कल भी बात बोली तो एक छोटा सा आइडिया मैंने लिया कि जब हम औरतों को जो कि 60 अबव हैं, 60 से भी ऊपर 70 इयर्स की हैं, उन्हें मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी आइए, लाइब्रेरी आइए, तो वो ये बोलती थी कि मैं क्या करूंगी आके लाइब्रेरी. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो बूढ़ी औरतें लाइब्रेरी आई जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये आइडिया अपनाया कि मैं उनको बैठाती थी अपने सेंटर में और बैठा के स्टोरीज को चूज करती थी. जस्ट लाइक कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं कि जहां पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक झांसी की रानी, मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी. टीपू सुल्तान, मैं उनकी स्टोरी सुनाने लगती थी. तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी काफी इंटरेस्ट लेके वो सुनती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती थी. इससे रिजल्ट क्या मिला कि उन लेडीज ने जो लाइब्रेरी आने से डरती थी, लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझती थी, उन्होंने क्या करा कि मैम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक से देख के पढ़ती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हमारे घर के बच्चे भी जाएं और जाके उस बुक्स को रीड करें. जो बच्चे क्लास 9th और 10th के आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में. तो आज हमारी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे करीब 70 से ऊपर हैं. थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर कि आज मुझे रीड ने स्लाइड समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया. थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू ऑल.
1: मैं 2014 से रीड से जुड़ा हुआ हूं और 2014 में रीड से जुड़ने से पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं था. कुछ नहीं का मतलब ये था कि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब थी. 2000 मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहता हूँ. 2006 में मैंने अपनी 10वीं की कक्षा पास की थी जिसमें मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आया था और मेरे परिवार वाले भी सब बहुत ही खुश हुए थे कि हमारा बेटा आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा. लेकिन मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया तो मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी. 10वीं करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और एक साल का गैप हो गया. और मेरे बड़े भाई को पता था कि सुनील पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो उन्होंने हरियाणा ओपन से मेरा फॉर्म 12वीं का फॉर्म भर दिया और 12वीं मैंने 12वीं कर ली. और उसी साल मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मैंने अपने जिस कंपनी में मेरे पिताजी काम करते थे मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली और मैंने एक एज ए लेबर मैंने काम करना शुरू कर दिया. और वो काम मुझे पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मजदूरी में करना पड़ता था. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी. उसी साल एक एडल्ट प्रोग्राम

0: मेरे साथ ही जो बच्चे मेरे गांव के जो बच्चे हैं उनको मैं एज ए ट्यूशन क्लासेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस देता हूं। 15 बच्चों ने सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मेरे साथ क्वालिफाई किया है, बाकी गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं रीडिंग डे का पूरा आभारी रहूंगा और रीड के साथ हमेशा एज ए वॉलंटियर में वर्क काम करता हूं।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीशा है, आई एम फ्रॉम गरिमा ग्रह। सो जब मैंने एक्चुअली मेरे डैड नहीं है, मैं जब 13 साल की थी तो मेरे डैड हमें छोड़ के चले गए थे और मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ। उसमें मेरी मम्मा है और मेरी एक सिस्टर है और मैं हूँ। तो मेरी मम्मा जैसे जब डैडी गए तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने हमें मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपको कुछ करना है या कुछ भी। हमारे जितनी भी चीजें होती थी हमारे बिना बोले मम्मी कर दिया करती थी, हमें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मम्मी हमें ये चाहिए। पर जब मैं बड़ी हुई, मैंने 12th पास आउट करी और मैंने देखा हमारी मम्मी हमें मतलब इतने मेहनत से हमारी पढ़ाई करवा रही है, कभी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को मम्मी की हेल्प करनी है और मेरे को अपनी छोटी बहन को टीच करना है, उसकी अच्छी एजुकेशन हो तो मेरे को भी जॉब करनी है। तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे को जॉब करनी है, तो मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है। तो मम्मा पीवीआर में है अभी, तो जब गरिमा गृह बन रहा था तो वहां पे शिवानी मैम आती थी, तो फिर मैम मम्मी ने शिवानी मैम को बोला कि मेरी बेटी ने कंप्यूटर कर रखा है और उसको जॉब करनी है। तो मैं शिवानी मैम से मिली थी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर अब मैं गरिमा गृह में एक आईटी टीचर हूँ। वहां पे जिस तरह बच्चे आते हैं और मतलब एक टॉयलेट है और टॉयलेट के साथ एजुकेशन चल रही है, मैं जब खुद गई थी तो मैंने देखा था तो मेरे को थोड़ा हुआ था कि मतलब बहुत पुअर, मतलब लोग इतने छोटे छोटे, हम मतलब जहाँ पे धड़े हैं उतने एरिया में लोग रहते हैं, उसी में किचन है, उसी में बेडरूम है, 5-6 भाई बहन है, पापा है, सब एक साथ रह रहे हैं और वो मतलब कभी ये नहीं बोलते कि हम प्रॉब्लम में है। मैंने उनको देखा और उनसे खुद सीखा कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है और मैं उनके साथ रोज जाती हूँ, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलता है, मैं उनको सिखाती भी हूँ। और मेरी टीम और गीता मैम, मैम के लिए तो मैं कुछ मतलब मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है। मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं मैम को, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैम को देखा तो मैं ऐसे लगा कि मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो थैंक यू मैम विद अस एंड थैंक यू।

ये सेशन हमें जागरूक करता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे एक डायरेक्शन देनी है, और वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बार हमें आदत पड़ जाएगी छोटे छोटे स्टेप्स लेके, अगर हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है हमारी हमारी जिंदगी तो सुधरेगी सुधरेगी, उसके साथ जो आसपास लोग हैं हमारे, उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। और मैं बहुत ज्यादा कोई टॉपिक्स जो चुनती हूँ, मैं किसी बुक से या बहुत हाई लेवल की बात नहीं करती हूँ। ये जो सेशन है मेयरली है कि हम एक कन्वर्सेशन मोड पे आए और हम अपनी जिंदगी को पहचाने और अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, और उसी से जो आउटकम है, जो इस

0: का निचोड़ है वो लीडर है, कि हम अपनी जिंदगी में लीडर बने। लीडर का रोल मैंने बहुत पहले भी बताया था, लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है। मैनेजर क्या करता है कि एक टर्म डिक्टेट कर देता कि आपको 10 बच्चों को पढ़ाना है, बस पढ़ा के मेरे को बता दो आपने 10 बच्चों को पढ़ा दिया। पर क्या आपको पढ़ाना आता है? आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? आप क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? आपको कोई इनहिबिशंस हैं? आपको क्या सामान चाहिए पढ़ाने के लिए? आप किन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? वो लोग क्या अपनी जिंदगी में करेंगे? ये सारी बातें अगर हम समझते हैं और अगर हम पूछते हैं, तो जो मेंटरशिप होती है, जो लीडरशिप होती है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो जितने भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो जानते हैं कि रीट इंडिया का वर्किंग पैटर्न क्या है और हम कैसे काम करते हैं। हमने कभी भी वर्किंग पैटर्न में डिक्टेटरशिप नहीं लाया है कि हम डिक्टेट नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये काम हमें करना है और ये काम हमें आपकी सपोर्ट से करना है, और वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज आप इस चीज को समझिए, हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं और आप लोग सेंटर्स में हैं। हम कनेक्शन करते हैं जो हमें फंडिंग देते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, वो फिर हम आप लोगों को कहते हैं करने के लिए। और अगर हम खाली कह के छोड़ देंगे, उस काम का रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम आपको छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी अंदर से जिज्ञासा बढ़ती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपका क्या जुड़ता है? एक्शन, है ना? जैसे आपके दिल में एक बात आई कि हाँ रीट इंडिया ने बोला है कि 25 लोगों को कंप्यूटर सिखाना है, राइट? अब कंप्यूटर में क्या सिखाना है वो भी रीट इंडिया ने बता दिया, कंप्यूटर्स भी रीट इंडिया ने दे दिए, और लेसन प्लान्स भी दे दिए, प्री असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए, पोस्ट असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए। पर उस जो सोच है, जो आपके दिल में है, जो आपके हार्ट में है, उसको एक्शन में कौन उतार रहा है? आप लोग उतार रहे हैं ना? जब आप उसको एक्शन में उतार रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपके दिल में है, उसको जब आप एक्शन में उतार रहे हैं, तो उनका 100% सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कह दिया हेड ऑफिस ने, वो लोग तो वहां बैठे हैं, यहाँ पे हमें ऑर्डर दे देते हैं ऐसे करने के लिए। नहीं, आपको ये प्रिविलेज समझना चाहिए कि हेड ऑफिस की मजबूरी है, वो हर समय आके यहाँ पे नहीं हमारे साथ बैठ सकते, तो वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ट्रेनिंग्स करिए, आप हमारे बिहाफ पे लोगों को सक्षम करिए। तो हमने क्या किया, रीट इंडिया ने आप लोगों को एक हायर पेडेस्टल पे रखा। एम आई राइट? आप समझ रहे हैं? ये हमारी सोच है, जो आपको समझना, आपको इम्बाइब करना, आपको हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो आपको हमने एक ऐसे पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया जहां पे आप एक हायर लेवल पे आ गए हैं, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है दूसरों को सक्षम करने की। अब हम खाली अगर यही सोचे, छोटी सोच रखे कि हाँ भाई 2 घंटे सिखाना है, सिखा देंगे, सीखा नहीं सीखा बात तो एक ही है, नाम तो चला ही गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गई, ये एक सोच है। दूसरी सोच क्या है? नहीं, मुझे हेड ऑफिस से ये मैसेज आया है कि मुझे इन लोगों को सिखाना है, और मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से, अपने हार्ट और अपने एक्शन को इतना जबरदस्त सिंक्रोनाइज कर लो कि क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट खाली हेड ऑफिस को नहीं दिखाना है, ये आप मिथ से निकल जाएं। हेड ऑफिस तो कर लेगा अपने आप, क्योंकि हेड ऑफिस ने फंड रेज करा है तो वो करेगा ही करेगा, उसकी अपनी लेवल की कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट क्या है, आपकी पहचान क्या है, समुदाय है, लोग आपके बारे में आपको पहचानेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके दिल के साथ जुड़ेंगे, आपकी क्षमता को पहचानेंगे, और 10 लोगों के बीच में खड़े होके आपको सलाम करेंगे, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप इस तरीके से इन सब चीजों को सोचिए। जो लोग मेरे इस थॉट प्रोसेस से सहमत हैं, प्लीज आप चैट में यस लिख दीजिए फटाफट, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं खाली भाषण दे रही हूँ, मैं लीडरशिप का सेशन नहीं ले रही हूँ। आप सहमत हैं जो मैंने कहा है? डिफरेंस आप समझते हैं जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप रीड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। रीड इंडिया में अगर आप, मैं लीडर हूं, मेरा नाम गीता है, तो गीता की पर्सनालिटी के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना है। गीता के दिल में क्या है, स्मिता के दिल में क्या है, रीड की टीम के दिल में क्या है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके जब आप बात करेंगे कम्युनिटी में, तो ये तो हम आपको अपने लेवल से ऊपर उठा के बोल रहे हैं ना। हमारी तो मजबूरी है। अब मैं देख रही हूँ, अगर आप इतनी इतनी दूर से दयाराम लिख रहे हैं यस मैम, तो दयाराम तो बारन में है। अब मैं तो ट्रेनिंग देने बारन में नहीं जा सकती, या मेरी टीम तो नहीं जा सकती, है ना? तो हमने आपको एक हायर पेडेस्टल दे दिया कि हमने इतना विश्वास आपके ऊपर जमा लिया कि यस हमारी टीम कर सकती है, और हम आपके गुण गाते हैं डोनर के सामने, बोलते हैं कि नहीं, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम जो भी उनको बोल रहे हैं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर दी। और आप लोग, जब मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूँ, मैं सबको तो नहीं देती हूँ जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ जब भी मैं सेंटर में जाती हूँ, और जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, आपका जोश देखती हूँ, आपकी कमिटमेंट देखती हूँ, एंड दैट इज सच ए फुलफिलिंग मोमेंट फॉर मी टू नो दैट देयर आर लीडर्स इन द विलेजेस हु आर ट्रांसफॉर्मिंग। हम एक दूसरी स्टेटमेंट अभी लिखते हैं हर एक जगह पे, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, मतलब कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन समाज बना रहे हैं अपने इंटरवेंशंस के द्वारा। पर जब ये स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर हमारा पीछे काम ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, आप बताओ? और काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। आपके बिहाफ पे मैं लिखती हूँ कि रीड इंडिया इज कमिटेड फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है, हमारे हर एक पेज पे टैगलाइन जाती है इस चीज की, मैं किसके बिहाफ पे लिख रहे हूँ, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि हम, हमारे बिहाफ पे आप सेंटर्स में काम कर। एम आई राइट? यहां तक किसी का कोई कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, मैं आगे चलूँ? कोई एक अपना ऑन करके बोल सकते हैं कि यस मैम यू कैन प्रोसीड फर्दर।
1: यस मैम, आगे बिल्कुल समझ में आ रहा है।
0: यस मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीका।
2: ठीक है।
0: अब मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आप लोगों का और हमारे करेक्टरिस्टिक पे आता है, हमारी पर्सनालिटी पे आता है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है कि हम क्या है, बहुत नोबल हैं। नोबल इन द सेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नोबल को, कि हम बहुत वाइज हैं, हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? जब हम एक सुप्रीम नोबिलिटी पे आ जाते हैं तो हमारे में हम्बलनेस आ जाती है, और जब हमारे में हम्बलनेस आती है तो हम समाज में काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार आप सुनते होंगे ये स्टेटमेंट्स कि ये बंदा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ये तो बस अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। किसी और को हम कहते हैं कि ही इज सो मच आउट गोइंग, वो तो दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है और दूसरों के बारे में ही करता है हर कुछ, जो भी करता है दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो मैं आप लोगों को सबको सेकंड लेवल पे देखती हूँ, मतलब क्या है, विजुअलाइज दैट यू पीपल आर एट द सेकंड लेवल, क्योंकि आप में सुप्रीम नोबिलिटी है, आप नोबल हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये लीडरशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ठीक है? तो आप नोबल हैं, आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये आपको हैबिट पड़ गई है। ये प्रोग्राम्स, मैं आज आपकी पर्सनालिटी आपके सामने रख रही हूँ, आपको आदत पड़ गई है सोचने की हमेशा दूसरों के बारे में। आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनको किस लेवल तक ला सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा, आपका ये सब करने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। क्या आती है? एक आत्मविश्वास आता है कि यस आई कैन डू। ये जब आत्मविश्वास आता है आप में, तो नोबलनेस और स्ट्रेंथन हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप तो, आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि मैं तो दूसरों के लिए ही हूँ, मैं तो दूसरों के लिए ही, भगवान ने मुझे इस धरती पे उतारा है और मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ। मैं इस साथ में ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ को नहीं देखना, हम हेल्दी होंगे, हम स्मार्ट होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, हमारे में विजडम होगी, हमारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। बट यस, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जब तीसरी बात, इसका जो आउटकम आता है नोबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, तो हम क्या, मतलब कि लोग हमें क्या कहते हैं, कहते होंगे आप सब लोगों को, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी हैं, कहते हैं, जरूर कहते होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई नहीं कहता आभारी, तो आप प्लीज बताएं, या कहते हैं तो वो भी बताएं, कोई भी ऑन करके बताएं कि हाँ हमें कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं।
2: जी नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी, मीना जी बोलिए।
2: जी मैम, मेरे से तो पता है ना कितने सारे लड़कियों ने महिलाओं ने कई बार बोल दिया कि आपने अगर हम लोगों की ये चीज नहीं करवाते तो शायद हम सक्सेस नहीं होते, तो आपका
0: हाँ
2: जितना भी धन्यवाद करें वो कम है।
0: हाँ तो आ गया ना, ग्रेटफुलनेस आ गई है ना। और जब ग्रेटफुलनेस आती है लोगों के मन में, तो हम और भी नोबल बन जाते हैं, हम और भी हम्बल बन जाते हैं, फिर हमारा दिल करता है हम और करें, हम और लोगों के बीच करें, और हम ये अपनी लाइफ का एक मिशन बना लें, है ना। तो
2: जी मैम,
0: ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ही आज मेरा सेशन है, क्योंकि आपको समझना है कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर, है ना। तो जब हम सच्चाई से काम करते हैं, मैं थर्ड स्टेप आपको बोल रही हूँ, जब हम पूरी सच्चाई से काम करते हैं और हमारे मन में डेडिकेशन है और हम पूरी अपनी सोच समझ से और विजडम से काम करते हैं, तो हमारे से हम क्या बोलते हैं, बहुत कंपैशनेट बन जाते हैं। तो कंपैशनेट का मतलब होता है कि हम आसपास के कंपैरिजन्स को नहीं देखते, है ना, कंपटीशन को नहीं देखते, हम इतने कंपैशन हो जाते हैं कि हमारे में डे एंड नाइट एक इग्निशन होती है कि हमें और करना है, और करना है, और करना है, हम और लोगों को रीच करेंगे, और लोगों के साथ काम करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो जो अंदर सोल है, वो एकदम प्योर हो जाती वहां से डस्ट हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। तो हमारी जो प्योरिटी है विद इन आवर हार्ट, मैं फिर हार्ट पे वापस आ रही हूँ, हार्ट से मैंने शुरू करा था। हार्ट हमें एक्शन करने के लिए प्रेरणा देता है, हार्ट और एक्शन हमारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम नोबिलिटी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ आती है और हम ग्रेटफुल बन जाते हैं दूसरों के लिए जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी उनको सर्व करने के लिए। और जब हम पूरी सच्चाई से चलते हैं तो हमारे में कोई लिमिट नहीं होती, जो हमारे में उत्साह आता है, इतना सारा उत्साह आ जाता है करने के लिए, हमारी विजडम डेवलप हो जाती है, हम कंपैशनेट बन जाते हैं, और इन सब स्टेप्स का निचोड़ होता है कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बिल्कुल प्योर बन जाती है। वहां से डस्ट हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं भी नेगेटिव बोलती हूँ किसी के बारे में, कोई बात अच्छी नहीं लगती है या नहीं मुझे पसंद आती, पर वो मैं किस किससे बोल रही हूँ, अपने विजडम से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच में वो गलत है ना। तो हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है ना। नेगेटिव चीजें हमें किस तरफ लेके जाती है, मतलब कि हमारी सोच जब नेगेटिव जाती है तो हमें ये लगता है कि ये सब कुछ ना एक एक खटास में बदल रहा है ना। पर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें एक मिठास में कन्वर्ट कर दे, है ना, तो हम खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आने के लिए ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी। हम अपने आप को जब कहते हैं कि हम लीडर्स हैं तो हमें ये सब चीजों को समझना है, और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ यू आर द लीडर्स, व्हाई यू आर द लीडर्स, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी। मैं तो आपके सामने आपके चिट्ठे खोल रही हूँ, जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो फिर हम कहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, हम कहते हैं ना लोगों के सामने, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, बहुत लोग हमें भी कहते हैं कि यू आर एम्पावर्ड, और फिर हमारा मिशन क्या बन जाता है, हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है, दूसरों को भी उस लेवल तक लेकर आना है कि हम उनकी खुशी की तरफ चलें, अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जिंदगी की डेडिकेशन जो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि हम अपनी जीवन की पर्सनालिटी को इस तरीके से ढाल लें कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए करें, और उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। देखिए कितना बड़ी बात है ये कि जब हम अपनी सोच, अपने एक्शन, अपनी विजडम, अपना करेज, अपना अपना थॉट प्रोसेस को, हम अपनी सोल को क्लींस करने के रास्ते पे चल जाते हैं, तो हम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं, और फिर जो सुप्रीम पावर है वो हमारी खुशी के लिए सोचता है। और इस सारे प्रोसेस में हम अपने जो कर्म हैं उनको भी अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं, है ना। जब हम कर्म की बात करते हैं, हम उनको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इंग्लिश में ये बोलते हैं कि हम कॉजेस क्रिएट करते हैं। कॉजेस मतलब कि मैंने मैंने आपको कुछ पढ़ाया, ये मैंने कॉज क्रिएट करा, है ना, और उसका इफेक्ट क्या आएगा कि मेरी लाइफ में कुछ एक अच्छा होगा जो मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है अच्छा मेरे पास, बट क्योंकि मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा आया। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बहुत हर मोमेंट पे होता है, हर सोच के एक्शन पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 20 दिन में अच्छा कुछ दान कर दिया तो मेरे पास धन आ जाएगा। नहीं, हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, हमारी डे टू डे जिंदगी में हम कॉजेस क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता है। तो हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, या वो छोटी हो जाती हैं, या बिल्कुल हमारी जिंदगी से हट जाती हैं। तो लीडरशिप का जो मैंने पर्सनालिटी बताई है आपको, अगर हम ऐसे लीडर्स बन जाएं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बहुत सुधर जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आ जाता है और हमें अपनी जिंदगी को चयन करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? तो हम जब अपने कर्मास को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं, है ना? जब हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं दूर, तो हमें रोशनी का एहसास होता है। रोशनी ये नहीं जो हमें लाइट से मिल रही है, रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। यू गेट अप विद योर फ्रेश माइंड, यू गेट अप विद योर फुल एनर्जी कि हाँ मुझे आज अपने आज इस दिन को मैंने इस तरीके से जीना है। एक बहुत अच्छा मैसेज अभी मैंने किसी को फॉरवर्ड करा था, मैंने पढ़ा था, वी रन आर डे और डे रन अस। मतलब कि क्या हम अपना दिन खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे चलाना है, या दिन डिसाइड करता है कि हमें अपना टाइम कैसे पास करना है? तो ये जो इस दोनों चीज का ये डिफरेंस है वो आज मैंने निचोड़ आपके सामने रखा कि मुझे अपना दिन कैसे पास करना है वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आज क्या-क्या करना है अपनी जिंदगी में, या फिर जो दिन है वो मेरे पे इतना हावी हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है। और रात को हम शुक्र करते हैं भगवान का, भगवान का मतलब कि हम कहते हैं थैंक गॉड रात हो गई अब तो सोने का टाइम। नहीं, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना दिन कैसे चलाना है। और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो लीडरशिप की ट्रेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा दिन हमारी मुट्ठी में है। हम डिसाइड करते हैं हमें अपने दिन को कैसे चलाना है। डिफिकल्टीज हर एक की लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आती हैं, पर विद प्योरिटी विद पॉजिटिविटी हमारे में इतनी विजडम डेवलप हो जाती है कि वो चैलेंजेस हमें छोटे लगते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं अपने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मैंने अभी किसी बुक में पढ़ा था, वो ये था, रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन विच इज सिंसियर। जो बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, जो औरतें आपके पास सीखने आती हैं, मैं वही एग्जाम्पल लूंगी, वो एक सिंसियरिटी से आती हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सिंसियर है और कौन जस्ट टाइम पास करने आ रहा है। आपकी अपनी इंटेंशंस और आपकी अपनी अटेंशन, दोनों इंटेंशन भी और अटेंशन भी उन पे ज्यादा फोकस करती है जो सिंसियर है ना? और फिर जब आप उनको रिस्पॉन्स करते हो वो विद अटमोस्ट सिंसियरिटी से करते हो। एम आई राइट? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं यहां बैठी हूं पर मुझे पूरा पता है कि आप किस तरीके से काम कर। मैं आज आपकी पर्सनालिटीज का चैप्टर आपके सामने खोल के रख रही हूं। एम आई राइट? कोई भी बोलेगा कि जो मैंने ये पॉइंट बोला है, रिस्पॉन्डिंग टू सिंसेरिटी विद सिंसेरिटी यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। एम आई
1: जी
0: राइट?
1: मैम, जी मैम,
0: कौन बोल रही है?
3: बड़ा गांव से।
0: एम आई राइट?
2: यस मैम।
0: हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि जब जब हम सिंसेरिटी से काम करते हैं और सिंसेरिटी को हम इवैल्यूएट, तो जजमेंट हो जाती है, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि कौन सिंसियर है और कौन नहीं है। और जब हम इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारी पर्सनालिटी इस दायरे में आ जाती है, तो हम हर एक कंप्लेंट को, जो भी कंप्लेंट आपके सामने आती है, आप उसको बहुत कंपैशन से टैकल करते हो। तो हम कंप्लेंट मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है कि बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं। हाँ, हम कंप्लेन मोड से कि उसने ऐसे किया, वो सुनती नहीं है, वो खराब है, वो ये है, उससे हम एक करुणा हमारे मन में आ जाती है। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, भगवान उसको भी अच्छी बुद्धि देगा, सक्षम बुद्धि देगा, अच्छी सोच देगा। हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, करुणा की करुणा आ जाती है हमारे दिल में, हमारे हमारे दिल में उसके लिए दया आ जाती है कि हम फिर हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, इस इंसान को सक्षम बुद्धि दे दो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि हम इंस्टेंटली कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोझा बोला, तो उसका हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो जो कर्मा थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की, वो हमें हर स्टेप पे गाइड करती है, वो ही हमें लीड करती है कंप्लेनिंग टू कंपैशन मोड में आने के लिए। तो हम इस तरीके से जब कंप्लेनिंग मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, तो हम हर एक चैलेंज को ओवरकम करने की पावर रखते हैं अपने। हम कहते हैं देखो, पावर सब में होती है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में जो चैलेंज आता है ना, वो फाइटिंग मोड से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम द फाइटर, आई कैन फाइट, बट फाइट कैसे करना है? फाइट गाली गलौज से करना है, या आर्ग्यूमेंट से करना है, या हमने उसको करुणा से रिजॉल्व करना है? देर इज अ डिफरेंस। ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है। जिसको ये पर्सनालिटी का ट्रेट समझ में आ जाता है ना, उसकी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं अपने आप। और ये जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, सबकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं, पर उन सरकमस्टांसेस को क्या हमने पहाड़ बना के अपने सिर पे रखना है, या उसको कंपैशन से, विजडम से रिजॉल्व करके अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो ये जिंदगी की गाड़ी जो है, नाव जो है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, तो हमारे में एक कन्विक्शन आ जाती है। कन्विक्शन क्या होता है कि एक दृढ़ता आ जाती है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना है, जिससे हमें भी खुशी मिले। अगर हम दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है। इफ वी थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स, वी गेट हैप्पीनेस, वी गेट सेटिस्फेक्शन। तो वो एक हैप्पीनेस कोई हम मार्केट में तो खरीदने नहीं जा सकते, जितना भी पैसा हो, खुशी हम नहीं खरीद सकते। खुशी पाने के लिए ये जो आज मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी से आप खुशी पा सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट, एंड यू हैव टू बी वेरी विजनरी ऑल्सो, क्लियर विजन। कहीं पे भी झूठ का साथ नहीं, कहीं पे भी कहीं पे भी किसी को डाउन करने का हमारी सोच नहीं है, हम सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बट कोई हमें ये ना समझे कि हम वीक हैं, राइट? हमारी जो अच्छाई है वो वीकनेस के जरिए दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम अच्छे भी हैं, हम स्ट्रांग भी हैं, हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हम दूसरों की बातों में आने वाले नहीं हैं, और इस तरीके की पर्सनालिटी में हमें एक विजडम डेवलप होती है कि हम दूसरों को अच्छे से पहचान पाए। अगर दूसरे गलत भी हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों खराब करें, हम अपने कर्मास में क्यों रेड स्पॉट्स लगाएं, अगर वो ऐसा है तो उसके कर्मास उसके साथ है, मेरे कर्मास मेरे साथ है, मैं टिट फॉर टैट के सर्कल से बाहर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब मैं एक 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगी जो मैंने बुक में ही पढ़ा था, किसी होली बुक में ही पढ़ा था, सब लोग साई, मैंने साई बाबा की बुक में पढ़ा था, साई सच्चरित्र में ये बहुत बड़ा टॉपिक आता है, एक चैप्टर 39 है, जो साई बाबा को मानते हैं और साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, उसके 39 चैप्टर के लास्ट पेज में लिखा हुआ है, वो मतलब कि अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ना एक मिथ में रहते हैं। वो मिथ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। हम जब ये सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं, इंसान क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ना हमारी बॉडी है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है, पर हम बॉडी के बियॉन्ड तो सोचते ही नहीं है। बॉडी तो जानवरों की भी होती है, बॉडी तो कीड़ों मकोड़ों की भी होती है, पर भगवान ने हमें क्यों एक हायर पेडेस्टल पे रखा है, क्योंकि हमारे में एक आत्मा भी है, एक आत्मा भी है, और वो आत्मा जो मैं सोल की बात कर रही हूँ, वो सोल जो है वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान हम ना अपने नाम और अपनी बॉडी से करते हैं, पर हमारी असली पहचान क्या है, हमारी आत्मा, हमारी सोल, वो कितनी प्योर है, उस पे कितना डस्ट लगा हुआ है, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, कितना हम दूसरों के लिए सोचते हैं, कितना हम अपने लिए सोचते हैं, कितना हम लोगों को माफ कर देते हैं, कितना हम लोगों की गलतियां पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये डिफरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। भगवान क्या है? किसी ने भगवान को देखे? जिसने देखे प्लीज अपना अनम्यूट करके यस बोल दीजिए, और जिसने नहीं देखा वो नो भी बोल दीजिए। किसी ने भगवान को देखा? किसी ने देखा भगवान को?
2: मैम डेली देखते हैं,
0: है
2: डेली देखते हैं। देखो वो
0: आप?
2: बॉडी से नहीं दिखता पर मन की आंखों से दिखता
0: यस, तो
2: है जो
0: सोल की,
2: सच।
0: सोल से दिखता है, हम फील करते हैं उसको, हम गुरुजी को देखते हैं जो
2: जी मैम
0: बॉडी फॉर्म में हमारे सामने आए, पर उन्होंने भी यही बोला कि मेरे मेरे को कितने लोग समझ पाए, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि कितने लोगों ने मुझे समझा, कितने, कोई लोग मुझे भगवान कहते हैं, कोई लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई लोग मुझे कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारा, हमारी सोल, हमारा मतलब कि वो ये, इसका निचोड़ ये है कि भगवान, दुनिया और इंसान एक ही है, कोई भगवान हमें नजर नहीं आ रहा। भगवान ने तो ये बोला है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है,
2: यस
0: उस
2: मैम यस मैम
0: सोल को नर्चर करने की जरूरत है, उस सोल को पहचानने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने एक्शंस निर्भर करने की जरूरत है, उन एक्शंस को हम किस तरीके से करें कि उस सोल पे चोट मत पहुंचे। एम आई राइट? तो फिर क्या हुआ, भगवान, दुनिया और जो हम इंसान हैं, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, पर डिफरेंसेस किसने क्रिएट करे हैं? हमारी सोच ने और हमारे एक्शन ने। बस दो ही चीजें हमारी लीडरशिप में काम आती हैं, एक हमारी सोच और एक हमारा एक्शन। हमें वो आसमान पे भी पहुंचा देता और मिट्टी में भी मिला देता। बस इनको पकड़ के हम चलेंगे तो हम बहुत हाई लेवल के लीडर्स बन जाएंगे, क्योंकि लीडरशिप क्या है? डूइंग फॉर अदर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, दैट इज द स्टेटमेंट। व्हेन वी से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हमारा सिर अपने आप झुकता है। और अगर हम बोलते हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो हमारा सिर ऊपर करके बोलता है। ये बॉडी एंड एक्शन का सिंक्रोनाइजेशन है थॉट प्रोसेस के साथ। तो मैं अब सेशन को क्लोज इसी से करूंगी कि अगर हम हर इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश कर दें, तो हमारी सब त्रुटियां जो हैं, जो हमारी सब मिस्टेक्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी आस्ता आस्ता, और हम एक ट्रू लीडर के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे। अब वी कैन डिस्कस फॉर 10 मिनट्स। किसी के कोई कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या कोई पूछना चाहता है कुछ, या और कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसके आंसर देने के लिए तैयार हूँ।
2: थैंक यू सो मच मैम। कर्मा का पाथ जो डेली कुछ ना कुछ मिस हो जाता है उसको क्लियर करना है। बहुत अच्छे पॉइंट्स। कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है मैम, 100% श्योर हूँ।
0: हाँ, सबसे
2: ऐसा
0: होता
2: नहीं
0: है,
2: है कि
0: मेरे
2: नहीं
0: से भी
2: होता
0: होता है, मेरे से
2: जी।
0: भी होता है। मैं कोई हार्डकोर वो नहीं हूँ, प्योर, मेरे से भी होता है। पर जब तक हम इसको बात में
2: रिवाइज
0: नहीं लाएंगे, बातचीत में नहीं लाएंगे, हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे।
2: लेकिन आज से डिस्कस करने से एक चीज ऐसी और एड ऑन हो जाती है। जैसे एक नेगेटिव हटाया, पॉजिटिव एड ऑन किया, कभी ट्रुथनेस एड ऑन किया, तो ऐसी बात आपका जब आप बताते हैं ना मैम, तो सच में कोई ना कोई पॉइंट लाइफ में ऐड हो जाता है। इट्स रियली वेरी थैंकफुल टू यू। पर मेरा थोड़ा सा आवाज खराब हो रहा है, सो सॉरी फॉर
0: नहीं
2: दिस। थैंक
0: नहीं ठीक है।
2: यू मैम,
0: हाँ,
2: बहुत
0: बस
2: अच्छा
0: मुझे
2: लगा
0: ये है कि ये चीजें हम रोजमर्रा डिस्कस करें
2: जी।
0: और प्रैक्टिस करें, तो लाइफ में बहुत कुछ हम चेंज ला सकते
2: जी
0: हैं।
2: मैम,
0: रास्ते
2: बिल्कुल
0: अपने आप खुलते हैं,
2: जी
0: बहुत
2: मैम। अपने आप
0: हाँ,
2: सबसे
0: अपने आप
2: अच्छी
0: खुलते
2: पॉइंट यही है कि अगर किसी के लिए कुछ भी छोटा सा किया जाता है तो अपने आप झोली में आ जाता है। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। थैंक यू मैम, थैंक
0: बिल्कुल।
2: यू सो मच।
0: ओके, थैंक यू जोस्ना।
2: थैंक यू मैम।
0: एनीबॉडी एल्स?
1: आप एक नए वर्ड पे के माने जाने जो कंपैशन है
0: हाँ जी, करुणा, उसका हिंदी
1: जी,
0: शब्द है करुणा।
1: एक वर्ड
0: हाँ
1: के बहुत सारे मायने आज आपके जरिए जान दिए।
0: हाँ ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग। बट वही मैंने बोला ना कि चैलेंज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। चैलेंज को हम लड़ के रिजॉल्व कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज में रिजॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, या हम पॉजिटिव होकर अपनी करुणा पर्सनालिटी से, कंपैशन से उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई?
1: नमस्ते मैम, विजय
0: नमस्ते,
1: बरानिया से मैम।
0: थैंक
1: बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के संबंध में। एक्चुअली अभी हम सोचते हैं, और मैं अभी फिर वापस जब रीड से जुड़ा तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, या मैंने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि भाई मुझे तो हायर किया गया है कि बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है या महिलाओं को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं नहीं कह रहा था अभी तक कि एज ए लीडरशिप, क्योंकि मैं पहले भी संस्था में काम कर चुका हूं तो कुछ तो है लीडरशिप के इनपुट से, लेकिन इस बार मैं उस सोच से नहीं गया। लेकिन आज के आपके सेशन से मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस सोच के साथ जाऊं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और अपने सोल की सुन के कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मैंने अपने टास्क को कैसे प्लान नहीं किया, मेरा दिन आज कैसे कैसे कैसे कैसे करना है, और मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो कितने लोग उससे लाभ होंगे, जो कल को जब मेरा ग्रेटफुल करेंगे वो लोग कि हाँ विजय जी तुमने मुझे ये सिखाया। हालांकि मैंने इतने ट्रेनिंग्स किए इस मेरे संकल्प संस्था में, तो लोग जो मेरे साथ यूथ जुड़े हुए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बहुत थैंकफुल कहते हैं मैम। लेकिन कभी इस तरह से जो आपने आज लीडरशिप की जो टेक्निक्स बताई ना मैम, ये मैं आज मतलब मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो गया कि मुझे एक्चुअली लीडर बनना है, तो मुझे अभी मेरे अंदर क्या क्या कमी है वो सारे मुझे ठीक करने हैं मैम। सो आज का सेशन
0: सो
1: बहुत अच्छा रहा मैम।
0: नाइस विजय, अब मैं नेक्स्ट आपको जब मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, दिसंबर में आई विल कम टू बारान, आई विल डेफिनेटली मीट यू, मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी, तो मैं उस लीडर को देखना चाहती हूँ
1: जरूर
0: जिसको
1: मैम,
0: मैंने
1: जरूर
0: 10 साल पहले देखा था, एक छोटा सा बच्चा जो जिसमें पैशन था कुछ करने का, और
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: पैशन से इस लेवल तक पहुंच गया है, और आगे वो लीडर कैसे, देखिए मोती जी हजारों यूथ को एम्पावर करके गए हैं, है ना, पर
1: जी
0: हमें हमने तो उनका उनके जैसा लीडर बनना है। दैट्स व्हाई
1: उनके जैसा
0: मैंने तो
1: बनना।
0: आपको सुप्रीम चीज का एग्जाम्पल दिया कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, कल को हम भगवान इंसान और दुनिया अगर एक हो जाएगी तो बुराई तो अपने आप ही निकल जाएगी, है ना।
1: मेरे साथ रेबा है मैम।
0: नमस्ते, नमस्ते रेबा,
2: मैं आपसे मिली थी आज से कम से कम 15 साल पहले, जब फर्स्ट में रेड इंडिया शुरू हुई थी, चारू दी के साथ आई थी कंप्यूटर
0: हाँ
2: लेने।
0: जी,
2: तो
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानती हूँ, क्योंकि चारू दीदी की तरह आज बोल रहे थे आप। मैंने विजय से कहा है कि उनको देख के मेरे एकदम से इमोशनल हो गई मैं, कि आज चारू दी की शक्ल आ गई मेरे सामने, है ना। तो
0: मुझे
2: क्योंकि मैं
0: बारह
2: लीडर,
0: में सब लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहते हैं आपको देख के हमें चारू जी की बहुत याद आती
2: हाँ, तो क्या है कि
0: है।
2: आज मैंने लीडरशिप, तो मैं संस्था छोड़ने के बाद भी मैं लीडरशिप की तरह काम कर रही हूँ। मुझे मुझे कंप्यूटर सिखाता था तो मैं कहती ऐसा नहीं ऐसा, तो गुरु मेरा, लेकिन मैं कहती ऐसे। लेकिन आज जो दी आपने बताया ना कि वास्तविक एक लीडरशिप में किस तरीके के गुण होने चाहिए, वो वास्तविकता है कि हमारे दिन का प्लानिंग कैसे हो और किस हिसाब से हमें तीनों चीज को मिला के काम करें, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी छवि बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये।
0: हाँ, मैं आप सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी, देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मैं एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, कहीं से थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया या कुछ, आप प्लीज अपनी डायरी बनाइए जरूर, चार पांच लाइंस जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं ना उसको लिख डालिए, और वो डायरी आपका एक मिरर बन जाएगी, आप कभी भी 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको उसको पढ़ेंगे ना, और किसी को पढ़ने के लिए देंगे, शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा।
1: राइट मैम,
0: हाँ आप जरूर लिखिए, ठीक है, ठीक है विजय,
1: नमस्ते।
0: थैंक यू। हाँ जी
1: मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जैसे विजय सर ने बोला ना अभी कि जैसे हमें
0: हाँ जी,
1: कोई दूसरों को सिखाकर खुशी मिलती है बहुत, तो मैं उसका एक गीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मैं भी ईट से जुड़ा था, तो फर्स्ट टाइम संकल्प के थ्रू जुड़ा था, तो उस टाइम मुझे आईटी के क्षेत्र में कुछ नहीं आता था, तो मैंने भी विजय सर से बहुत कुछ सीखा था, और शुरुआत विजय सर ने की थी, और कंप्लीट जो मुझे किया है आईटी के क्षेत्र में या ट्रेनिंग्स में या जो भी आप लीडरशिप की है, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है, तो वो पूरा कुछ डीड ने पूरा कर दिया।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, और तुम तो लीडर हो ही अपने में, बहुत कुछ सिखा रहे हो लोगों को, बस ये थोड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अपने में अगर कॉन्शियसली इनग्रेन कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे में सब ट्रेट्स हैं, नहीं, एवरी डे इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू पॉलिश माई सेल्फ, टू टू हैव अ गुड डे फॉर मी, टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। वो क्या है कि जहन में बिठाना बहुत जरूरी है, जब हमारे जहन में बैठ जाता है ना तो हमारे एक्शन हमेशा हमारा दिल उसको कंट्रोल करता है, तो आप सब लोग डायरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा, आप रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थोड़ा हैवी टॉपिक था पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से शेयर करने के बाद, और हैवी बोलने में था, मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स यूज करे थे यहाँ पे, बट बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इसको उतारना। ठीक है, और कोशिश से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीक, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक
1: थैंक
0: यू,
3: यू मैम.
0: थैंक यू मैम।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया. मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है. मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है. इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे. तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है. तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो, वो स्किल दूसरों को सिखाओ. तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस. धन्यवाद.
5: इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से, जर्मनी से. ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी, तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेशन.
4: हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है, एफ टू एफ, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉर्म.
6: नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि है और मैं रीड इंडिया से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हूँ. मैं एक विद्यार्थी के रूप में रीड इंडिया में आई और मैंने देखा घर पे, जैसे मैंने बात की कि मुझे भी कोई कोर्स करना है, तो फैमिली ने काफी मेरे को रोका और बोला कि नहीं, बच्चे पालो, बच्चे संभालो और घर का खाना बनाओ, यही काम होता है लेडीजों का. आप, मैं वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वजीराबाद गांव में थोड़ा घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है. तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं जाके देखता हूँ कि माहौल कैसा है. और वो आए और उन्होंने विजिट किया सेंटर को, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी और बोले कि मैं पापा को, मम्मी को मैं मनाऊंगा, तुम जाओ. मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था. बट उसी दौरान जब मैं कोर्स कर रही थी, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया. लेकिन एडवांस कोर्स करते करते मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब हुई और कंडीशन यहां तक आ गई कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड शायद ना बचे. तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख के बोला कि आगे तुझे बच्चों को तुझे संभालना है. वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था. मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बात की मैं संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, बट आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए. उसी दौरान मेरा बेटा 11th में था और हालात इस कदर आ गए कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम. मैं बिल्कुल एकदम से टूट गई थी. बट मैंने रीड इंडिया में मैम से बात की और अपनी जॉब के लिए मैम से पूछा, तो मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली. उसी दौरान फिर मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मैम, वो मम्मी हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो. उस दौरान एक माँ के लिए मरने की नौबत आ गई थी क्योंकि बच्चे की एजुकेशन मैं पूरी नहीं करवा पा रही थी. लेकिन मैंने रीड इंडिया में ज्वाइन किया और आज मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और एमएनसी कंपनी में आज वो जॉब कर रहा है। और उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को भी ऑफर मिला और उसने भी आज एमएनसी ज्वाइन कर ली है और उसकी भी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर इंडिया, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच मैम।
3: सुर्खियों में
7: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
8: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
9: नमस्कार
8: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है।
9: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए हैं। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसका अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर के किचन के भी इक्विपमेंट्स को ये चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
8: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
10: 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रातिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
8: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
10: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।

0: कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम थे तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो प्रयास है उसमें हमें कोऑपरेशन की माध्यम से चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे। तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा। और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरे दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
1: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेबी कंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: सुगमल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनोग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगी रोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए, और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप खुद इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये ISM 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप IP की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे

0: बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहा है ग्लोबली, उनकी R&D सेंटर्स हमारा देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है कि 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र को पर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। तो ये सस्टेन तरीका से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
1: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
0: या जरूर, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन IPs इस देश में अगले कुछ साल में करना है। तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूं कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारे जो स्किलिंग है इस देश में और हम किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो यंग फोर्स है जो अपने हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कराए, लेकिन इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारी एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छा रहे और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकता है।
1: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुविमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

0: Doctor Giome. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
2: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
1: जी,
2: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना वीवीजी रामजी है इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अभी के देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने काम खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं। उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं, कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी राम जी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
2: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहां पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहां पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
2: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहां पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रूपये थी, अब वो 327.40 रूपये है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 380 रुपए का, 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, दो तिहाई आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
2: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहां पे है कि नहीं, हमारे लिए यहां पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहां पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है। और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
3: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
2: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीवीजी रामजी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
3: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
2: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
3: हम पीछे न रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया और जो पुराना स्टेटस को था, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहां तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पर बहरीन और कुवैत में। तो इस सबसे सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
1: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
2: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है विश्व के सामने।
1: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
2: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहां काम करते हैं, वहां से रिमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-90% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता हो।
1: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
2: नहीं नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
1: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती रहती है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए। तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
2: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और कोई मुश्किलात है उनको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती हैं कि दोनों साइड, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कायम रहे।
1: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें। ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई सारे बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
2: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए। लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीजन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई इस जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं। तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया है? क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही है, होना इसमें चाहिए?
2: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं, तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें, तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबका नाक में दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रोल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन ट्रेन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेंप्शन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हों कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को ये संदेश गया है कि देखिए, आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ऐसा नहीं करने।
1: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें, और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है, तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रखकर के हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
2: देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसे पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे इस संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए, गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इस सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हों, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब ये लड़ाई पर।
1: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रह शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक एमएसएमई की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये तीन जहाज हैं जिनमें करीब 75 से 80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 एमएसएमई लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया है पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई है, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखें, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं, और जिसके कारण अगर आप दोबारा से इसी तीन जहाजों का उदाहरण लेंगे तो 200 एमएसएमई, जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
2: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
4: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
2: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है?
3: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो तो ये रेडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रेडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
2: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
3: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है उनका काम, जैसे कि वो नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है, मतलब उसको नीचे जो समुद्र के नीचे है उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है, जैसे सड़क ऊंच नीच होती है वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो है वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इन्फॉर्मेशन चार्ट पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है, जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
2: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
3: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वाटर क्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई में नहीं, उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुन्द्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस है वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कन्फर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
2: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रांग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
3: जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुंदर के अंदर, वो EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्द्र की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हों और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ऑल दो EEZ बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के। लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पर हक नहीं जमा पाएगा, तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए देके बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं, विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
2: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया, आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
0: सुर्खियों में
5: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर में आई। मुझे योजनाओं के बारे में पता चला, नई नई चीज़ सिखाई जा रही है, बट मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं कंप्यूटर सीखना चाहती थी। तो मुझे कंप्यूटर के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, बट अब मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है और कंप्यूटर के न्यू ऐप्स के बारे में टीचर ने मुझे बताया। पर पहले मुझे नए ऐप्स के बारे में पता नहीं था, पर अब मुझे पता है। और यहाँ की जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से समझा रही है, मुझे समझ में आ रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो कोर्स।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसकी शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल, गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिए। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आँखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी

0: साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ युम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
2: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
1: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
2: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
1: अब इलाज की बात करें।
0: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
0: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है।
4: कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
0: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं. सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीते रहो वंस अगेन।
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम
0: इसे
1: है।
0: क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
1: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गॉटी आर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गॉटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कोल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

अगर अपने भारत के शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में अगर आप एक फलदार पौधा लगाना चाहते हैं, वो तो आप जामुन लगाइए। जामुन जो है वो एवरग्रीन भी होता है, जामुन में घनत्व बहुत होता है, इसका जो हरियाली का, इसकी जो क्षमता है, इसका क्राउन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत तेज उगने वाला है, जल्दी कीड़ा नहीं लगता और नो नॉनसेंस पौधा है। इसको एक बार आपने लगा दिया, इसको आपने दो साल इसकी सेवा कर दी, पानी वानी अच्छा डाल दिया, तो ये बहुत बढ़िया निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इसको परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया निकलेगा। जामुन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब देखिए बाकी जो हमारे जितने भी फलों के वृक्ष है ना, वो छोटे साइज के रह जाते हैं, जैसे चीकू हुआ, फिर आप नींबू ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आम जो है स्लो ग्रोइंग है, वो धीरे धीरे उगता है, तब तक जो है गाय भैंस बकरी उसको अटैक कर जाती है। जामुन एक ऐसा है, आप देखेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्वाइवल हुआ उसका, गाय ने भी खाया, भैंस ने भी खाया, नीलगाय भी आके खा गई, उसको बकरी भी चर गई, लेकिन फिर भी वो इतना रॉबस्ट पेड़ है, जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ये उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। अब जैसे यहां से भी बहुत जगह से इसकी प्रूनिंग हुई थी, ये देखिए यहां कोई काट के गया है, यहां काट के गया है, ये ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच किसी ने काटी है, चॉप की है, फिर यहां से निकलना शुरू हो गया। तो इसकी जो ग्रोथ की क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है, वो बड़ी प्यारी है। इसीलिए मैं जामुन प्रेफर करता हूं शहरों के लिए भी, है ना। और इरिगेशन कैनाल्स हैं, आपकी जो मेड़े हैं फार्म्स में, जो खेतों में, आप वहां पर भी जामुन लगा सकते हैं। जामुन का जो फल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको अगर आप उसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं, मार्केट में भी उसको बेचना चाहें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है, बंदरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गिलहरी बहुत अच्छी आती हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत आती है, और फर्स्ट क्लास छाया आती है, इसमें बहुत ही ठंडी छाया है इसकी। तो जामुन का पेड़ आप जरूर लगाएं।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी

0: देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मेडिकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधक क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
1: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है। हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
1: एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है, जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
2: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ठाट पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी औषधीय पौधे की जो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं। हम बात कर रहे हैं कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और उपयोग। दोस्तों जानते हैं कैथारेंथस रोजियस क्या है। व्हाट इज कैथारेंथस रोजियस? दोस्तों कैथारेंथस रोजियस, जिसे हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है जिसकी फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग में खिलते हैं। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में उगाया जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद और औषधीय उपयोग या मेडिसिनल यूजेज इन आयुर्वेदा। दोस्तों सदाबहार सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, फूल और जड़ें कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट्स। सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबालकर पीने से डायबिटीज पेशेंट्स को फायदा होता है। कैंसर के इलाज में सहायक, हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नामक यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को उबालकर पीने से आपको लाभ हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा रोगों में लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन डिजीजेस। सदाबहार के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से मुहासे, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्किन ट्रीटमेंट है। घाव भरने में मदद करता है, हेल्प्स इन वूंड हीलिंग। इस पौधे का रस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब जानते हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। दोस्तों सदाबहार का उपयोग औषधीय रूप से करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि यह विषैला भी हो सकता है। कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके फूल गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। कैथारेंथस रोजियस के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कैथारेंथस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है जिसका अर्थ है शुद्ध फूल। रोजस का अर्थ है लाल। इस पौधे में लगभग 130 एल्कलॉइड होते हैं। विंका एल्कलॉइड का एक मुख्य स्रोत है। इसे पहले विंका रोसिया के नाम से जाना जाता था। रूपात्मक विशेषताएं, कैथारेंथस रोजस एक बारहमासी छोटा शाक या उपझाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। तना सीधा, ढीला, लचीली लंबी शाखाओं वाला, बैंगनी या हल्का हरा होता है। पत्तियां सरल, फूली हुई, विपरीत, अग्रस्थलीय, डंठल युक्त, अंडाकार, आयताकार, 4 से 10 गुना, 2 से 4 सेंटीमीटर चिकनी, रोमिल, आधार नुकीला या क्यूनिट, शीर्ष कुंद शीर्षाकार तथा पार्श्व तंत्रिकाएं 10 से 12 जोड़ी होती है। डंठल 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प विशेषताएं, पुष्पक्रम पीछे की ओर या कक्षीय या अंतिम सायम या एकल युग्मित और लघु डंठल नुमा होता है। फूल का रंग गुलाबी, सफेद तथा नलीदार होता है। पराग कोशों के क्षेत्र में फूला हुआ कोरोला ट्यूब का गला रोयनदार होता है। पुंकेसर में 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब में शामिल होते हैं। तंतु बहुत छोटे अधिवृक्कीय होते हैं। पराग कोश वर्तिकाग्र के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जायांग में 2 अंडप होते हैं जो नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं लेकिन वर्तिका क्षेत्र में संयुक्त होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, स्वतंत्र और एकल शैली, डंबल कलंक के साथ। निषेचन के बाद अंडप अलग हो जाते हैं और 2 फल बनाते हैं जो लंबी रोमों की एक जोड़ी बनाते हैं। बीज छोटे आकार के व काले रंग के होते हैं। 1000 बीजों का भार 1.2 ग्राम होता है। तो दोस्तों यह था कैथारेंथस रोजियस यानी
सदाबहार के फायदे और उपयोग के बारे में हमारा वीडियो।

0: नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कृषि, पशुपालन और कृषि स्टार्टअप से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचा सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिन दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, ये सफलता का परचम लहरा रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। तो फिर आइए इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का।
1: कृषि के क्षेत्र में गुजरात राज्य की अहम भूमिका है। राज्य सरकार का कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग अपने प्रभार में कृषि और संबंधित विधाओं जैसे बागवानी, मृदा संरक्षण, डेयरी विकास, पशुपालन और सहकारी गतिविधियों में नीतियों व योजनाओं के सदैव तत्पर रहा है। राज्य में बागवानी खेती और बागवानी गतिविधियों के लिए बढ़ते कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग ने अलग से बागवानी विभाग की स्थापना की है। इसलिए राज्य में बागवानी से जुड़े किसान बेहतर आयाम हासिल कर पा रहे हैं। ऐसी ही एक बागवान दंपति है नायक। ये दंपति पिछली दो पीढ़ियों से बागवानी कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। नवसारी जिले के सराओ गांव में रहने वाला ये परिवार मुख्य रूप से चीकू और आम की बागवानी कर रहा है। करीब 30 बीघा में फैले इनके बाग में आम की केसर किस्म, चीकू की काली पत्ती किस्म लगी है। विपुल जी ने शिक्षा लेने के बाद नौकरी में जोर आजमाइश की, लेकिन नौकरी में संतोष ना होने पर अपने पैतृक कार्य यानी बागवानी को ही चुना। पिता के साथ बागवानी की हर बारीकी को सीखते हुए विपुल जी बड़े हुए और आज ये बाग ही उनकी संपत्ति है।
2: 1992 में मैंने खेती करना चालू किया है, तब मेरे पास 300 से 350 हजार थे। उसके बाद फादर के साथ रह के मैंने वो सब रवाड़ी डेवलप की है। जो कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारी नवसारी यूनिवर्सिटी या कृषि यूनिवर्सिटी वहाँ जाके हम मार्गदर्शन लेते हैं। 30 बीघा की खेती है और 600 हजार चीकू का है। और चीकू में क्या है कि वो अक्टूबर महीना से जो चालू होता है तो अप्रैल तक उसका फल हमको मिलता है, तो 21 दिन में होता है। लेकिन अभी जो चौमासा में है जो फूल बैठते हैं उसका हमको 180 दिन के बाद वो फल के रूप में मिलते हैं। आम का है 150, उसमें क्या जब ठंडी ज्यादा रहेगी तो दिसंबर से वो उसकी मौर बोलते हैं, मौर आना चालू होते हैं। उसके बाद कड़ी पड़ते हैं, वो उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मई और जून की 15 तारीख तक वो माल निकाल देते हैं हम। वो चीकू में काली पत्ती और कैरी में केसर है।
0: विपुल जी की बागवानी के बारे में आइए जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं उनके बागों की ओर।
1: बारिश के मौसम में विपुल जी का बाग हरियाली की चुनर ओढ़े नजर आता है। पेड़ हरे हरे पत्तों से ढके हैं तो जमीन हरी भरी घास से, कहीं कहीं पानी भी भरा नजर आ जाता है, जो सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। बाग में ज्यादातर आम के पेड़ काफी पुराने हैं। पूछने पर विपुल जी बताते हैं कि बागवानी उनके पिताजी के समय से की जा रही है। ज्यादातर आम के पेड़ उन्हीं के लगाए हुए हैं। लगभग 100 आम के पेड़ों की उम्र तो 45 साल तक की है। वहीं समय के साथ आए बदलाव में विपुल जी ने खुद भी कई पौधों को रोपा है जो इस समय अच्छी पैदावार दे रहे हैं। 30 बीघा बाग में 600 पेड़ चीकू, 150 पेड़ आम के लगे हैं। हर साल इनकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे वजह है सही समय पर सही देखभाल।
2: साल में देख रेख तो वो बोल मजदूर के पास वो कैरी निकालते हैं और पानी पाते हैं और खाता डालते हैं दो टाइम। वो अक्टूबर महीने में पहले खेर करने के बाद डालता हूँ और मई महीने में खेर करने के बाद डालता हूँ। कटिंग तो मई महीने में करते है नीचे साफ सफाई रखने के लिए, वो ज्यादा बहुत नहीं है। दूसरा वो जंगली वेला फेला वो चढ़ नहीं जाए, इसीलिए नीचे से काटते हैं हम।
0: आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं भारत में फलों की खेती के बारे में, और साथ ही विपुल जी से ये भी जानते हैं कि उन्होंने चीकू की किस किस्म को चुना है और कैसे उसका बेहतर उत्पादन ले रहे हैं।
1: भारत भारत में चीकू की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। चीकू की खेती करीब 65,000 एकड़ की भूमि पर की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के तहत वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 अंतिम की तुलना में लगभग 3.69 मिलियन टन यानी 1.06% अधिक की वृद्धि है। फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 107.51 मिलियन टन की तुलना में 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के पीछे समय और मांग के अनुसार किसानों के बदले तौर तरीके और आधुनिक कृषि को अपनाना शामिल है, जिसमें विपुल नायक जैसे किसानों का योगदान सराहनीय है। विपुल जी अपने बाग में चीकू की काली पत्ती किस्म को उगाते हैं। काली पत्ती किस्म को अधिक उपज देने वाली किस्म कहा जा सकता है। इसके पौधे को वर्ष 2011 में विकसित किया गया था। इस किस्म के एक पूरे पके हुए फल में 3 से 4 बीज मिल जाते हैं और फल भी अधिक गुणवत्ता वाला होता है। इसके एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक साल में 150 किलोग्राम तक का उत्पादन मिल जाता है।
0: किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे विपुल जी की पत्नी से, जो बागवानी में उनका पूर्ण सहयोग दे रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
4: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए।
5: अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ?
6: अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज?
5: मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित।
6: अरे ये तो कोई रसीद लगती है।
5: कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है।
6: WDRA
5: भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है।
6: अच्छा,
5: अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया।
7: ये तो कमाल हो गया।
5: कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा।
8: अरे वाह
5: मुन्नी।
9: पापा, आप मेरा नया बैग लाए?
5: हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके।
10: WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको मिलवाते हैं विपुल जी की पत्नी प्रीति जी से।
1: अपने पति के काम में बराबरी से हाथ बटा रही ये प्रीति जी, जो घर तो संभाल ही रही है वहीं बाग में भी समय दे रही है। पेड़ को कब किसकी जरूरत है इसके बारे में प्रीति जी बखूबी जानती हैं। इसीलिए पेड़ों की कटाई कब करना है, कब भूमि को खैरना है और कब खाद डालने हैं, प्रीति जी ये सब भली भांति जानती है। हालांकि इसके लिए उनके बाग में करीब 10 लोग श्रम देकर कार्य को आसान बना रहे हैं।
11: 600 पेड़ है चीकू के और आम के 150 पेड़ है। इसकी कटिंग हम मई महीने में करते हैं, जो नीचे पूरा मतलब लग गया होगा तो वो काट देते हैं। हर रोज हमारे घर पे 10 लेबर आते हैं, उनसे हम लोग वो सब चीकू का वो काम करवाते हैं। और साल में 2 बार जमीन पूरी खेड़ लेते हैं, एक मई महीने में और एक दिवाली के पर। और दोनों टाइम जब भी खेड़ते हैं तब बाद में वो खातर उसमें डालते हैं, और दोनों टाइम खातर उसमें डाल देते हैं। और पानी का तो क्या है, वो एक मतलब एक कियाड़े में हो गया चीकू का काम खत्म तो दूसरे कियाड़े में जाएंगे तो वहां पे पानी चालू कर देते हैं।
0: कार्यक्रम में जानते हैं इनकी फलों की बिक्री के बारे में और साथ ही साथ बिकवाली से होने वाले मुनाफे के बारे में।
1: बाग में तैयार होने वाले फल सीधे बाजार नहीं भेजे जाते, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मंडी में दिए जाते हैं, जहां इन्हें अपने फलों का वाजिब दाम मिल जाता है। मंडी में देने के कारण इन्हें कई समस्याओं से बचना आसान हो जाता है, साथ ही फलों को आसानी से कई राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। नायक दंपति बागवानी करके सालाना 7 से 8 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। वहीं आगे की रणनीति पर प्रीति जी का कहना है कि वो भविष्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाएंगी।
11: एग्रीकल्चर मतलब वो चीकू और आम में भी जो घर पे लेडीज लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पे आके मतलब कुछ भी मतलब चीकू का वो प्रोसेसिंग करके घर पे वो चिप्स बनाकर उसको सुखा कर उसका मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं। और कैरी का भी वो जब हम लोग को पक जाती है तब हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो उसका भी प्रोसेसिंग करके वो हम लोग उसमें भी थोड़ा अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो हम लोग को ये काम करना चाहिए कि जिससे हमें वो पैसे मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके।
0: नायक दंपति की इस सफलता के पीछे कृषि विशेषज्ञों और साथ ही साथ सरकार का किस तरह का योगदान रहा है, आइए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
1: विपुल जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से पूरा सहयोग दिया है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है, चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव। विशेषज्ञ मोबाइल के माध्यम से और जरूरत होने पर खुद भी खेत या बाग का मुआयना करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं।
2: सरकार की तरफ से ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है, वो पाइप पे भी मिलता है सब्सिडी, और वो कैरेट है ट्रैक्टर का जो औजार है उसमें भी सब्सिडी सरकार देती है, खातर पे भी देती है सब्सिडी।
8: अभी हम सराव जो गांव है वहां पे है, यहाँ ये सराव गांव जो है जलालपुर तहसील में आता है, नवसारी जिले की, और ये गुजरात में है। और यहाँ जो श्री विपुल भाई नायक और श्रीमती प्रीति बेन के फार्म पे है, इन्होंने इनके पास 30 बीघा जमीन है और इस जमीन में इन्होंने 600 जो पेड़ है, ये काली पत्ती जो चीकू की वैरायटी है उसके लगा रखे हैं, और 150 जो पेड़ है वो आम के लगा रखे हैं जिसमें केसर वैरायटी है, और जो काली पत्ती वैरायटी चीकू में और केसर वैरायटी जो है आम में यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। और इनका जो भी ये उत्पादन होता है चीकू का और आम का, ये सारा अब्रामा जो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मंडली है वहां पे देते हैं, और वहां से ये देश के विभिन्न कोनों में जाता है। और जो विपुल भाई जो है अपने जो बगीचे में इसको दो बार जुताई करते हैं, एक बार अक्टूबर में, दूसरी बार मई में, और इसको मेंटेन करते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे महिलाओं के एक ऐसे समूह से जो प्रसंस्करण का दामन थामे हुए हैं और इस क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
4: जहां जाए रिश्ता बढ़ाए।

0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको महिलाओं के उस समूह से रूबरू करवाते हैं।
1: गुजरात में जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है वो भी अपनी किस्मत लिख रही हैं, वो भी खाद्य प्रसंस्करण करके। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक महिला समूह से हुई जो कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाती है और भी उन्हें मेलों दुकानों के माध्यम से बेचती है। करीब 10 से 12 महिलाओं का ये समूह पापड़, कुकीज, हेयर ऑयल, कुड़ई, चकली जैसे उत्पाद बना भी रही है और बेच भी रही है। इसके अलावा वो दालें, मोटे अनाज और चावल की पैकिंग करके भी बाजार पहुंचा रही है। समूह की एक महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो किसानों से अनाज लाती है और उन्हें साफ करके पैक करती है। वो बताती है कि उनके पति पेशे से वाहन चालक है, ऐसे में घर की जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती थी, लिहाजा सुनीता ने खुद इस समस्या का समाधान निकाला और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लग गई। आलम ये है कि उनका उत्थान ग्राम सखी संघ सालाना 12 से 15 लाख कमा रहा है।
2: हमारे यहाँ पे केवीके में नीतल बेन करके है और नीतल बेन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि आप ऐसे सब प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे मेन रागी है सर, हमारे यहाँ पे रागी होती है, तो ये रागी की प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसमें से कैल्शियम कैसे मिलता है, सब यो सब हमको समझाया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब बनाना चालू किया। हम लोग खाली समय में 10 बहनें मिलके ये सब काम करते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है क्रिमिसा सखी मंडल। हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर मिलके हम लोग सब ये प्रोडक्ट सब बनाते हैं, जिसमें नागली की बिस्किट है, ये सब नागली का पापड़ है, सब ये चकरी है और ये गेहूं की कुड़ई है और ये साबुदाना है और उसकी चकरी है और ये नागली का बड़ा पापड़ है और ये सब चावल है, आटा है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब है। हम लोग ये खेडू से लेके आते हैं और साफ सफाई करके हम लोग मेले में सब बेचने के लिए जाते हैं।
1: सुनीता के सफर में उनकी बेटी भी सहयोग कर रही है, हालांकि वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, इसलिए उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री करने के क्षेत्र में जानकारी ले रही है।
3: मैं एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के मार्केटिंग सीखने वाली हूँ और उससे ही मैं अपनी मम्मी के साथ इस क्रिमिसा सखी मंडल में भी हूँ, उनकी हेल्प भी करती हूँ और साथ ही मैं मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब ज़्यादा ए और वो मैं वही सीखना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में जाके। हम यूथ से ये कहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम भी कर सकते हो और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, जैसे मतलब बहुत सारे स्कोप है, उससे आप अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये दूसरा काम भी कर सकते हो जिससे आपको इनकम भी मिलेगी और आपके पढ़ाई में भी आपको वो काम आएगी। तो हम वघई ट्राइबल्स में है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है और फिर ये सब शुरू किया, मतलब ये यूथ शुरू किया कि उसमें महिलाएं सब काम करे और उससे वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करती और फिर काम करके वो मतलब आगे भी गई है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक गई है वो सब, और हमारी जो पहले की स्थिति थी और उससे हम कहीं बेहतर हो गए हैं और उसमें ही हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं।
0: महिलाओं के ऐसे समूहों को केवीके का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी तो हमारी महिलाएं कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं।
4: नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का ये वघई कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी के तीनों मैंडेट्स जो है, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन, उसमें काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस और केवीकेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए हम चला रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मशरूम का हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें हम स्पॉन प्रोडक्शन, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। नर्सरी का बहुत बड़ा यूनिट है तो उसमें भी हम नर्सरी की ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कम्पोस्ट का यूनिट है तो वर्मी कम्पोस्ट में भी हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, और हमारा जो केवीकेज है कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी फार्मर्स के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके फार्मर्स को हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में, हर सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एरिया बाम्बू का है, फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो बाम्बू की भी हम हमारे नौसर में बाम्बू यूनिट है, उसके माध्यम से उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट दो दिन तीन दिन वन वीक की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ये सेंटर इंडिया में भी बेस्ट सेंटर में भी अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो काफी प्रचलित और बहुत सारी और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये सेंटर ने एक गिरा नाम की वैरायटी मिलेट की नागली की बनाई है जो हमारे मोदी साहब ने एफओ को दान की है। तो ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, जिंक रिच वैरायटी है। तो यहाँ पे नागली जो है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, स्ट्रॉबेरी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्मर्स से करवा सकते हैं। तो हम पॉकेट ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ जो कुछ स्कोप्स है तो हमारे केवीके के माध्यम से हम उनको उन तक

0: थे और उनके उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की ट्राई करते हैं।
1: तो आज के कार्यक्रम में देखा आपने कि बागवानी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की जा सकती है। संसाधन भले ही कम हो लेकिन अगर कड़ी मेहनत की जाए तो इसमें भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसानों से मिलकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और साथ ही हम भी वादा करते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना है तो कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: रीडिनिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो एवरीवन, myself Ritika and I have given my 12th exams. I'm coming from since last 1 week to Read India NGO, and I'm here coming to getting education about computer, that is Photoshop and hyperlink, that all. It is a very big center and it contains many mini centers for parlor, for library and for many, you know, stitching complexes and all. The environment nearby is very interesting and very, you know, it's very competitive. You will get very inspiration and you will able to achieve very high after coming here, after coming to this center. And my main aim for coming here is to get more advanced education and want to tell my friends that there is no limit for girls to education. You can come here and get education in every fields. Moreover, basically I am inspired by my cousin because she was coming from last 3 to 4 weeks, and when I talked to her, she just tell me that the environment is very friendly and everyone is, you know, more competitive, and you will get more strength to succeed in your life. And I want to tell everyone that please don't stop girls to education. Just be just make them free and go forward and achieve their goals. Thank you.
0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने आईटी बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
4: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन अकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। This academy helps to be a woman independent. Read India starts TAG program for girls and women only to improve the bad condition for women. And it helps us in form filling, and also we helps our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
5: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute, रजौरी गार्डन। और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है। फाइनली मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं, तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मतलब जितना बढ़ो आगे

0: सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया पास आउट हो गया स्कूल शादी कर दो ये है वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से। ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
1: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं, पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकें

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरे भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर चार लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी। सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों, रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ, नाक, कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपुए को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्य क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे तो ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गांव में या NCR के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 12th, 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट महिपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद ही, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है,
जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर ITI, वो क्या करते हैं ITI भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो ITI है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो ITI आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं, NCERT

ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं. ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है. तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया. ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं. ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है. बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता. इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में. डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं. अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? देखो, डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं. वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं. वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं. साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना. जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं. आप देखो, मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है. ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं, लेवल वन लेवल टू. और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें. कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है. मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे, हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं. ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका, माने मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं. तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी. तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं. इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं इधर करियर. SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए. तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है. अगर आपने ये किया हुआ है, SEO का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए. हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम. मैं आपको बताऊं, जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है. हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है अभी, इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं. आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे, चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए. मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें. ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है. हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया,
अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे।

0: एक तरह से ये हमारी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ, किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है। तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना एनसीआर एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी भी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे ये कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूँ, जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है, अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे, और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th-10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है। किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया, जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही डीटीई केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी, गेल, इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ओएनजीसी में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की, तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर,
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। अपना सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक आप स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मैं है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्टेंस-ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लैंड हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिसे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आम तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की रिपीट नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

0: अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बार ही बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस इट टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते, या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए। तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो आप क्या कर रहे हो। लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है, ठीक है? जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू, ठीक है? तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are underwater, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए। और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स। उसमें गैप क्या था? जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रिलिश यू रिलैक्स। अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए। पैसे से हमने खाना खरीद है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है। किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है। पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ। तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप। कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन। वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू, लीडिंग यू टू योर गोल। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स, यू नीड डिसिप्लिन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम अगेन एंड अगेन। जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते, उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है। पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन। वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते। वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ। कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होते, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए। सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है। बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन, सक्सेस इज कॉलिंग। आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो ये तीनों पॉइंट्स पे, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट डिवोट करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं।
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी। हमें बहुत ज्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने जैसा बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमें ये चीज नहीं हासिल हुई, तो उसके लिए हम क्या करें फिर?
0: एक तो जो मैंने पॉइंट बोला है ना कि आप लिखो जरूर आप क्या कर रहे हो, दैट इज रेफरेंस बैक, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। और जब हम नहीं एनालाइज करते, स्मिता मेरा सेशन अटेंड कर रही है, हम दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं और स्मिता आपको बता सकती है कि कितनी बार मैं ऑफिस में कोई गलती होती है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, I'm not saying that you correlate with your thing, but this is the practice I do every day, almost every day. और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में वो कोई इलॉजिकल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि। तो व्हाट आई एम डूइंग, ए आई एम रियलाइजिंग वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई से दैट वी शुड रन राइट। सेकेंड पॉइंट, आई एम डिस्कसिंग माई मिस्टेक विद एवरी वन, प्लीज टेल मी वेदर आई वॉज रॉन्ग और नॉट। और क्या मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने साथ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं। नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स बैक। और वो क्या चीज है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं राइट। मैं भी ये गलत करती हूँ, मैं बहुत बार ही सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज थ्री थिंग्स विथ माई ब्रेन एज वेल एज माई माइंड। और मैंने अभी बोला है ब्रेन और माइंड नेगेटिव बहुत स्पीड से भागता है, पॉजिटिव की लेस स्पीड होती है, और इसकी रेशियो होती है 80:20। 80% तो नेगेटिव चला जाता है, हमारा माइंड सेकेंड्स में नेगेटिव चला जाता है। पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखें, और ये प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है। मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है, तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ, और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये आपके हाथ में। Am I able to answer your question?
1: Yes, ma'am. Very right. मतलब बहुत ज़्यादा useful. Thank you.
0: तो ये प्रैक्टिस से आएगा अकबर। ये अभी तो 3 हफ्ते हुए आपको ये सेशन अटेंड करते हुए, और आपको ये चीजें शायद, पहले हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं, तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ राइट।
1: यस मैम।
0: और किसी का कोई क्वेश्चन, और जो मैंने अभी बताया है आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ, या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हर एक लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए, तो ये मेरी कोशिश होती है, तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में। अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे, और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे, तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ मदर आई कैन वेरी वेल कोरिलेट माइसेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बीइंग अ फादर ऑल्सो in future you can also very well correlate with this story. To ek jo baby giraffe hota hai gaon mein, Seema can very well correlate kyunki wo ek forest ke sath rehti hai. To hum ek baby giraffe ki mother se ye story sunte hain, aur jab baby giraffe paida hota hai na, to giraffe to bahut uncha hota hai, to jab baby womb se nikalta hai to wo patak karke zameen pe girta hai, chot to usko tab lagti hai,

उसकी वो जो गोल बॉडी, जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोज कि जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइम कर ली, अपने बच्चे को पैर करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। सीइंग द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अनदर किक इज गिवन टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग। फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के। यू कैन इमेजिन द जिराफ हाइट, वो इतना ऊपर हवा में फेंक के वो फिर न्यूबॉर्न बेबी को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से, कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ, तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सेक्रीफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है। और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए। आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाएं, ठीक है? और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा, अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लेपर्ड को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे, तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश, एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा, उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग, आपको पता है, फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं। और ये जिराफ जो है, मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट? सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आर हैबिट, आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है। हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज, तो वो उसी को ग्रहण करता है। तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है। अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो कैकून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती हैं, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी कोरिलेट करती है इन सब बातों से। आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट। वी लिव सच प्रोटेक्टेड केकून, लो रिस्क

lives in our early years that we are not quite prepared for the big bad word, then we enter it. आप समझ के हमने एज रखी हुई है लड़कियों की 20 से 45 साल तक. अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते. और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं. हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडिली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं. हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं. तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए. यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर. उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है. शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट? आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए. अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए. सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, द डे यू स्टार्टेड वर्किंग विद दिस वुमन एंड यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. सो वी नीड टू कन्वर्ट आवर हैबिट्स टू आवर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वैल्यूज. Akbar, this sentence is for you. This is the answer for your question. Hamara jo 80% mind negative chala jata hai, usko hum positive kaise kare, usko values ke saath kaise convert kare, aur within our culture, how we can focus on values, keeping in view the passion, hunger and discipline. Is it okay? Aage badhe. ये मेरी लास्ट स्लाइड है. लेसन्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी को रिलेटेड विद लीडर्स. स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही विद इन वन आवर ऑफ हिज और हर बर्थ उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है. और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं. अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था. बहुत सारे स्टालवर्ड्स, जेआरडी टाटा, एसपी गॉडरेज, सिंघानिया, ये वो सब बहुत लीडर्स, मेन भी वुमेन भी. We were just protected children in front of them. बहुत हमें प्यार करते थे, नर्चर करते थे. I'm talking about when I was 30s. शादी में मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी, उषा इंटरनेशनल, नहीं PFI में, पता नहीं, I don't remember that years now. But मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी पर हम इकट्ठे करते थे, पर जब मैंने वन वर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था. एंड माय फर्स्ट ट्रैवल वाज टू नेपाल. फाइन, नेपाल में कंट्री ऑफिस था, बट श्रीलंका हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी पर कोई ऑफिस नहीं था. अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी. फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुंचती है और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है. मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव कर रही हूँ. यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माय माइंड. आई वाज सो स्केर्ड, पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में, मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी, ठीक है भाई अब पोजीशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है. ट्रैवल कर रहा और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो, जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस.
And they booked me in a house of a Tamilian family where one lady was staying alone. That lady was old lady. Okay, fine. I reached there by 3:34 early morning, very early morning. Khola darwaza saamne itna bada sher babba jaise dog. Aur main to dog se itna darti hu ki ओ गॉड, मैं तो पूरी रात अपनी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है. तो दीज वर एडवर्सिटीज फॉर मी, आई एम शेयरिंग द लाइव एग्जाम्पल विद यू. वो औरत, मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की, अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा. देन आई कॉल्ड माई डायरेक्टर देयर कि सी आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, आई एम स्केर्ड ऑफ द डॉग, सो प्लीज कॉल द ओनर ऑफ द हाउस एंड टेल हर टू कीप द डॉग इन द बैकयार्ड सो दैट आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव दिस प्लेस. दैट्स हाउ आई सॉल्व माई एडवर्सिटीज. और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ये तो एक एग्जाम्पल, मैंने बहुत लाइट एग्जाम्पल दिया है. टू रीच टू दिस लेवल टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन राइट बुक्स एंड बुक्स ऑन द एडवर्सिटीज आई फेस्ड. मैनी एडवर्सिटीज, मैनी एडवर्सिटीज, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो इट्स नॉट, द जर्नी इज नॉट ईजी. So, were they always successful in all they did? No, big no, capitals. हमेशा तुम गलतियां करके ही सीखते हो. Did success come to them quick and easy? No, not at all. आज मैं क्यों मैनेज कर पा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, कि मेरे पीछे कोई थ्योरी की नॉलेज नहीं है. प्रैक्टिकल नॉलेज है combination of my academic knowledge, तभी मैं कर पा रही हूँ. तो एक्सपीरियंस, सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. तो हमें कभी भी हारना नहीं है. सो देयर इज अनदर फेदर इन योर कैप दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एनजीओस. फ्यू ऑफ द सेंटर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड बियॉन्ड 5 years एंड रेस्ट ऑफ द सेंटर्स वी विल डिस्कस 1-to-1. तो यू आर गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 10 years, यू विल बी द लीडर्स. मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा. पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे, बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी. आधा आप सीख रहे हो और आपके लिए जर्नी तो बहुत इजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? व्हाट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल. ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है. द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स. द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन. देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल. ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो. बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल. किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले. वो सिचुएशन ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ. लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्पेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए. अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है.
That is the critical life skill that all successful people have internalized. और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ, अपनी अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो. बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट. मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में. पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन है कुछ हद तक. मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बट यस मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ. मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी. और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी. दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से. आई एम लुकिंग एट द वॉच और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ. और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा। इस बुद्धू की तरह बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिये, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहां जहां वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा, जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: हाय, वेलकम एवरीबॉडी. दिस इज सेशन ऑन लाइफ स्किल्स. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है, स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं. तो ये जो सेशन है, ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है. तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है. वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती है. तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से. सो वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ. कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले.
1: नो, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
0: आई
1: सेशन
0: ऑल्सो
1: है
0: नो
1: लाइफ
0: दैट.
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं. कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर.
1: वेलकम मैम.
0: किसी और ने अनम्यूट किया था अभी? तना जी,
2: हेलो. हाँ जी मैम, मैं चांद खान बोल रहा हूँ.
0: चांद बताएं.
2: मैम, जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिस जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा. हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं. लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है. तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है. एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं. अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा, अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है. तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं, ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं. और किन चीजों की जरूरत होती है? हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे. मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे. फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल, कि मतलब बेसिक चीजें. क्या हमें बेसिक, क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके, बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें. तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल. उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे. और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें. हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए. तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है. तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हमें बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके. बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है. इसकी आप अगर नेट पे जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं. तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से. बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे. हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर, अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है. पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं. अगेन, चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे. तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं. जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें. हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें और कॉपरेशन में बात करें. तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है. अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है. जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है. तो इनको हमने कई, अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी. लेकिन WHO ने 1999 में ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को, उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड की उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल. दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली. कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल. कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं या फिर हम लिखित में कर रहे हैं. जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं. तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे. अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़ें, उसे भागों में तोड़ें और उसका सॉल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेव करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग, अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं, अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं। बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योर सेल्फ, सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाए। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गन जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बेहतर रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, वी हैव टू कीप मूविंग अहेड, व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पैथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात अगर
2: तो
0: आपको लगता है
2: मतलब
0: आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के टाइम में है इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेट्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसके उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे, तो दैट इज अ रेजिलियंस एज की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सके हैं, किसी भी 6 इनमें से कोई भी 6 में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर, तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में। जो हमने 6 लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इन इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंटर पर्सनल करेगी, स्किल हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो, लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल्स हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो

0: दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ये पहनता हूँ, ये पहनती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अलग हूँ लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है। अगर आप खुद से प्यार कर भी, यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें। क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे। ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए। हमें ना कहना भी आना चाहिए, लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज में हाँ ही कहें। अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, तो ये आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है। मेरे वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर। जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप से अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है। तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं, लेकिन फिल आपको करने हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन 1 ले सकते हैं या ऑप्शन 2 ले सकते हैं, बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन 1 लिया है या ऑप्शन 2 लिया है, और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है, आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है। ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है। दूसरा ऑप्शन है, आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है, मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है। तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबडी, सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रैंडमली पिकिंग अप द पार्टिसिपेंट्स। ओके, शैल वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम, आविदा कलकर सेंटर से. हेलो
0: जी,
1: मैम.
0: जी बताएं, आपकी आवाज एक हो।
1: जी मैम, मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और बस मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ.
0: जब आपकी मेहनत आप कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं।
1: जी मैम.
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई बताना चाहे?
2: मैं आई स्पीक मैम. सीमा
0: हाँ
2: बात
0: जी,
2: कर रही
0: सीमा
2: हूँ.
0: जी।
2: आई हैव रिटन, आई लाइक हु आई एम बिकॉज आई गिव वैल्यू टू रिलेशनशिप, वेदर इट इज माई प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिलेशंस और माई पर्सनल बोथ, एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई कंप्लीट माई टारगेट। अगेन, वो मेरे घर की कोई चीजों के हों या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी हो, जब मेरी चीजें पूरी हो जाती है तो आई फील सो रिलैक्स्ड एंड आई फील सो हैप्पी फॉर दैट।
0: तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जब जो आप इनमें यूज करते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ?
2: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: नाउ वी कैन हियर यू।

0: हेलो, एम आई ऑडिबल?
1: हाँ जी, आप ऑडिबल हैं?
0: हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा.
1: ओके, नो प्रॉब्लम. वी मूव
0: आई थिंक आई यूज माय प्रेजेंस ऑफ माइंड.
1: प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, वहां नेटवर्क इश्यू आ रहा है. वी मूव ऑन टू समबडी एल्स. कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा इन दोनों ऑप्शंस में से? इसने क्या लिखा है?
2: मैम शैलजा हियर. मैम
1: जी शैलजा मैम.
2: मैम आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम रियली विद अ स्मॉल किड्स बिलो 5 इयर्स टू लिसन टू देयर ब्यूटिफुल टॉक दैट बेबी टॉक और व्हाट एवर इट इज. एंड आई ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई कैन डू समथिंग फॉर समबडी. इट कुड बी अ स्मॉल हेल्प और कुड बी अ स्मॉल एडवाइस व्हाट एवर इट इज. इट
1: What
2: गिव्स मी वेरी
1: kind of
2: फूल.
1: life skill do you think you are using? ऐसी कौन सी चीज है जो
2: आई
1: आपको
2: थिंक
1: help?
2: आई
1: Positive
2: थिंक पीपल
1: thinking.
2: आई डिडंट गेट यू मैम.
1: आप ऐसी कौन सी life skill यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह की ऐसी एक essence है आपके अंदर जो ये चीज आपको happy करती है?
2: आई थिंक इट इज समथिंग इमोशनल मैम.
1: It's emotional. Okay, very good. Thank you.
3: गुड आफ्टरनून
0: दैट
3: मैम.
0: कैन बी जॉय जॉय ऑफ गिविंग मैम.
1: Joy of giving,
2: जॉय ऑफ
1: very good.
2: गिविंग इज.
1: Yes.
3: गुड आफ्टरनून मैम.
1: Good afternoon, जी.
3: इट्स दिव्या.
1: अंजी दिव्या.
3: I like who I am because I have some different abilities. Like I can easily connect with people.
1: Very good, very interpersonal skill है जो हमने सबसे पहली skill पढ़ी थी. आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब इसको आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने में?
3: Yes, ma'am. Because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
1: ओके,
3: यस मैम.
1: ऑल राइट, थैंक यू दिव्या.
4: गुड आफ्टरनून मैम.
1: गुड
4: मैम
1: आफ्टरनून
4: दिस
1: जी.
4: यस
1: मार्गरेट.
4: मैम आई फील हैप्पी व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग टू अदर्स लाइक ए सोशल पीपल स्टूडेंट एंड सेंट बेनिफिशियरी. सो द थिंग इज मेन थिंग इज हैप्पी इज टीचिंग मैम. इट इंक्लूड्स सोशल स्किल इंटरपर्सनल एंड माई पर्सनल स्किल मैम.
1: तो आप खुश होते हैं? यू आर
4: या मैम.
1: हैप्पी. मार्गरेट ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए, जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं. करेक्ट मार्गरेट?
4: यस यस यस मैम. यस
1: ऑल
4: मैम.
1: राइट ऑल राइट. थैंक यू मार्गरेट.
4: वेलकम मैम.
5: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढी लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो.
1: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो तो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं. ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर. इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा लगता है. ऑल राइट, थैंक यू
6: मैम. मैं बोलना चाहूंगा चांदना
1: जी. बताएं
6: मैम. आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली.
1: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब आप
6: यस
1: खुश हो जाते हैं.
6: जी मैम. जी मैम.
1: ठीक है जी. ठीक है, थैंक यू. कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
7: गुड आफ्टरनून मैम.
1: गुड आफ्टरनून. हाँ जी
7: मैम. मैं देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ.
1: हाँ जी
7: मैम. मुझे मैं रीड इंडिया में स्टिचिंग ट्रेनर हूँ
1: जी.
7: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते.
1: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं.
7: हाँ यस मैम.
1: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं. ये बहुत
7: बच्चे जो आते हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, जब फ्रेंडली बात करते हैं, जब फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है. तो मिलजुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे.
1: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो आप
7: हाँ
1: करती हैं कॉन्फिडेंट बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने. All right, thank you so much. So we'll stop here, taking more. हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए. सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं। हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन। तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है। तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं। जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन तब क्या है? किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं? कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है। ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए। आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इन चार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इन चार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से, क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल दैट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद, इंटरैक्ट विद अदर पीपल। कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स आवर एबिलिटी टू टेक एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम टू द अदर्स इन अ मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हमारी एबिलिटी डिफाइन करती है कि हम कुछ आइडिया को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें और दूसरे को वो समझ भी आनी चाहिए। आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है। आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं। इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं. जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है. जो ये हम शब्द शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है ये सिर्फ इंसानों के पास ही है. जो हम एक जगह से अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ तो ये एबिलिटी जो है ये हमें सबसे अलग करती है. चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है और विद इन ह्यूमन बींग्स भी हम सेट अपार्ट हो जाते हैं. कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे संदीप महेश्वरी के देखे होंगे या फिर किसी गुरु के देखे होंगे या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे. कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए. क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है. वो हर चीज को साथ लेते हुए चाहे नॉलेज है उनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस रीडिंग जितना आप पढ़ेंगे जितना शब्दों को समझेंगे जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे. कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का. जितना दूसरों को सुनेंगे उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं. ये स्किल बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होने होती हैं. स्पेशली जो राइट रिटन कम्युनिकेशन है ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है. तो जब आप अपने बेनिफिशियरीज से भी बात करेंगे जो स्टूडेंट्स रहेंगे आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं. जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी. बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए. बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से हम हाव भाव का जो हाथ हम हिलाते हैं आंखों का हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से. ऑडियंस चाहे एक हो चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को. तो किस तरीके से हमें बात करने किन शब्दों का ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं. बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का. यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है सेल्फ प्रैक्टिस लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू चाहे वो हिंदी में है इंग्लिश में है एनी अदर लैंग्वेज हूसोएवर इंस्पायर्स यू एंड किताबें पढ़िए. और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आदत नहीं डालेंगे यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर. द मोमेंट यू नो यू स्टार्ट आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए फोन तो अभी सभी के पास है आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं. एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजीली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं सुनने से कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली रिटन कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं या अपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं उसमें हमारी मदद करती है. तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे ये एक पहली स्किल होगी. कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी जो कि IAS के तैयारी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी. तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे. IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है बट ओरल एग्जाम भी होता है. क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं आप आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो घबराइए नहीं, ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा. बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट, किसी जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है. जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है. वो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक एक सेंट्रल पोजिशन पे आना. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है, नेगोसिएशंस में बहुत हेल्प करती है. किसी किसी सिचुएशन में जब आप पढ़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है, तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है. कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं तो मुझे लगी ये सरल भी हैं और ये हेल्प कर सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए. तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें. टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए. जब आपका फ्री टाइम होता है 5 मिनट, एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में. ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है, बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं. तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है, जो ये चीज जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं, जो कि टेड टॉक्स में है. तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है. और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में. सो इफ यू वांट वी कैन गो डीपर इनटू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे. तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइव से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं. सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस. सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी कैन शेयर, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं. पैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? डू यू थिंक?
8: आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग, इट्स अ वंडरफुल सेशन एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट लाइफ स्किल्स आर डे टू डे लाइफ. What we do, how perfect we are, how our behavior is, and how our attitude is. So these all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session. I would like to say that. My only request to all everyone is that they must practice it. Because this is purposely added into our program activities, because we don't want to focus on only livelihood, beauty and culture, education. Because unless and until your personality is evolved, you will not be able to achieve anything. So these were very well thought of and added. And we are not the experts, as Smita has said. But हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसको हम अपनी सोच को उस तरफ भी लेकर जा रहे हैं, right? तो ये वैल्यू भी ऐड करता है, हमारे काम में भी वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें. इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है, राइट? तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए, 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर
8: टेक केयर, बाय बाय.
1: All right. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल, ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और अब ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेंट्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा?

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जायसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जायसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में भी देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है, फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि एक 1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंद बुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंद बुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी। हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की ही जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना। और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से। तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है। इसका नंबर है 011-264-6650। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-6650। ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी, इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है. लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे. जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं. मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है. सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है. सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है. और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज. तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है. इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है. और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं. रीडनिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है. वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15-15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं. शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5-10 सालों से जुड़े हैं. तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है. और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा. कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों

0: सीखना चाहती हैं। आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था, उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम
0: ओके
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आवर डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो 4-5 लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास 2 सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं। क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स, कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून स्वाति जी।
2: मैम, एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास रहते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 टू 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट, थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं।
3: लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद करके लाइट्स आ गई है ना, ये यूपीएससी का
0: तो
3: यूपीएससी का।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल्स हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता. बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली. सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं आपको नहीं जाना है, सेंटर पे नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम

0: इसके लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
1: बिल्कुल
0: बेनिफिशियर्स मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं। दरअसल आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
1: राइट
0: क्या आप बता
1: राइट
0: सकते हो? कोई भी
1: गुड आफ्टरनून
0: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं।
1: ऑल राइट थैंक यू सो मच थैंक यू
0: दामिनी आप
1: सो मच
0: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून
0: हाँ, मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आती हूँ।
1: तो रीड के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत
0: हाँ,
1: सारे
0: सीख
1: खुले।
0: भी रहे हैं उसके साथ नए नए डिजाइन में, मतलब सीख रहे हैं, जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
1: अच्छा
0: बताओ,
1: अच्छा
0: प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे भी कमा रहे हो उस टाइम? हाँ, काम
1: अच्छा
0: करके पैसे भी मिलते हैं।
1: अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसलिए आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का
0: हाँ
1: काम
0: हाँ
1: भी आ रहा है। वेरी
0: जी,
1: गुड वेरी गुड थैंक यू ज्योत्सना जी। यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
0: हाँ जी मैम। हेलो मैम,
1: हेलो
0: आप बोलिए, बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जो मुझे
1: सुमन जी,
0: स्टूडेंट्स
1: सुमन जी आप म्यूट। हाँ
0: जब आते हैं यहाँ पे, वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं, और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखते हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
1: राइट
0: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
1: वेरी नाइस थैंक यू जोत्सना जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम, लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। इतना एनर्जी था, पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए, यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो। ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई विल जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑल राइट सो टीम वर्क, यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीख

0: ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीड जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है, ठीक है अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते, अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया, या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही। बोले नहीं, मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया, या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है, लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है। तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है। अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतू तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया, लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना। तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइंड नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो दो तीन लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू यू नो इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑफ योर स्क्रीन, आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन, जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस। यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा, तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे 3-4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं ये चीज, हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है। लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वी हैव टू एज अ टीम लीडर हमें उनको फीडबैक देना है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की। बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है। हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट टॉलरेंस टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले, या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी,
0: मुझे
1: सुनी है मैम, सबने
0: सबने
1: किया मैम।
0: सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं, इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान है, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे, उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है, ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को, तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं। क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रिडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है, या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो है बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती हैं वो कौन सी हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है, भाई बहुत अच्छे से किया लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है, ये जो सेंटर हमने खोला है इतनी जगह पे, जो हमारा सेंटर है किस लिए क्यों काम कर रहा है। और
1: हेलो,
0: हर,
1: मैं स्मिता
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: जी. मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी. अभी मैंने
0: मैं एक मिनट अपना
1: अल्टरनेट
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स. तो व्हाई सनफ्लावर? सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ की जैसे साइड पे सन मारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके. एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने ये सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी. तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जहां तक वो कर सकते हैं वो करते हैं. जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं, तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हमें हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क. आई जस्ट वांट टू
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी. अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी. आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग. मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे. जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे. आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है. वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम. सो दैट वाज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे. बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी. पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे. और जब अगर शादी हो जाती है स्पेशली फॉर लेडीज महिलाओं के लिए, हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है. क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो. लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं. सो इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके. मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख. जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें. बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं. और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं. अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा. इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है आप प्लीज मत आइए इस सेशन में. ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं. सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं. ये जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है राइट? वो क्या जोक चल रहा था, फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर राइट?
2: सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। जूम ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं। या मैम, बट एज अ लीडर मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट
2: इसलिए
0: हमने
2: मुझे
0: खेल
2: मैम,
0: बहुत
2: या मैम दैट नॉट
0: अच्छा
2: जोक मैम,
0: पॉइंट, बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक नहीं
0: पॉइंट.
2: करा। यस सर, क्योंकि
0: नहीं
2: मैंने
0: मैंने
2: ये
0: ये
2: गलती फील की कि मुझे
0: नहीं
2: इन्होंने किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो मेंबर्स
0: प्रॉब्लम,
2: हैं उनको भी लगा कि हाँ। तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा
0: नो
2: कोई
0: नो सॉरी
2: बोल
0: की
2: कर
0: बात ही
2: इसको
0: नहीं है, मुझे
2: नो
0: लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो हमें भी
2: नो
0: बोला
2: मैम,
0: जाए. तो
2: नहीं
0: मैंने
2: मैम,
0: इतना ही बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
2: या
0: बोला
2: मैम,
0: था,
2: या मैम,
0: मैंने ये
2: ओके
0: कहा था कि रोल्स बहुत जरूरी है डिफाइन होना हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है. ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ. तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क राइट. और कोई कुछ शेयर करना चाहता है?
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: वेरी
1: सुनीता
0: गुड
1: फ्रॉम
0: आफ्टरनून.
3: मैम, जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ, लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
3: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक
0: नहीं
3: यू
0: कर
3: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई। फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारा स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना। उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था।
3: यस मैम, यस मैम।
1: हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड
1: आई एम फाइन मैम।
0: दैट आपने ज्वाइन किया है।
1: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है।
1: मैम, हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे, तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे, तो हमने घर वालों के साथ बात की, तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को। देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम, और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
4: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो जैसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में हमें अच्छा लगता है। थैंक
0: अच्छा
4: यू।
0: ठीक है, आपको सबको मैं देख रही हूँ, काफी सारे यंग बच्चे हैं। सो
1: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर। तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ यू नीड। हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
3: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी,
3: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है, टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए। थैंक यू।
0: थैंक यू। मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली ये जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है। तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग। वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा, मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते, है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
0: बिल्कुल
1: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी यार, कि स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को तो यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है। मैम बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड पे आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की। लेकिन आज मैं रीट इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग टीम इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट टचिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम। इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉर्पोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है। बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीट में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी। बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10-10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीट सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, 2 शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है, और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीट में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स. सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी
5: मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा और कि गरीब नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं, वहां की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, प्रो में यूथ है,
0: तो
5: तो इतना समझ।
0: इसका, हाँ इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी. मेरे पास तो महारथी हैं इसका जवाब देने के लिए. मेरे पास सीमा जी
5: मैम
0: हैं,
5: आई मीन
0: फरा
5: आई
0: है.
5: मीन
0: नहीं
5: आई मीन
0: नहीं 1 मिनट आप रुकिए. सो आई
5: यस
0: वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये
5: जी
0: तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं.
5: हाँ जी मैम,
0: सो
5: कंजर्वेटिव
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा. सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट. मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी.
1: यस मैम. एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर.
0: यस
1: तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है. वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस.
0: राइट. तो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं.
3: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो
3: आता.
0: वो ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है. अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं. वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आएं या महिलाएं आएं या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए.
3: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे. इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा. और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं. 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ. तो हम
0: एक्चुअली
3: वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनके उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किसने खुला है. लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा. और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए. जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे.
0: थैंक यू
5: मैम
0: फरा.
1: जी, नमस्ते स्मिता जी.
0: नमस्ते नमस्ते. थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को यहाँ पे, इनका
1: जी
0: नया
1: जी जी
0: सेंटर खुला है.
1: मैम. हाँ देखो, सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हम एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने. हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें. कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता. फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है. और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं, उनमें एक अलग ही चेंज होता है. तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो कि इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है.
6: जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू, थैंक यू मीना जी।
7: लगाइए सर कि वहाँ लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती, या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का, क्योंकि हमने नहीं
5: एक्चुअली
7: देखा ना।
5: एक्चुअली मैम टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, थोड़ा सा जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम उनका चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
1: आप एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले
5: जी।
1: एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग चलते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उसे फोकस करते हैं। आपके वहां देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, तो अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और लेडीज को,
5: और
1: लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ, दैट विल बी
7: आपकी
1: मोर
7: किटी
1: इम्पोर्टेंट।
7: ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहां स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारी किस काम आने वाली चीजें, तो
5: एक्चुअली
7: थोड़ा सा
5: मैम
7: एडवांस भी रखिए।
5: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैंने ये भी कहा कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ, आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या आपके कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हाँ मैं
7: हाँ,
5: अलग से बोल
0: आप
5: रहा था।
0: म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं।
2: ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया, हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
0: थैंक
2: या
0: यू, ये टीम वर्क का
2: मैम,
0: बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने, सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं है और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
2: आदित्य श्रीवास्तव,
0: आदित्य,
2: आदित्य
0: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
1: यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, दोज
1: मैम,
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है। शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस.
6: यस
3: गुड
6: मैम, हम लोग वर्क
3: आफ्टरनून.
6: कर रहे हैं उस पर.
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू. हाँ जी ऋतु जी.
3: मैम मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ.
0: हाँ जी.
3: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था तो हमने नूना माजरा जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी. वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा. तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए. पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई. फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए. और
0: जी
3: आई नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं. तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए. और फिर उन्होंने खुद ही आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई. क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे. क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए. तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था. कि तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा. लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए. फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं. उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है. क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के. तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ
0: बिल्कुल
3: पे
0: सर,
3: आके. तो हमें
0: बिल्कुल
3: हमने
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं. थैंक
0: बिल्कुल
3: यू.
0: ठीक बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा. हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है. सो थैंक यू वंस अगेन. टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम. सो आई विश एवरीबडी सेफ. बहुत बारिश
3: हेलो,
0: कहीं हो रही है. सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना.
3: नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते.
3: मैम. मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ. वो सर से, सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है. और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ. क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं. तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा. देखना एक दिन बहुत
0: वेरी
3: अच्छा
0: गुड,
3: से बढ़ेगा.
0: थैंक यू
3: जी
0: फरजाना,
3: थैंक
0: थैंक यू. राइट,
3: यू मैम.
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय.

0: अब हमारे बीच में है मैम जो एटीटीसी से आए गुड़गांव से और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी सांवन से, बबीता सांवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती है, 50,000 फीस भी देंगे ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाते हैं और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट यस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम, वी गॉट अ
1: अपॉर्चुनिटी अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर। हमारे पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं ट्रेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली 80-100% जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे फर्स्ट बात वहां पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से भी स्टार्ट हुए आई थिंक बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है ये चीज बताइए प्लीज। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। स्विंग मशीन ऑपरेटर ही है, वेरी
2: गुड।
1: यस स्विंग मशीन ऑपरेटर मीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन है उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना सीखना और उससे रिलेटेड ऐसे गार्मेंट बनाना, ऐसी टेक्निक सीखना, वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का रोल है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल। आप भी शायद बहुत बार सुनते हो कि स्किल, तो एक्चुअल में स्किल क्या है? कोई वैसे बताइए स्किल। हाँ जी, स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आज भी मुझे लगता है 99% में श्योर हूं कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो जब आपने उस स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे, इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ सीखा। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे, मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा लेके कैसे चलाना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हूँ, और यहाँ आके जैसे उनको पता लगा कि उनका स्किल स्ट्रांग है तो आप उन्होंने ये ट्रेनिंग के थ्रू अपने उस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो जब आपने 90 डेज के कोर्स में ये सब कोर्स किया, अब आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी कंडक्ट हो चुके, आई डोंट नो मैम, तो

और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहाँ पर दो तीन टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गारमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का नीडल चलता है तब तक बिजनेस है, जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका निकल था। तो दैट मीन्स जो मशीन की नीडल वहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गारमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गारमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती, चल सकती है। तो दैट मीन्स गारमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल होनी बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनकेस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई छोटा सा ओपन करते हैं तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको मशीन चलाना आना चाहिए। दूसरा कपड़ा सीना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीम्स आनी चाहिए। सीम्स का मतलब है कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीम्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इको सीम होगी, फैन सीम होगी, माउ सीम होगी, ये बहुत सारी टेक्निकल सीम्स के नाम है। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज्ड सीम कहते हैं। हर सीम्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंड सीम जिसे लोकल भाषा में लोग फोर सीम भी बोलते हैं, जो कि आपको पूरे गारमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीम को सिर्फ सीम कर दो है ना, उसको बट उसको फिनिश कैसे करना है, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीम क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहां पर किस एरिया में कौन सा सीम यूज आपका होना है, कहां सुपर इम्पोज सीम यूज होना है, कहां फ्रेंड सीम यूज होना है आपका, कहां लेट सीम यूज होना है आपका, कहां फेल्ट एंड फेल्ट सीम यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीम, सीम मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहां यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जो जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं तो उनको छिपाने का काम करते हैं। या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं या फिर हम लोग गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम इसको फैंसी बोलते हैं। तो मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपके दो तरह के मार्केट में मशीन अवेलेबल है, सिंपल डोमेस्टिक मशीन जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं। सेकेंड आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SLLS, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल है। बिल्कुल ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SLLS मशीन तो आने भी चाहिए, ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये दो मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए। सीम क्लासेस कौन सी सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए एक स्विंग मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई, थर्ड थिंग क्वालिटी मेंटेन। क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है, जब आप कोई भी गारमेंट को स्टिच करते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं उसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब दो स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब उसको हम बैक कट बोलते हैं, तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना,

0: اوور لاک یعنی آپ کر رہے ہیں تو اوور لاک بھی پراپر ہونا چاہیے, اس کے بھی تھریڈ آپ کے پراپر کٹ ہونے چاہیے. تو دیٹ مینس کوئی بھی جب آپ اسٹچ کرتے ہو آپ کو ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوالٹی کے بعد جو سب سے لاسٹ ہے امپورٹینٹ اسپیڈ ہے نا. یدی آپ کی اسپیڈ ہے تو آپ گارمنٹ انڈسٹری میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھا وہاں سے ارن کر سکتے ہیں, کیونکہ گارمنٹ انڈسٹری میں آپ کا پیس ریٹ پہ کام ہوتا ہے, سم ٹائم پیس ریٹ پر سم ٹائم منتھلی بیسس پر بھی ہوتا ہے, لیکن پروڈکشن نکالنے کے لیے آپ کو یہ بیسک چیزیں آنی ہی آنی چاہیے. ایون آپ اپنے بوٹی بھی اوپن کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی اسپیڈ ٹیکنیک یہ تینوں چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, تبھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں آپ لے کر آ سکتے ہیں. پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے اسکل کی بات کی گارمنٹ انڈسٹری میں یا کیا اس کا ویلیو ہے, تو ہم لوگوں کی بیسک نیڈ, یعنی ہم ایک سمپل انسان کی بیسک نیڈ کیا ہو سکتی ہے, روٹی کپڑا اور مکان ہے نا. آئی تھنک سب اس سے سہمت ہے روٹی کپڑا اور مکان ہی چاہیے, یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. تو یدی ہم بات کریں کپڑا جو کہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, تو یدی ہم کپڑے ٹیکسٹائل لائن کی بات کرتے ہیں, ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا اپیرل سیکٹر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو یہ سیکنڈ نمبر پہ بھی ہے ڈیمانڈ وائز. تو یدی آپ اس میں فیوچر بناتے ہیں اور اس میں آپ اپنا ہارڈ ورک کرتے ہیں تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں, اور اپنی فیملی کو ہی نہیں آپ اپنے پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر جا سکتے ہیں. شاید شاہی ایکسپورٹ ہاؤس آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سنا ہے کسی بچے نے شاہی ایکسپورٹ ہاؤس, گارمنٹ انڈسٹری ہے شاید سر نے بھی شیئر کیا ہوگا. تو میں ان کی تھوڑی سی آپ کو اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ اسٹارٹ ہوا. جیسے کہ وہاں کی جو ابھی مین آنر ہے مطلب کہ وہ ریٹائر ہو چکی ہیں, ابھی سرلا آہوجا جی نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, اور جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا بزنس ایک آپریٹر سے کیا تھا, صرف ایک آپریٹر سے, لیکن آپ آج دیکھیں گے تو ان کی 50 یونٹس ہے, ان کی وہاں پر 11 لاکھ کے آس پاس جو ہے ورکرس کام کر رہے ہیں, 75,000 کے آس پاس فیمیل جو ہے کام کر رہی ہے. تو جب ایک آپریٹر, ایک سمپل ہم بولتے ہیں کہ آپریٹر, لیکن یعنی وہ آپریٹر بھی یعنی ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے تو آپ شاہی کیا کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے. بٹ اس کے لیے آپ کو اندر ضرور ہونا چاہیے. سرلا آہوجا جی کا نام سنا ہے, سونم کپور کا نام سنا ہے, کون ہے انیل کپور کا نام سنا ہے, انیل کپور کی جو ڈاٹر ہے سونم کپور, اور سونم کپور سرلا آہوجا جی کی بہو ہے. تو آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے آپ کو کی بہت اسٹوری ملیں گی. بٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپریٹر کو آپ سمپل نہ سمجھیے, اس میں بہت پاور ہے, بہت پاور ہے, لیکن اس کو کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کس ہارڈ ورک کے ساتھ, کس کوالٹی کے ساتھ آپ کو آگے لے کر جانا ہے وہ صرف صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لوگ صرف آپ کو آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیں گے, میم آپ کو شیئر کریں گے, ابھی میم نے شیئر کیا آپ کو کوالٹی ٹائم مینجمنٹ, یعنی آپ یہاں سے سنتے ہو یہاں سے نکالتے ہیں, تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے نہ تو ہمارا کوئی ویلیو ہے نہ ٹریننگ کا کوئی ویلیو ہے, کچھ بھی ویلیو ہے. لیکن یعنی آپ یہاں سے سن کے اور سیدھا آپ نے دماغ میں ڈال کے تو 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کورس کیا, آپ گھر بیٹھ گئے, ایک دو سمپل سمپل چیزیں اسٹچ کر دی, تو نہ تو ہم لوگ سکسیزفل رہیں گے نہ میں سکسیزفل رہیں گے. تو آپ کو اس کا ویلیو سمجھنا ہے کہ میں نے جو ٹریننگ دلوائی ہے آپ کو اس کو کہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے. ابھی 17 ایئرس مجھے سیم اسی فیلڈ میں ہو گیا ہے, ڈفرنٹ ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ میں میں نے کلاسز لی ہیں, پیٹرن میکنگ, گارمنٹ کنسٹرکشن, کیٹ کی میں کلاسز لیتی ہوں. تو میرا مین جو ہے پوٹے سوئنگ مشین سے ریلیٹڈ ہی ہے, سوئنگ مشین میری ایکچوئل میں فرینڈ ہے,
1: मैं उसके साथ बातें करती हूँ, मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ, अपनी नानी मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ। और ऐसे मैंने कितने ही जानो, हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, तो आज के टाइम में अच्छे गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बूटी फैशन स्टूडियो ओपन किया है, वो बहुत अच्छा वो रन कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट, आप क्यों? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन मैं आपने सब सिखा दिया, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गार्मेंट में इंप्लीमेंट करनी है, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, सी आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा, मेन शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपए में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1000 रुपीज में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10000 में भी मिल रही है। तो क्या रीजन इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे, बट जब भी आप कोई गारमेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गारमेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं, 100 रुपीज रखना चाहते हैं या 1000। 100 रुपीज के लिए हो सकता है चलता फिरता काम करे, हो गया कस्टमर एक बार ले लेगा, पर अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे। गारमेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है। तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है, और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा मैं आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से यू नो स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दिए, तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया। उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आई, और एक गारमेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना। आजकल तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी है, बट उस टाइम में वो नहीं थी, उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपके टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने के कुछ एक मैं छोटा सा आपसे कुछ शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कोई प्रोडक्ट, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए कि इसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होगी आपकी, SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवरलॉक मशीन यूज करनी है ना। यदि गार्मेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की। वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो निट फैब्रिक होता है, ठीक है। तो वूवन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहाँ पर कौन सी सीम लगने वाली है ना, आप ये डिसाइड करेंगे, और वो किस टाइप का डिजाइन है। तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड। क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होगी, यू नो आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली। एक क्वेश्चन कर आप यू नो दो दिन में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है। आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके यू नो टाइम लॉसेस और काफी कुछ हो जाते हैं। तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे आपके मेन फोकस करना है। और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी, बहुत ज्यादा आप गुड़गांव सेंट्रल ईजी गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग विहार मानेसर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है. स्किल्ड मतलब क्योंकि मैं मुझे एक्सपीरियंस है मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गार्मेंट इंडस्ट्री में मैट्रिक्स क्लोदिंग में मुडलामा में तो वहां असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं. बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं उनका काम देखते हैं सी बहुत डिफरेंस है. मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं उनको कोई भी कोश नहीं होता सिर्फ काम से मतलब होता है ना. और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गार्मेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा. जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग में यदि बात करो एक मेन शर्ट आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है मेन शर्ट मेन शर्ट आपने किया है जिसने मेन शर्ट करी है ना आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है. मेन शर्ट में सारी सीम क्लासेस यूज होती है कैसे कॉलर अटैच करना है कैसे पॉकेट अटैच करनी है लेग सीम क्या होती है आपकी कप कैसे बनाना है पैकेट कैसे बनाना है आप ये समझिए कोई भी गार्मेंट स्टिच कर सकता है. तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है क्योंकि आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है. तीन घंटे और किसी को कोई शेयर करेगा कितना दो
2: घंटे काम तो मैंने टाइम तो लगता है तो थोड़ा सा मतलब तीन से चार घंटे भी लग सकते हैं बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है.
2: जी मैं कोशिश करूंगी मैं टाइम मैनेजमेंट
1: टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा. यदि वो आपको नहीं पता हो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. प्लीज बैठिए एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए. अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इम्प्रूव करना है. मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से बहुत स्पीड से काम होता है आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी आप लक्ष्य निकाल ना. यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए स्पीड और क्वालिटी. तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है 26 मिनट के आसपास तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा है ना. ये नहीं बताओ मुझे टाइमिंग का क्वेश्चन कवर है सिंपल क्वेश्चन का वर्ग है तो कितना टाइम लगेगा 10 मिनट या 15 मिनट. यदि आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन कवर स्टिच करते हैं तो 50 क्वेश्चन कवर को आप कैसे कितने टाइम में स्टिच करेंगे तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं. यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं दो तीन टेलर नहीं तो हो सकता है आप भी 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना. ये नहीं बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको उसमें एस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं कैसा गार्मेंट है उसको कितना टाइम देना है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए है ना. क्योंकि बहुत सारी चीजें यदि आप इस लेवल पे कर रहे हो जब आप बाहर शॉप भी लेंगे हो सकता है रेंट पर हो सकता है टेलर हो आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी. बहुत सारी चीजें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे. कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं. हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें स्पेशली रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए. आज मौका मिला है. बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना बोल के नहीं आती एकदम से आ जाती है तो उसको पकड़ लेना चाहिए.
3: मैम हाँ जी मेरी आगे बुटीक के नाम की छोटी सी दुकान है मैंने अभी डाली है पिछले साल से
1: हाँ जी.
3: तो उसमें सिलाई भी खुद ही करती है तो मेरे को ग्राहक बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए.
1: देखिए सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है
0: और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं?
3: मैम अभी तो छोटा मोटा ही चल रहा है, तो आते हैं, वो भी सिलाई करके देखते हैं, छोटी मोटी मतलब जैसे कॉस्मेटिक का सामान भी रखा हुआ है
0: साथ में। तो देखिए यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर में आए, कस्टमर आए आपकी शॉप पर तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में देखे कि क्या स्टिच किया है। सेकेंड है डिजाइन, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर दो घंटे में फैशन चेंज होता है।
3: मुझे ज्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक में चीज साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज्यादा ध्यान है तो सिलाई का ही ध्यान है, ज्यादातर मुझे सिलाई का ही करना, इसलिए आपके बुटीक नाम रखा।
0: तो सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसे डिस्प्ले करते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिजाइन चाहिए, वो आपके पास आया ही इसलिए कुछ नया डिजाइन देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिजाइन होते हैं माइंड में, होता है कि ऐसा डाला चाहिए, ऐसी बाजू चाहिए, मुझे ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आप उनको बता दें, आपको उनको बताना है, अपने आपको अपडेट कर रहे हैं कि आजकल ये फैशन चल रहा है मैम, आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर को रीड करना है, रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए,
3: मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जल्दी दूसरों को बताऊंगा।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को ही डिजाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर सेकेंड थिंग कस्टमर, किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं आप उनको रीड करना पड़ेगा, कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर के आप भीड़ बढ़ेगा। तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कोई भी दो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये लोग का तीन कस्टमर है, आपका नाम सुनीता है, आपका नाम सितारा है और आपका नाम खुशी है। तो ये तीन कस्टमर है आपके सामने और इनको आप समझिए कुछ स्टिच करा रहे हैं, आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच करा रहे, आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच करा रहे हैं वो अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आया है तो हमें पहले इसके लुक को समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गार्मेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप की फैशन वो किस लिमिट तक वो जा सकती है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है, एक इनको सूट स्टिच कराना है, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ, यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा जी, है ना, तो आप एक बार डील करके मुझे दिखाएं। ये सबके लिए एग्जांपल है, प्लीज आप एक एक पॉइंट्स को, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहां से ना सुने, यहां से सुने और यहां से ना निकाले, यहां से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो
3: आपको
0: पीछे तक आवाज आ रहा है, आ रहा है पीछे तक? देखिए मुझे ये लगता है यदि आप लोगों की टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ रही है, तो आपको टेंशन देनी है, इतना स्लो भी वो नहीं बोल रहे तो प्लीज।
3: तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बतानी है वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की।
0: तो
1: अपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए?
3: जी ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन
1: लोग की बात नहीं कर रहे हमसे किस
3: हाँ मतलब जो भी आते हैं मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे
1: आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब कस्टमर आपके सामने आता है आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ आना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए। यदि उसमें लूज डाला है
3: तो दैट मीन्स ऐसा ही बनाना है।
1: हाँ तो दैट मीन्स उसको लूज फिटिंग में चाहिए। यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर रहे हैं तो वो फिर कैसे आएगा? स्माइल करता हो या
3: गुस्से से?
1: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सकता है वो आपके मुंह पे मारती जाएगा कपड़े क्या स्टिच कर दिया मेरे कपड़े वापस। ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे
3: नहीं मैम मेरे साथ हुआ था ना ऐसे एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का तो गुस्सा कर रहे थे इतना टाइट कर दिया आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया ऐसे बोला उन्होंने।
1: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये माइंड मैपिंग कर रही है माइंड में देखना है कस्टमर को देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है टाइट पसंद है वो देख के पता चल जाता है फिटिंग है ना। यदि हम इन कस्टमर की बात करें है ना तो इनके लिए आपके डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी किस टाइप का आपको पसंद है ना। एज ग्रुप उसमें मैटर करता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेसेस डिजाइन हो सकती है। अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे है ना। तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यदि ये कस्टमर है जो कि आपके क्या एज 15 ईयर की है यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ यहाँ तक का धागा बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो ऐसे ऐसे झुमके आप तो क्या उसमें खुश होगा। हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिजाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस के ऊपर नहीं डाल सकते हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिजाइन करेंगे तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है। बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं बतानी है कि देखो मैम ये फैशन में न्यू है हम ये करेंगे तो ये भी आपके पास चलेगा। हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं
3: थोड़ा पॉइंट ये भी दे पाती
1: हूँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता कुछ डिफरेंट डालना चाहता है कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है कुछ डिफरेंट बाजू के डिजाइन बनाना चाहता है। तो वो जो डिजाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिजाइन देगी और मेरे बजट के अंदर। समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है ठीक है। मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रही हूँ। समटाइम कुछ डिजाइन में हमें ज्यादा टाइम लगता है तो जहां ज्यादा टाइम लगेगा वहां आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी नहीं ओके। एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइप में लगाते हो तो दोनों में सेम टाइम ही लगेगा नहीं अलग अलग लगेगा क्योंकि उसमें पाइप में लगी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा तो वो यदि आपके किसी डिजाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिजाइन में मैम देखो लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका लेकिन आपके पास अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिजाइन मैं आपको बना के दूंगी लोग आप लोगों से पूछे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं या बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी है जो भी एक्स वाई जेड है आप उससे बात करते हैं तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में जरूर रखना है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं छोटे टेलर्स हैं आपके वहां पर इस टाइप का आप कर सकते हैं। प्लीज आप थैंक यू।
4: थैंक यू. सबसे पहले तो क्लैपिंग एंड टीम बच्चों के लिए आकर खड़े हुए. अरे मुझे लगता है यहाँ खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ. ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं. मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ होना चाहिए. मैम मैं करूंगी, मैम मैं करूंगी. जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा.
5: अभी जैसे ने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मैं अपना जुनून समझ लो इस चीज के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है. कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हटके मुझे करना है उस चीज के लिए. तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था उन्होंने इसे कम्प्लीट करके दिया पर मुझे वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया. एक तो क्वालिटी मेरी कोई वो नहीं है. चैलेंज क्या आया, एक तो कपड़े का GSM का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज के लिए. जो उनका रेट है अगर मालिक शेयर करे तो मुझे 143 रुपए देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ कई बार नहीं दे पा रही हूँ. कि क्वालिटी में वो चीज क्या हो जाएगी, वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए. तो उस चीज के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज के लिए उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही उस चीज के लिए.
4: मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंज हर कोई फील करता है. यदि हमारे पास कोई ऑर्डर आता है यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है. फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए.
5: पहला ऑर्डर में नो प्रॉफिट नो लॉस में
4: है. सेकंड आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँ मेरा ये कॉस्ट है क्योंकि आपको अपना वैल्यू को भी शो करना. जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे और शो करना नहीं है वो आपके गवर्नमेंट में अपना दिखेगा वो वैल्यू क्वालिटी आपके गाँव में देखेगा 100% वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास. और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें GSM के अकॉर्डिंग आपको देखा तो इसमें सबसे मेन चीज है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए. इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से तो आई थिंक
5: मैम पूरा एक महीने पूरा सर्च किया मार्केट को गांधीनगर यहाँ तक की कपड़े की क्वालिटी को बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी या स्पन है उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फर्क नहीं पता लगा. इवन दुकानदार को भी फर्क नहीं पता लगा. एक शॉपर ने भी मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं. उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाया. मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में. तब मुझे वो जो कपड़े का जीएसटी समझ में आया उस टाइम पे.
4: बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अभी जैसे मैम ने शेयर किया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. जैसे अभी आपने 90 डेज का कोर्स किया है तो 90 डेज के कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है. तो दैट्स व्हाई चीजों के लिए जो है 6 मंथली कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं. उसमें आपको नॉट स्विंग टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइंस क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं. और इन केस आपको कुछ इस टाइप के हर्डल्स आते हैं तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में अपना ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर. एज ए गाइडेंस के लिए आप वहां भी आ सकते हैं. और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन कुछ पूछना चाहता कोई हो कुछ क्वेरी नहीं है मतलब. तो मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर भी डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं. जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे वन मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ. डे वन ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बता दो. क्योंकि आपने किस चीज में क्या ज्वाइन जो भी किया है किस पर्पज से किया है. जैसे अभी मैम ने भी कहा
1: कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरी पूरा करने के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं तो सॉरी इस टाइप की सीट्स आपने नहीं ले रही है. तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है. आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है. नो, आप उससे आगे सोचिए. आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कैसे आप अर्न मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे वो ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, है ना. तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा. यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो देट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा. वेरी गुड, श्याम बात
6: बताइए. दो बच्चे मैं इसी वजह से घर से ज्यादा निकल नहीं पाती. तो इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट जो मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं 2 घंटे लगा रहती हूँ. बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं 2 घंटे लगा रहती हूँ. लेकिन अभी जैसे एग्जाम हो गए हैं तो मैं घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ. क्योंकि घर पे संभालना और मेरी एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी खोल रखा नहीं करते. तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ. लेकिन इसके अलावा मैं चाहती हूँ कई बार 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ.
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं. जहाँ तक इधर बैठी फीमेल का बात है या वुमेन की बात है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग मैम, हम लोग सब इस चीज को फेस करते हैं. बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल के आ रहा है. हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है तो. ठीक है ना, आपके टाइम आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा, आपको आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे. लेकिन कब तक और कितना? आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा. घर बैठे चीजें नहीं मिलेंगी. अब वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें, है ना, कैसे आप सेटिंग करें. वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है. हमें घर भी देखना है. अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है 3rd क्लास में बच्चा पढ़ता है. मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली भी संभालती हूँ. और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट हैं. उनको मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, बाहर जाना, इंडस्ट्री में जाना, एज ए अब मैं आप लोगों के पास भी यहाँ शेयरिंग हमें ऐसे भी जाना पड़ता है. तो एज ए अपने आपको आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा. जरूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीजें हैं. सब बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है. मीनवाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर बैठे. जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? दृढ़ निश्चय. इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज है ना,
6: प्रैक्टिस करके.
1: यस, आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया, एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है. तो वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को, यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है, तो आपको स्किल इम्प्रूव हो जाता है. तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेकर आप अपने पैर पर खड़े हो सकते. इस बेटे लास्ट में आपको कोई है इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पूछ रहे. इधर से पीछे. मैं तो अपने बच्चों को यू नो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती हूँ. वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे. बोलना बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को बताना जरूरी है. हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए, कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए. हाँ जी, यस.
6: बट मैं उसको ये नॉलेज नहीं है कि मतलब आगे क्या करूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, मतलब इन चीजों के बारे में अभी तक मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है. तो
1: वैसे आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो आप क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उसी चीज को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू? आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मार रखे. गुड़गांव में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं. डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है. डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिजाइनिंग रिटेल, تھری ایئر کا پروگرام ہے, تھری ایئر پروگرامس میں آپ فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بہت ساری مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. فیشن ڈیزائننگ کو لوگ صرف اچھا دکھنے میں آئی تھنک سوچتے ہیں, بٹ فیشن ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں, کپڑا کیسا بنتا ہے, کیسے اس کی ویونگ ہوتی ہے, کیسے اس کو کلرنگ ہوتی ہے, کیسے اس کی ڈائنگ ہوتی ہے, ٹریڈیشنل امبرائڈریز ہو گئی, آپ کی بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو جا کر یو نو پروڈکٹ آپ کا بنتا ہے. تو اس میں فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مینوفیکچرنگ ڈپلوما کورسز بھی ہے, وہ بھی بہت زیادہ آج کل سب سے زیادہ یعنی میں اسٹرینتھ بول میرے انسٹیٹیوٹ میں تو سب سے زیادہ جو میرے پاس اسٹرینتھ آتی ہے دیٹ از ای ایم ٹی کورس کے لیے آتی ہے. ای ایم ٹی مینس اپیرل مینوفیکچر ٹیکنالوجی, مینس سب سے زیادہ یعنی جاب اپرچونیٹی کی بات یعنی ہم گارمنٹ انڈسٹری میں کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے اس میں ہمیں 100% بچوں کو ہم پلیسمنٹ دے پاتے ہیں. بٹ یعنی فیشن ڈیزائننگ میں جب بچے کرتے ہیں ہمارے پاس تو سب سے زیادہ سر ہم ہرڈلس کرتے ہیں, یا تو بچے اپنے بوٹیک اوپن کر سکتے ہیں یا فیشن اسٹوڈیو اوپن کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے ڈیزائنر یعنی انڈسٹری میں وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت کم کوسٹی ہوتی ہے ایز اے ڈیزائنر کے. تو یعنی آپ ڈیزائننگ یعنی اپنا بوٹیک اپنا فیشن اسٹوڈیو یا فیس ٹیک کا کچھ اپنا ڈیزائنر برانڈ اوپن کر سکتے ہیں تو آپ اس لائن میں جا سکتے ہیں. ادروائز مینوفیکچرنگ بھی بہت بہت لارج اسکیل پہ جو ہے اس میں کام ہو رہا ہے, آپ اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یعنی آپ گرگاؤں سینٹر میں کریں گے تو ادھر آئی آئی ایف ڈی ہے, ونکر یونیورسٹی ہے, انسل یونیورسٹی ہے, ادھر پارا ٹریننگ ڈیزائن سینٹر ہے, وہ بھی مطلب آپ سرچ کریں گے مل جائے گا. ایون کافی سارے انسٹیٹیوٹ ایسے بھی ہیں جہاں پر فری کورسز بھی ناٹ فری اسپانسر کورسز سی ایس ایف کے انڈر جو کورسز آتے ہیں وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, مطلب پیڈ انپیڈ دونوں.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लाल किले से आया जाग, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, तीनन की हो उम्र दराज। 5 नवंबर सन 1945, दिल्ली के लाल किले के बाहर हजारों देश प्रेमी सामूहिक स्वर में ये आवाज लगा रहे थे। लाल किले से आवाज आ रही है कि सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज इन तीनों की उम्र दराज हो। इसी दिन आजाद हिंद सेना के ढिल्लन और शाहनवाज इन तीनों की उम्र दराज हो। इसी दिन आजाद हिंद सेना के इन तीन अधिकारियों के साथ आजाद हिंद के सैनिकों पर राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आपराधिक मुकदमा चल रहा था। 20,000 सैनिकों ने ब्रिटिश सेना छोड़कर आजाद हिंद सेना में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। बचाव पक्ष के वकील में थे भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और लेफ्टिनेंट

लेफ्टिनेंट कर्नल होरीलाल वर्मा। विद्रोहियों पर भारतीय सेना अधिनियम 1911 के तहत आरोप तय किए गए थे। इन तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के विपरीत सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए थे। कर्नल ढिल्लन के खिलाफ हत्या के आरोप थे और शहनवाज खान प्रेम सहगल के खिलाफ हत्या के लिए अपहरण का आरोप था। इस कोर्ट मार्शल का भारतीय जनता द्वारा व्यापक विरोध किया गया। तीनों प्रतिवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में प्रदर्शन के दबाव में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ क्लाउड आचिनलेख के आदेश पर तीनों को रिहा कर दिया गया। गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का जन्म 18 मार्च को तरनतारण जिले के अलगू गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार ताखर सिंह ब्रिटिश घुड़सवार सेना में पशु चिकित्सक थे। गुरुबख्श की आरंभिक शिक्षा अपने इलाके के कई स्कूलों में हुई। सन 1931 में उन्होंने रावलपिंडी के गोल्डन मिशन कॉलेज में दाखिला लिया। वे डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु उसकी चयन परीक्षा में वे असफल रहे। कई स्थानों के स्कूलों में विभिन्न सहपाठियों के साथ पढ़ने के कारण उनके मन में धर्मनिरपेक्षता का भाव घर कर गया। गुरुबख्श को पर्शियन, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में महारत हासिल थी। साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी और जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने कई कविताएं भी लिखीं।

गुरुबख्श के पिता ने अपने मित्र की सलाह पर उन्हें भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती करवा दिया। उन्होंने 14वीं पंजाब रेजिमेंट से अपनी नौकरी शुरू की। तनख्वाह थी 15 रूपए। सन 1936 में उनका चयन किचनर कॉलेज में ट्रेनिंग हेतु हुआ, जहां से देहरादून मिलिट्री एकेडमी के लिए युवक चुने जाते थे। दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए एकेडमी में अधिकारियों की ट्रेनिंग में कटौती कर उन्हें उनकी यूनिट में तैनात कर दिया गया। फरवरी सन 1941 को ढिल्लन की बटालियन को पूर्वी एशिया में जाने का आदेश मिला। पूर्वी मलाया पेनांग द्वीप होते हुए वे इपोह पहुंचे, जो कुआलालंपुर के उत्तर में है। गुरुबख्श सिंह सिंगापुर में उतर गए। यहां से वे जित्रा पहुंचे, जो थाईलैंड के मुख्य मार्ग के पास ही था। 7 दिसंबर 1941 को जापानी सेनाओं ने पर्ल हार्बर पर धावा बोला और रॉयल एयरफोर्स की पूरी स्क्वाड्रन तबाह कर दी गई। 11 दिसंबर 1941 को पंजाब रेजिमेंट ने थाईलैंड के चांगलू में दुश्मनों के साथ बड़ी लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में गुरुबख्श ने मुख्यालय की कंपनी का नेतृत्व किया। 8 घंटे की लड़ाई के बाद उनकी यूनिट लड़ाई हार गई। 13 दिसंबर 1941 को ढिल्लन पेनांग के पास मियामी समुद्र तट पर पहुंचे। यहां उन्हें पास के एक रेलवे पुल की रक्षा करनी थी। इसी बीच मलेरिया से पीड़ित गुरुबख्श सिंह को सिंगापुर लाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस बीच जापानी सेना ने सिंगापुर पर आक्रमण तेज कर दिए। 15 फरवरी सन 1942 को सिंगापुर का पतन हो गया। अंग्रेजी सेनाओं ने जापानियों के सामने हार मान ली। सारे भारतीय सैनिक और अधिकारी युद्धबंदी हो गए। सिंगापुर के फरेर पार्क में जापानी मेजर फुजीवारा ने युद्धबंदी सैनिकों के सामने उत्तेजनापूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया में शांति भारत की स्वतंत्रता के बगैर स्थापित नहीं हो सकती है। अगर मलाया में मौजूद सभी भारतीय सैनिक अंग्रेजों से लड़ने को तैयार हों, तो जापानी सरकार उनकी मदद कर सकती है। इस तरह आजाद हिंद सेना का गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को इसकी कमान दे दी गई। मोहन सिंह और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एक ही कमान से थे। ढिल्लन ने आजाद हिंद सेना में शामिल होने का निश्चय किया। उन्हें नी सू कैंप भेजा गया, जो सिंगापुर से 21 किलोमीटर दूर था और रॉयल आर्टिलरी का रेजिमेंटल सेंटर था। जापानियों ने चांगी कैंप में बंद ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स को गार्ड करने 12 ऑफिसर्स की मांग की। गुरुबख्श सिंह इस अप्रिय काम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ब्रिटिश ड्रिल और कमांड छोड़ दिए और जापानी भाषा में आदेश देने लगे। 24 अप्रैल सन 1942 को बिरादरी में के मोहन सिंह ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में पास सभी प्रस्तावों ने आजाद हिंद सेना के आधारभूत सिद्धांतों की नींव रखी, जैसे कि टोक्यो में हुई कॉन्फ्रेंस में तय किए गए थे। 30 लोगों ने बैंकॉक की मीटिंग में भाग लिया। गुरुबख्श सिंह को 1 सितंबर 1942 को मेजर के रूप में कमीशन दिया गया।

2 अक्टूबर सन 1942 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पेडांग में आजाद हिंद सेना की समीक्षा बैठक हुई। इस बीच मोहन सिंह और जापानियों के बीच कुछ मतभेद के कारण मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी बोस के आग्रह पर मेजर ढिल्लन आजाद हिंद सेना का काम देखते रहे। 2 जुलाई सन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद आजाद हिंद सेना का विस्तार किया गया और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को गुरिल्ला रेजिमेंट में भेज दिया गया। गुरुबख्श सिंह 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट में सेकेंड

अंग्रेजों ने पैगान की 8वीं बटालियन पर हमला बोला। हारकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों ने आसपास के कुछ और ठिकानों पर हमला किया, किंतु सफल न हो सके। बाद में आजाद हिंद सेना भी अपने जीते हुए क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकी। फलतः गुरुबख्श सिंह अपनी यूनिट के साथ पैगान की ओर निकल आए। इस बीच अंग्रेजी फौजों का दबाव बढ़ने लगा और उन्होंने कई विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इधर शाहनवाज पोपा पहुंच चुके थे। उन्होंने गुरुबख्श सिंह को उनकी यूनिट में भेज दिया। अप्रैल सन 1945 में रणनीतिक हालात तेजी से बदले। अंग्रेजों ने माउंट पोपा पर तीन ओर से धावा बोला। भारतीय इसका मुकाबला नहीं कर सके और मागवे की ओर पीछे हट गए। इस बीच बर्मा ने जापान के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। फलतः जो ग्रामीण आजाद हिंद सेना की सहायता कर रहे थे, उनका रुख बदल गया। मई सन 1945 में रंगून खाली कर दिया गया। आईएनए के सैनिक कामा के पास इरावती नदी के किनारे फंस गए। 17 मई सन 1945 को आजाद हिंद सेना के बर्मा में फंसे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां बाद में शाहनवाज खान भी आ गए। लाल किले के मुकदमे के बाद गुरुबख्श सिंह ढिल्लन मुक्त होकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास हातोद गांव में आ बसे। 6 फरवरी सन 2006 को यहीं उन्होंने महाप्रयाण किया। ऐसे महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

0: अभिदा और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपरेल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपरेल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है और ज़िंदगी बहुत लंबी है। और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इनकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलता स्कूल। वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद, वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के खर्च की। पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने BA फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया। काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ फर्स्ट आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे। तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया, और मैंने सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया, मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है। और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते, लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से हमने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही कमा भी रही हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: जी मैम,
0: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
1: जी मैम,
0: और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं, और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
1: जी मैम,
0: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे।
2: मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई फर्क है, जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आए, और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के, घर की रजामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी, और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर, एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के, अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं, और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं, और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी
1: बिल्कुल
0: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: मैं ऐसा है, जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उनका, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है काफी लड़कियों के पैर, वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना फर्ज अपने बच्चों का हम खुद खुद उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर करे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
2: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विंग ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। और उन्होंने टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासेस लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है, ये हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे लें, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग तब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती हैं। तो सीखने के बाद जो फरा ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, मैं हमारे पैनल में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में एक ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो और दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइंस की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
2: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए, और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी है और इनको सारी ही चीजें आती है। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती है। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
0: बहुत
2: जी
0: बढ़िया
2: मैम,
0: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
1: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, धोती शलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा, और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
0: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
1: जी
0: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
1: जी
0: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
2: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी
1: जी
0: वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
2: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
2: टेक्नोलॉजी
0: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
2: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
0: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
1: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रेल इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों के।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को, गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आई, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है, एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे, आज इसका फर्स्ट सेशन है। एंड प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा, क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है, आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमन टर्म्स में क्या बोलोगे, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना,
1: हाँ सर, बिजनेस मतलब धंधा व्यापार।
0: व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप

0: एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको और फिर उसको आप मार्केट करो, या फिर आप क्या करोगे किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, जो आपको अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज है, इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, तो ये अच्छी चीज है। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो उस स्तर पे आपको इन चीजों को करने की जरूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है अपना, अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, कि उसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
1: नो
0: अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो।
1: सर, अभी जो आपने समझाया एकदम मतलब आसान भाषा में तो सबको क्लियर हो गया मतलब।
0: अच्छा, थैंक यू।
2: जी
0: अच्छा
2: पहचान जी,
0: जी
2: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते।
2: वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर, और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे।
0: ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना यस, जब भी मैं कुछ
2: बिल्कुल
0: पूछूंगा तो।
2: बिल्कुल सर।
0: ठीक है, अच्छा इसमें एक एक एक लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया, अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या बना रहे हो उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सब सबने यही बोला है कि ये होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो, ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के, तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो 1 साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं

0: कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो, और इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज के लिए। एएमसी पता है, इवन ये मशीन्स में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंट्रो पे यूज करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती है कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 500-1,000 रुपए, और इस पूरे 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ, कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है?
1: इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो
0: हाँ
1: जाती है। ये तो 2-4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए, तो वो जो सर्विस की बात है ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी वो
0: राइट,
1: पे कर देती हैं
0: चलो
1: एडवांस
0: ठीक है।
1: वाला। जी
0: हाँ वही वही मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
1: बिल्कुल
0: कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है लेकिन 1 साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सब नहीं करा होगा ना?
1: जी हाँ
0: जी सर। इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया, मान लो चलो कोई चीज आपकी खराब हो गई, तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो, आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा, लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको?
1: यस सर,
0: ठीक है,
1: यस सर।
0: ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। इट इज अ बिजनेस विच बाइज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड सेल इट एट रिटेल प्राइस। इट इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल अ बिजनेस। तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो, किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा, क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपए है। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो, ताकि आपको वो चीज सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज के बारे में?
1: करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं होलसेलर भी।
0: हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती हैं, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? अभी हम
1: यस सर,
0: थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर मशीन एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्लोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है?
1: नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया गीजर से।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा, जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ है जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारे कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको?
1: यस सर,
2: यस
0: ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे?
2: सर। सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदड़।
0: ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको?
2: सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था।
0: ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, उसको
0: नहीं
2: भी
0: पैसे,
2: प्रॉफिट
0: हाँ
2: हो सके हमें भी।
0: मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक
2: हाँ
0: है,
2: सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे, जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या, मतलब वो गैस देते ही नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट।
2: वो मैचिंग डायनेस बिजनेस जिसमें हम
0: चलो
2: बना हुआ सामान खरीदते हैं
0: हाँ
2: और उसकी मार्केटिंग करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका हो है उससे कम पैसों में मिलता है, एंड जब हम उसको मार्केट करते हैं तो हम, हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो
2: हाँ
0: कोई
2: सर,
0: चीज़ 10 रुपए की है तो हम उसको बड़े बाजार
2: तीस
0: से, जैसे
2: या
0: आपने
2: फिर
0: बोला,
2: फिफ्टी, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं।
0: राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी आप कोई और बताओ, कौन
2: ओके सर, थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग,
0: बताएगा?
2: इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहाँ पे हमको सस्ता मिले वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीजें जो भी है वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है, चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट, आपको कोई चीज शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वकड़ा जो भी चीज है वो सब आपने ही अरेंज कराए, और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी। अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है, उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो, या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी तक ये सबको समझ आ गया?
1: यस सर,
0: ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज अ मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमेन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है? मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस? मैं हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस। इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो, तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है, मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले। और अच्छी कैसे चलेगी? जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो, वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है, प्लीज दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें ये। तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे अभी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए, और वो जो भी मैं बनाऊँ वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है, और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जाम्पल में आए, तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो, वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं, तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब इस, ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को, और विजन क्या है, जब आपको बड़ा बनना है बिजनेस, हमेशा आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूँ, फिर उसको मैं 80 कर सकूँ, या जो भी है, एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे, तो आपका अपने आप और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी, तो आपका विजन एक तरह से, आप अपने विजन पे चलने लोगे कि आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है। यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहां तक सबको समझ आ गया?
1: जी सर,
0: बाकी
1: जी
0: लोग
1: सर,
0: कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया, यस नो कुछ नहीं। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी अभी तक कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई है तो।
2: गया सर।
0: आ गया समझ सबको? ठीक है, तो अभी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, तो हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, उसके बारे में आप क्या समझते हो? कोई बोलेगा कुछ? लिखा हुआ तो है ही, आगे कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस?
2: सर, इसमें
0: कोई
2: प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक प्रोडक्ट फिक्स कर लें, एक मिशन फिक्स कर, ये हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है।
0: ठीक है, सो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट देन टेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग इट। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है, तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया ही हो गया, अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है, तो एग्जाम्पल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे, तो अगर आप दिया लोगे, तो दिए को आप एक, वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है, तो उससे उसका मतलब हो गया टेंजिबल भी हो गया, और फिजिकल मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट एंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड, अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी की चीजें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
2: नो सर,
0: हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4, 5, 6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज कि इट एश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो यहां तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया?
2: यस
0: चलो
2: सर,
0: ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे जो मैंने अभी समझाया?
1: मैं
0: बिकॉज ऑल
1: दयाराम बोल रहा हूँ।
0: दयाराम तुमको छोड़ करके मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम तुमको छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा।
2: सर मैं खुशी जैन,
0: हाँ
2: सर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी
0: कहाँ
2: भी
0: से हो आप,
2: चीज
0: कहाँ से हो?
2: को अपन, सर समरानिया से, 12 डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अपन किसी चीज को प्रोडक्ट है उसका अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज मालूम कर सकते हैं, और अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं।
0: हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद अपने हाथों से पता कर सकते हैं, आंखों से देख के कि हाँ भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये हमें लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब 12 के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज, प्लीज कोई अनम्यूट करके बोली।
1: महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो।
0: जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट रहे। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशन ले रहे हैं आप लोगों के साथ।
2: हेलो सर,
0: जी
2: मैं
0: जी
2: रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: हमें काफी, मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे बिजनेस
0: चलिए। अच्छा,
2: क्या
0: आपको
2: क्या
0: समझ आ गया सारा?
2: है,
0: एक
2: सर्विस
0: बार
2: बिजनेस, यस सर,
0: जो मैंने स्टार्टिंग
2: लेकिन
0: में बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने लिखे हैं।
2: एक सर्विस बिजनेस था, एक
0: हाँ
2: मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्चेंट डिजाइनिंग, और एक
0: हाँ
2: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था।
0: ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी।
2: जी सर, सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो, या फिर ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं, तो
0: हाँ बिल्कुल
2: हम
0: बिल्कुल राइट,
2: होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
0: ठीक है, थैंक यू
2: और
0: सो
2: जो
0: मच। ऐसे ही
2: मर्चेंट
0: थोड़ा सा
2: डिजाइनिंग है।
0: बस बस
2: जी
0: बस
2: सर,
0: आप बस बस ठीक है ठीक है, आप बाकी बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो
2: जी
0: मच।
2: सर,
0: ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे, अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि
2: जी
0: ये आपको
2: सर,
0: मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट 2 में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी, आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है वो इंटरेक्शन जो होता है वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूजर से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पोर्टेंट सारे ही होते हैं बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया बिल्डिंग का, या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है, आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना, क्योंकि आपने उस रेंट को, एक एक चीज़ जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि एक एक चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज़ में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट सबको समझ आ गए? ठीक
1: यस सर,
0: है, तो अभी तक कोई डाउट आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो, आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज़ बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज़ को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज़ पता लगेगी, और इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज़ पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज़ में काम नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज़। तो अभी हमने 2 चीज़ें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज़ करोगे तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को, प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है?
1: सर अगर हम अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है।
0: हाँ मतलब कोई मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं?
1: पहले सर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा कुछ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो
0: हाँ
1: पहले उस चीज का जैसे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा,
0: राइट
1: और इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी नहीं है, ये सारी चीजें हमें क्या पहले सर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और क्या ऐड कर सकते हैं हमें,
1: इसके
0: और
1: साथ
0: सर
1: जैसे
0: इसमें
1: ट्रांसपोर्टेशन का
0: बहुत
1: खर्चा
0: ही बड़ा
1: क्या,
0: भंडार हो
1: भंडारण
0: सकता
1: का
0: है इसमें।
1: सर ये देखना पड़ता
0: हमको लोडिंग बोर्डिंग पर कितना बैन होगा, किस जगह पर आएगा, उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी। सही बात है,
1: सर इसमें एक और पॉइंट है सर, हम ऐड कर सकते हैं सर इसमें,
0: क्या सर
1: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर, ये बहुत नेसेसरी है सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए सर।
0: क्या कर सकते हैं?
1: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें जो
0: बिल्कुल
1: बिजनेस।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा क्योंकि अभी जो हम प्लानिंग फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं इसलिए, लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज लिखी रहती है, ये वाली चीज होती है, ठीक है। और अगर आप एक
1: ये
0: प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है,
1: और
0: आप
1: प्रोडक्ट की एक्यूरेसी
0: चीजों,
1: भी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें अच्छी हो जाती हैं। और किसी को कोई चीज ऐड करनी है?
1: जी सर, एक
0: हेलो
1: इसमें ये है, जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका या नहीं है, सारी कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मीना जी आप कुछ बोल रही थी?
2: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
2: हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें काम कौन करेगा, कितनी
0: राइट
2: महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं
0: राइट
2: उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा,
0: राइट,
2: ये भी
0: तो
2: देखना
0: ये
2: पड़ेगा हमको भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी,
0: बहुत
2: तो
0: बढ़िया। तो
2: वो
0: मतलब आप ये
2: सारा।
0: कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें रिसोर्स मैनेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी पता
2: जी
0: लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1,000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना अमीना जी? ठीक
2: जी सर।
0: है जी, और फिर हम आगे बढ़े, इसमें कुछ आप लोगों को और ऐड करना है?
2: नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे।
1: सर इसमें टाइमिंग का, सर वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे
0: बिल्कुल
1: दिवाली
0: बिल्कुल
1: नजदीक और हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग का भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: राइट राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चाहे आप वो फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा एग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है, और टाइम आर एलोकेटेड, इसको हम उसी हिसाब से फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है। आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं वो चीज होती है, कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसी इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं, वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो जरूर लोगों में रिकमेंड करें। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे? क्योंकि हम तो ये काम करते ही है ना। आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का, तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा?
1: जैसे सर कि हम नेटवर्किंग को इम्प्रूवमेंट ला नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं। आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इन सब चीज़ों में लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस यू आर सेलिंग टू देम एंड हाउ इट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के, सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप ही एक चीज़ बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके 100 व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे तो आप जो चीज़ बेच रहे हो, बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज़ बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट उससे कैसे अलग है, और आप उससे ना लेके मेरे से लोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें, ये इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपका जो वो है ये मतलब क्यों उससे अलग है। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो आप मेरे से अगर लोगे तो ये दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है, इसमें ये, और आप अपनी तरफ से क्या बेनिफिट दे सकते हो उसको, कि बाय चांस अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप मेरे पास ला सकते हो, सर्विस भी साथ साथ देनी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि हाँ भाई अगर आपके आप इसको ले जाते हो, अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में, तो आप प्लीज़ उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको ठीक सही करके दूंगा। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको बोल सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट आएगी, इतना ही लगेगा, और मैं उसको ठीक करके दे दूंगा। कोई रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो आपका एक कस्टमर अच्छा बेस बन जाएगा। इसको कस्टमर रिलेशनशिप में भी अकाउंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कस्टमर के लिए। क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल के बाद आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, जो भी जर्नी होती है इसकी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। कोई सा
2: जी
0: भी
2: सर,
0: पॉइंट
2: जी
0: आप ले लो, कोई सा भी पॉइंट के बारे में बता
2: सर,
0: दो।
2: जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें।
0: ठीक है ठीक है।
3: तो
0: और
3: ऐसा कोई काम कुछ मतलब अभी तक किए हैं आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाई है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीज जो भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन
2: जी
3: सब
2: सर, हमें
3: चीजों को अप्लाई
2: टेक्निक
3: करते हुए? क्या बनाया है?
4: बनानी है सर।
3: पुष्पेंदर तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है,
0: आवाज
3: पुष्पेंदर तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है।
0: आवाज कट रहा है पुष्पेंद्र आपको। जी
3: हाँ कुछ लता बताओ कोई भी।
2: सर, हाँ इसमें हमें दरियां भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर, क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है।
0: वेरी गुड। और बाकी और लोग कहाँ हैं? ये तो 5 पॉइंट हैं, एक कुसुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का, बाकी और कौन? नेटवर्किंग कौन बताएगा? बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है।
3: स्वाति
2: जी सर, गुड आफ्टरनून सर।
3: गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप अगर प्रोडक्शन किए हो, कुछ चीजें सेल की हो, तो ये कौन सा
2: जी
3: पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपने कैसे किया था उस चीज का मैनेजमेंट?
2: सर, इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
2: बाकी
0: बिल्कुल
2: सभी
0: बताइए।
2: पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो ये सोचते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बात, कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इसको सुधारूंगी। थैंक यू सर।
0: ठीक
2: जी
0: है।
2: सर,
0: तो बस एक छोटा सा नीचे लिस्टिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट टू हम खत्म कर देंगे आज, आज पार्ट टू तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है, इसका ये जो है लिखा हुआ, इसमें लिखा है, डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज अगर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए अलग है, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं उनसे इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना, हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज़ आपसे लेना है तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है, अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो रेट भी ऊपर होगा, मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। वी हैव टू लिसन टू आर कस्टमर्स नीड एंड वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इज टू बी अलाइंड विद द कस्टमर। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वहाँ पे इसका रोल आता है, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपनी खुद रिक्वायरमेंट बता दो, मैं उसी हिसाब से चीज़ आपको दे दूंगा। होता है ना सबके साथ कि वो पहले वो अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, चीजें बता रहा होता है, लेकिन आप फिर उसे बताते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए, तो आपसे वो डायरेक्टली पूछता है फिर कि सर या मैम आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्वालिटी कैसी चाहिए, बजट क्या है, किस तरह से। तो आप जब उस चीज को ध्यान में रख के फिर आप अगर चीजें देखो निकालोगे तो शायद आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आपसे खरीद भी लेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पर, या अभी कोई डाउट है किसी को?
2: गया।
0: तो इसको हम अभी कंक्लूड इसी यहीं तक करेंगे कि लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने कस्टमर, कोई आपके पास क्लाइंट आता है दुकान पे, कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो आप उसको सुनो कि वो क्या चीज़ आप लोग आपसे चाह रहा है, किस क्वालिटी का चाह रहा है, किस बजट में चाह रहा है, कितनी लाइफ की चीज़ चाह रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप सुन के उसको फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ और उसमें वेराइटी दिखाओ। तो ये इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आज पार्ट वन एंड पार्ट टू खत्म करा है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या स्किल जरूरी होती है एक बिजनेस के लिए, मिशन विजन एंड आपको कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमने, पांच सात चीज़ें हमने आज कवर करी हैं। तो आज वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम पर होगा, ठीक है? तो बाकी अब जब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे तो पहले प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कवर करा है इसमें,
2: ओके सर,
0: ठीक है?
2: ओके
0: थैंक
2: सर,
0: यू, कोई बात नहीं।
2: थैंक यू सर।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बोलते समय ईर्ष्या भाव से अपने विचारों की रक्षा करो, वे आपके मनोभाव हैं, क्योंकि कोई भी मूर्ख आपके शब्दों से पकड़ लेगा कि कब आपने ये कहा था। विचारों में शब्द की प्रतिष्ठा को स्थान देने वाले महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अतरसुईया मोहल्ले में 26 अक्टूबर सन 1890 को हुआ था। उनके पिता जय नारायण मिडिल स्कूल में शिक्षक थे, जो उन दिनों एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कहलाता था। उनके पिता धार्मिक संस्कारी व्यक्ति थे। गणेश शंकर की कुछ आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मुंगावली और विदिशा नामक स्थानों पर भी हुई। सन 1907 में उन्होंने निजी विद्यार्थी के रूप में हाईस्कूल की परीक्षा पास की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हार कर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। शुरू में उन्होंने करेंसी कार्यालय में नौकरी की। यहां अंग्रेज अधिकारी से मतभेद और लड़ाई होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कानपुर के हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव तो मन में घर करने ही लगा था। अपने मन के भावों को लेकर विद्यार्थी जी ने अपनी पहली पुस्तक 16 वर्ष की आयु में लिखी। शीर्षक था हमारी आत्मोत्सर्गता। ये पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी चंद प्रकाशवती को समर्पित की। राष्ट्रवादी उथल पुथल का ये दौर था। विद्यार्थी जी की इच्छा थी कि वे सार्वजनिक जीवन में आएं और पीड़ित लोगों का दुख दर्द साझा करें। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो साहित्यिक पत्रकारिता करें या राजनीतिक, जन जन से जुड़ी हुई। उनके छुटपुट लेखन को देख पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विद्यार्थी जी को मासिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के रूप में काम करने के लिए कहा, किंतु विद्यार्थी जी राजनीतिक विषयों में अधिक रुचि रखते थे, अतः उन्होंने सरस्वती के स्थान पर अभ्युदय नामक पत्रिका में काम करना श्रेयस्कर समझा। सन 1913 में विद्यार्थी जी कानपुर लौट आए और स्वतंत्र पत्रकारिता आरंभ की। कानपुर से प्रताप का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने पत्रकारिता और मानवता के उच्च मानदंड स्थापित किए। 1915 में गांधी जी नील किसानों का दुख दर्द समझने चंपारण आए थे। विद्यार्थी जी ने प्रताप में भी बिहार के निलहे किसानों की व्यथा कथा को विस्तार से स्थान दिया। कानपुर के मिल मजदूरों का कम वेतन और जमींदारों द्वारा रायबरेली में किसानों का उत्पीड़न, इन सब पर प्रताप में मुखरता से लिखा। उनकी कलम आम आदमी के दुख दर्द की हमदर्द बन गई।

लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात के बाद विद्यार्थी जी गांधी दर्शन के अनुयायी बन गए। सन 1917-18 के होम रूल आंदोलन में उन्होंने तन मन से भाग लिया और कानपुर में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की नजर अब उन पर पड़ चुकी थी और रायबरेली उत्पीड़न पर लेखन और मुकदमे के चलते विद्यार्थी जी को 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई। इस कारावास की सजा के दौरान कविवर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप के संपादन का भार संभाला, जो दैनिक बन चुका था। सन 1922 में उन्हें छोड़ा गया और कुछ समय बाद फिर से एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सन 1924 के आसपास कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और वे अभिन्न मित्र बन गए। भगत सिंह प्रताप में काम करने लगे और बलवंत सिंह के छद्म नाम से लेख लिखने लगे। विद्यार्थी जी अपने स्कूल के दिनों में विश्व के अनेक चोटी के साहित्यकारों, विशेषकर क्रांतिकारियों को पढ़ चुके थे, अतः भगत सिंह का लेखन उन्हें रास आया। अपने कई सर्वोत्तम लेख भगत सिंह ने प्रताप में ही लिखे। ये विद्यार्थी जी का संपादन कौशल ही था कि 2 समानांतर विचारधाराओं, गांधीवादी और क्रांतिकारी, दोनों को अपने पत्र में वे स्थान देते रहे। पाठक वर्ग भी दोनों विचारधाराओं से लाभान्वित होता रहा। सन 1925 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसमें मुक्त भाव से भाग लिया। सन 1925 में हुए

महत्व से वे भली भांति परिचित थे और इसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। 1930 में गोरखपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने अपनी वैचारिक पक्षधरता स्पष्ट कर दी। प्रताप में निरंतर लिखे जा रहे लेखों को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और 9 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही उन्हें छोड़ा। कुल मिलाकर गणेश शंकर विद्यार्थी को 5 बार जेल यात्रा करनी पड़ी और प्रताप में प्रकाशित लेखों के लिए भारी जुर्माने की रकम भी अदा करनी पड़ी। कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद के झंडा गीत के विद्यार्थी जी प्रशंसक थे और कानपुर में 19 अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस की स्मृति में इसका सामूहिक गान आरंभ करवाया।

विद्यार्थी जी का कहना था कि मैं उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ एक सेनानी हूं, चाहे वो नौकरशाहों, जमींदारों, पूंजीपतियों या उच्च जातियों द्वारा किया जा रहा हो। मैंने अपना सारा जीवन उत्पीड़न और अमानवीयता के खिलाफ लड़ा है और ईश्वर मुझे आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दे। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी लेखनी हमेशा सजग रही और उन्होंने सभी धर्मों के बड़े नेताओं को फटकारा जो केवल अपने धर्म को महान बताते हुए अन्य धर्मों की आलोचना करते थे। विद्यार्थी जी के इन विचारों के कारण कई बड़े धार्मिक नेता उनसे नाराज रहा करते थे। अपने सर्वधर्म समभाव के विचारों के प्रचार के लिए विद्यार्थी जी ने हिंदुस्तानी बिरादरी नामक संगठन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस संगठन का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न त्योहारों पर संयुक्त आयोजन करना था। वे ये समझते थे कि साम्राज्यवाद की ताकतें विभिन्न धर्मों के संकीर्ण विचार के लोगों को लालच देकर या भड़काकर धार्मिक उन्माद फैला सकती हैं, और ये सही भी है, ऐसा होता रहा है। विद्यार्थी जी बार बार इसके खिलाफ अपनी कलम चलाते रहे। सन 1931 में अंग्रेजों ने तीन प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। विद्यार्थी जी स्वयं इन क्रांतिकारियों के बहुत नजदीक थे, पर स्वयं कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे, इसलिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अन्यथा वे इन क्रांतिकारियों के लिए बड़ा जन समर्थन जुटा सकते थे। कानपुर में सौमनस्य का वातावरण बिगड़ चुका था। असंतोष की लपटें चारों ओर फैलकर हिंसा का वातावरण बना चुकी थीं। ऐसे में विद्यार्थी जी स्वयं उसको शांत करने मैदान में कूद पड़े। उस दावानल में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और वे स्वयं इसका शिकार हो गए। एक ऐसा जीवन जो हमेशा शांति की धारणा लेकर उत्साहित रहा। 25 मार्च सन 1931 को अशांति की भेंट चढ़ गया। उनके विचार और कलम की शक्ति आने वाले दिनों में भी शब्द साधकों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। शत शत नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का, जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है। मैम आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
2: मैम अंजुम बोल रही हूँ। यस
0: आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
2: मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
2: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है, और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है, या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ इसका जो डायग्नो मतलब आपके कैसे पता चलेगा अगर खांसी ज्यादा लंबे तक महीना 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल, और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं, मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा, बच्चा जो है अपनी चैलेंज अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है, फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना, तो ये सब चेंजेस दिखते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में, फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल की होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं, बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं कभी नहीं हो पाएंगे, और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्त दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात करा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का, और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज है वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम है, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी, बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑर्डर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना, शरीर में दर्द होना, ये सब हमें दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, और हर महीने ये साइकिल आती है। किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनिक गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशंस नहीं शुरू करें। अब मेंसेस जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस किस चीज आपको किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट 2 डेज बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के में से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप कर डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल उस सैनिटरी नैपकिन्स में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाएं, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाएं। लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का डर रहता है। और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएंगे, आयरन खाएंगे, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं, तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिजीज हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए। चाहे आप कॉटन का यूज करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज करो, यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत जिनको बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? व्हेन जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का हेवी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इरेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना, मतलब आपस में लेना देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हम लेट, हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आपको स्ट्रेस नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, ताकि हम जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है, और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इट कैन बी डेंजरस, ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी शशि जी।
1: मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्राम में बहुत सारी लड़कियां हैं और ये
0: हाँ
1: सेशन आज का जो है बहुत अच्छा है मैम, और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती है मैम, उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज मैम। सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम। हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जब पीरियड्स आते हैं ना तो मतलब कमर इतने तेज हैं, दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं?
0: देखिए जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूंगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्स या पेन होते हैं ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है।
1: हेलो मैम,
0: हाँ
1: हाँ जी
0: जी
1: मैम, ऐसा होता है ना कि मतलब कई एक मतलब इस महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों क्यों होता है ऐसा?
0: देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपनी अपनी शरीर है, अपना अपना बॉडी है, अगर मिस हुआ है पीरियड तो
1: हाँ मिस हो जाता है कई बार।
0: मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके जो प्रॉब्लम्स,
1: एक ही
0: हाँ
1: महीने
0: जी,
1: मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है।
0: तो वो आपकी बॉडी का जो, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने बताया किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है, पर अगर
1: डॉक्टर के
0: आप
1: पास
0: इस
1: जाना चाहिए?
0: आप अगर इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
1: ठीक, थैंक यू
0: हाँ
1: मैम। हेलो मैम, मैम
0: जी,
1: आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाते नहाना चाहिए, तो मैम
0: हाँ
1: हम
0: जी,
1: बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो
0: नहीं नहीं
1: सर
0: आपको रोज नहाना है, रोज नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियां लग सकती हैं
1: मैम
0: शरीर
1: बोलते हैं
0: में।
1: सर धोने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है।
0: ये सब बातें हैं, इनको प्लीज आप, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप रोज नहाए ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रो काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना, तो नहाना तो चाहिए, रोज नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए।
1: अब मैम वो जब इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर रहे हैं या आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन्स को। और हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
2: ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। हेलो मैम।
0: हाँ जी
2: मैम अगला क्वेश्चन सोनी का है, जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं आपको मैं बता देती हूँ मैम। उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है?
0: शशि जी, सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दें,
2: ओके मैम।
0: क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
2: ओके मैम।
0: तो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है।
2: मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैड से उन्हें थोड़ा सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेस हो जाते हैं, तो
0: तो
2: वो
0: इसका
2: उसके
0: मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स वो यूज कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज कर सकते हैं।
1: हेलो मैम, गुड
0: हाँ जी
1: आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या कहते हैं, मेरा तो पीरियड शुरू होता है ना, तो डेट से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर।
0: ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 25 दिन की साइकिल होती है, लोग कहते हैं
1: हेलो
0: महीने की साइकिल है पर
1: मैम,
0: 25 दिन की साइकिल है ये।
1: मैं
0: हाँ जी
1: मंजू शर्मा बोल रही हूँ मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने Freedom 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लैडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप?
0: आपने जो भी ये यूज किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है?
1: हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था, तो प्राइवेट क्लिनिक से, तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस डेट के दौरान ना पहले तो ब्लैडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8-9 दिन तक चालू रह जाता फिर।
0: ये इसका एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है इसका, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क, जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: इसका मेजर साइड इफेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है,
1: हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो
0: पेन
1: ही
0: भी
1: ज्यादा
0: होता है
1: होता है,
0: बहुत।
1: जैसे हाँ पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरगंज से, एम्स से, तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है, तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10-11 दिन ले लेता, फिर 5-6 दिन
0: तो ये
1: नॉर्मल
0: इसका
1: रहता
0: साइड इफेक्ट है मैम, तो आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में भी।
1: है। जी मैम, एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी तो उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है, सेम टू सेम
0: हाँ जी, ये जो
1: वैसे चलता है।
0: आप, हम लोग ये IUD लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट्स शरीर में आते हैं।
1: मैम इसे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है या फिर मतलब कोई जैसे ये साइड इफेक्ट है, इसे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें?
0: अब देखिए, ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफेक्ट से जरूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो एनीमिक भी हो सकते हैं आप।
1: जी मैम, पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को।
0: तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ही हैं उसके।
1: ठीक है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म
0: हाँ
1: करती
0: जी
1: हूँ।
0: डिस्कस कर
1: हाँ
0: लीजिएगा।
1: जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।
3: हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है।
0: हाँ जी
3: मैम, मेरी एज 25 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में ज्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे।
0: क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से बात
3: कमजोरी,
0: बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है।
3: मैम कमजोरी बहुत रहता है, थकान ऐसे थकी थकी से
0: हाँ
3: रहते हैं हर
0: जी
3: टाइम।
0: हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा
3: मैम
0: डाइट
3: खाने के
0: लें,
3: लिए क्या क्या इस्तेमाल करें इसमें?
0: प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
3: मैम परहेज क्या करें इसके लिए?
0: परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है। ये सब परहेज हम कर सकते हैं।
3: थैंक यू मैम।
1: मैम अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह?
0: हाँ जी आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है
1: मैम मेरा तो ऐसा
0: आपके।
1: होता पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है तो पेन किलर, नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है,
0: आप ले
1: क्योंकि
0: सकते
1: थोड़ा
0: हैं।
1: सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट साइड में नस में कुछ ड्रॉप क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयाँ चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ। पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ और टांगों में दर्द हुआ, मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है। ये सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है।
0: हाँ ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन
1: हाँ
0: में
1: जी
0: जब अटैक आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं।
1: जी। और मैम सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे
0: हाँ
1: तुरंत
0: क्योंकि
1: लेनी पड़
0: माइग्रेन में
1: जाती है।
0: डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली तो फिर वो ब्रेन मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है तो ब्रेन
1: हाँ
0: थेरेपी।
1: हाँ जी हाँ जी, तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को,
0: हाँ
1: इसलिए
0: जी
1: आपको जैसे लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है। तो
0: जी हाँ जी हाँ जी वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है।
1: हाँ, तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना साइड इफेक्ट आगे को मेरे
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं नहीं
1: ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।
2: नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैम मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से 4-5 दिन लगातार, लेकिन अब पिछले साल से 2 साल से ना मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम?
0: एज क्या है आपकी?
2: मैं 37 साल की हो गई मैम।
0: अच्छा
2: जी
0: वैसे
2: मैम,
0: तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
2: बस 2 दिन आता है मैम, पैरों में थकान, बहुत कटन, और फिर तीसरे दिन बंद।
0: हाँ जी हाँ जी
2: ये 2 साल से हो रहा है मेरे साथ मैम।
0: ये हर किसी को होता है। देखिए थकान, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है। बॉडी टू
2: बस 2 दिन
0: बॉडी
1: हो गए
0: डिपेंड
1: लगातार।
0: करता है।
1: हाँ
0: तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं।
2: जी मैम, थैंक यू मैम।
4: किसी और को कुछ पूछना है?
1: नो मैम,
0: नामिका, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड द सेशन.
4: नो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल.

0: I welcome everybody. This is a session on life skills. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं. तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है. तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है. वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती है. तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से. सो वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ. कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले.
1: नो, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
0: आई
1: सेशन है
0: ऑल्सो नो
1: लाइफ
0: दैट.
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं. कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर. किसी
1: वेलकम मैम.
0: और ने अनम्यूट किया था अभी. तना
2: हेलो. हाँ जी मैम, मैं आमिर खान बोल रहा हूँ.
0: जी जान बताएं.
2: मैम, जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिसिक जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा. हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं. लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है. तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है. एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं. अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा, अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है. तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं, ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं. और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे. मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे. फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल के मतलब बेसिक चीजें. क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके. बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें. तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल. उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे. और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें. हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उसपे नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बीइंग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ ना जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है, तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हमें बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके। बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है। इसकी आप अगर नेट पर जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं, तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से। बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर, अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है। पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, अगेन चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में 1-2 काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं, जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें। हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें और कॉपरेशन में बात करें, तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन WHO ने 1999 में ऐसा एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को, उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड थी उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल। दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली। कहने का मतलब ये है इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, या फिर हम लिखित में कर रहे हैं। जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ, ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़े, उसे भागों में तोड़े और उसका सोल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं। अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, किताबें पढ़ के

इनोवेटिंग योर सेल्फ सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाएं। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गन जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बहता रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह कीप मूविंग अहेड, व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है या एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो असर्टिवनेस मतलब बात, अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के टाइम में है इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेट्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे। तो दैट इज अ रेजिलियंस एज की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सके हैं, किसी भी 6 इनमें से कोई भी 6 में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर, तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में। जो हमने 6 लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इन इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंट्रा पर्सनल करेगी, इमोशंस के हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो कि लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट

0: क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल्स हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। तो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा। अपने आप को जानना पड़ेगा, हु एम आई। इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है। ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं, मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूं या मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ये पहनता हूँ ये पहनती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अलग हूं लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है। अगर आप खुद से प्यार कर भी यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें। क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे। ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए। हमें ना कहना भी आना चाहिए लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हाँ ही कहें। अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, टी आपने हटा तो दिया लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ। आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है। मेरे वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर। जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है। तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं लेकिन फिल आपको करने हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन वन ले सकते हैं या ऑप्शन टू ले सकते हैं, बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन वन लिया है या ऑप्शन टू लिया है और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है। ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है। दूसरा ऑप्शन है आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है, मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है। तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबडी, सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रैंडमली पिकिंग अप द पार्टिसिपेंट्स। ओके, शैल वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड
1: मैम, आविता कलकर सेंटर से। हेलो मैम
0: जी, बताएं, आपकी आवाज एको।
1: जी मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ।
0: जब आपकी मेहनत कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं।
1: जी मैम।
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू। और आपको बताना चाहेंगे?
2: मैं आई स्पीक मैम, सीमा बात
0: हाँ जी
2: कर रही
0: सीमा जी।
2: I have written, I like who I am because I give value to relationship, whether it is my professional relations or my personal, both. And I feel happy when I complete my target. Again, वो मेरे घर की कोई चीज़ों के हों या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी हो, जब मेरी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो आई फील सो रिलैक्स्ड एंड आई फील सो हैप्पी फॉर दैट।
0: तो सीमा जी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जब जो आप इनमें यूज करते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ।
2: हेलो कैन यू हियर मी?
0: नाउ वी कैन हियर यू।
2: हेलो एम आई ऑडिबल?
0: हाँ जी आप ऑडिबल हैं।
2: हेलो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा।
0: Okay, no problem.
2: I use my presence of mind.
0: Presence of mind, okay. Okay, वहाँ network issue आ रहा है. We'll move on to somebody else. कोई और volunteer करना चाहेगा इन दोनों options में से? इसने क्या लिखा है?
3: Ma'am, Shailaja here, ma'am.
0: जी Shailaja ma'am.
3: Ma'am, I feel very happy when I'm really with a small kids below 5 years. To listen to their beautiful talk, that baby talk or whatever it is. And I feel very happy when I can do something for somebody. It could be a small help or could be a small advice, whatever it is.
0: What kind of life skill do you think you are using? Aisi kaun si cheez hai jo aapko help? Positive thinking?
3: I didn't get you, ma'am.
0: Aap aisi kaun si life skill use karte hain? Aapko kya lagta hai ki kis tarah ki aisi ek एसेंस है आपके अंदर जो ये चीज आपको हैप्पी करती है?
3: आई थिंक इट इज समथिंग इमोशनल मैम।
0: इट्स इमोशनल, ओके वेरी गुड, थैंक यू।
4: गुड आफ्टरनून मैम।
2: दैट कैन बी जॉय ऑफ गिविंग मैम।
0: जॉय ऑफ गिविंग, वेरी
3: गुड,
0: यस यस।
4: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी।
4: इट्स दिव्या।
0: हां जी दिव्या।
4: आई लाइक हु आई एम बिकॉज़ आई हैव सम डिफरेंट एबिलिटीज, like I can easily connect with people.
0: Very good, very interpersonal skill है जो हमने सबसे पहली skill पढ़ी थी। आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब, इसको आपको positive effect देने में?
4: Yes ma'am, because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
0: Okay.
4: Yes ma'am.
0: All right, thank you Divya.
5: Good afternoon ma'am. I feel happy when I'm teaching something to others, like a social people, student, and a center beneficiary. So the thing is, main thing is happy is teaching, ma'am. It includes a social skill, interpersonal, and my personal skill, ma'am.
0: So आप खुश होते हैं, you are happy. Margaret ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं, करेक्ट मार्गरेट?
5: यस यस यस मैम, यस मैम।
0: ऑलराइट थैंक यू मार्गरेट,
5: वेलकम मैम।
6: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढ लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो।
0: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं
6: जी।
0: ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर, इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा लगता है
6: जी।
0: ऑल राइट थैंक यू
7: मैम। मैं बोलना चाहूंगा चांद खान
0: जी, बताए।
7: मैम आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली।
0: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब आप खुश हो जाते हैं।
7: जी मैम, जी मैम,
0: ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
8: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
8: हाँ जी मैम, देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी
8: मैम, मुझे, मैं रीड इंडिया में टीचिंग ट्रेनर हूँ
0: जी,
8: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते हैं।
0: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं?
8: हाँ, यस मैम।
0: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये बहुत
8: इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, जब फ्रेंडली बात करते हैं, जब फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मिल घुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे।
0: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आप करती है कॉन्फिडेंट बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो वी स्टॉप हियर टेकिंग मोर, हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए। तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं। हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन। तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है। तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं। जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन तब क्या है? किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं? कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है। ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए, जो आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ऑल माय फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इन चार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इन चार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से, क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल, विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम दो